बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रहे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ, और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर, और भाव से चलें तो बहुत पास। नजरों से देखें तो कण कण में, और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वहाँ संजय जी हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दाश, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण कोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: कल बोईसवर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। भक्ति धारा प्रोग्राम में आज हमारे संग है भक्ति रस की हमारी जयपुर रेडियो की सिंगर मंजू रैना एनसीआर दिल्ली से। वेलकम है मंजू आपका इन भक्ति गीतों के साथ।

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, मंजू रैना की आवाज में आपने सुना ये मीरा का लोकप्रिय भजन। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

0: रुक्मणी की। वो बड़े हवेली वाले साहू जी है ना, उनकी बेटी की शादी है।
1: और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं?
0: रुक्मणी का दूल्हा। नीचे बैठ मीरा, हिलती रहती है बस।
1: और मेरा दूल्हा कौन है?
0: तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर।
1: सवाई गिरधर।

बाला मैं बैरागन होंगी। मीरा का ये सुरीला भजन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही हैं भक्ति धारा प्रोग्राम में मंजू रैना।

0: शाम मोहे चाकर राखो ना, शाम मोहे चाकर राखो जी। चाकर का मतलब होता है सेवक। अपनी सेवा के लिए मुझे रख लो ना हे शाम। बहुत ही खूबसूरत भजन है ये मीराबाई का, और यदि हम इसको खूब सुनते रहें तो हमें बोध होगा कि जैसे मीरा कह रही हैं हम सबके लिए, हे श्याम, हे मोहन, हे कृष्ण, हे घनश्याम, आप मुझे चाह कर रखो ना, यानी आपकी चाह मेरे प्रति बनी रहे, और यदि आपकी चाह बनी रहेगी हम पर तो हमारा जीवन सरल होगा, सुगम होगा, उत्तम होगा। हमारी सुरीली मेहमान भक्ति धारा की आज की प्रस्तुति में हमारे संग रही एनसीआर दिल्ली की मंजू रैना। मंजू रैना जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सुगम संगीत की गायिका है, और हम मंजू रैना का आभार व्यक्त करते हैं भक्ति धारा की इस प्रस्तुति के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंजू आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जयपुर रेडियो सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं रिजो। जयपुर रेडियो के माध्यम से आओ झूमे गाएं और रॉकिंग रागा प्रस्तुत करने जा रहा है एक खूबसूरत युगल गीत, जिसे अपने सुरों से नवाजा है विद्या विकास और रामकी ने। आपको बताते चले कि लफ्जों की गुजारिश कार्यक्रम में आज का विषय है चल। तो आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गाना। इस गाने को फिल्माया गया था भारतवर्ष और ग्रीस में।

मैंने कब कहा वो मिल जाए मुझे, गैर ना हो जाए, बस इतनी सी हसरत है। आइए दोस्तों अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जिसे गाया है रिजू और सुधी जी ने। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

ये दिल था कि तरसता था मरासीम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे, अपना ये हाल कि जी हार चुके, लुट भी चुके और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। फिर किसी की याद में तड़पा दिया, हम कलेजा थाम कर रह गए। जी हां, दिल कहता है चल उनसे मिल, अकेले हम अकेले तुम, इस मूवी का खूबसूरत गाना जिसे पेश करने वाले हैं मैनाक्षी और केतन जी, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वायदे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए।
1: तो अभी आप सुनने जा रहे हैं श्वेता और संतोष जी के युगल सुरों में ये खूबसूरत नगमा ओ साथी चल।

दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वायदे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए। आइए सुनते हैं आखिरी गाना, जिसे सुरों से नवाजा है मानवेंद्र और पूर्ण जी ने। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मानवेंद्र और पूर्ण जी। सुनते रहिए जयपुर रेडियो

0: अंत में जयपुर रेडियो के माध्यम से आप सभी ने सुना आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के सौजन्य से लफ्जों की गुजारिश। आज का लफ्ज था चल।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, संगीत जिनकी जान और प्राण है, संगीत से जिनका अभिमान है और संगीत से ही जिनका मान है, उनका नाम है संघमित्रा घोष। दिल्ली से हमारे साथ आज इस सुरीले प्रोग्राम की मेहमान, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है संघमित्रा घोष का। आप न केवल ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही हैं, बल्कि वहां की एक ग्रेड आर्टिस्ट रही हैं, और एक ग्रेड आर्टिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही कलाकार का हम आज जयपुर रेडियो के इस मंच पर वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहती हैं संघमित्रा जी, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आप सब सुनने वालों को शुभ संध्या। मेरे इस प्रोग्राम में आप सबका दिल से स्वागत। मेरी संगीत की शिक्षा मूलतः कोलकाता में हुई थी। मेरे गुरु किराना घराने से थे, उनके अतिरिक्त मैंने कुछ और गुरुओं से भी तालीम ली। उनमें से श्रीमती शोभना मित्र और जयश्री घोष शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो के साथ मेरी लंबी सफर रही है। कोलकाता युववाणी, कोलकाता जनरल और दिल्ली जनरल स्टेशंस का मैं एक ग्रेड आर्टिस्ट रही। विदेश चले जाने के कारण ऑल इंडिया रेडियो से नाता टूट गया। मैं मूल रूप से ख्यालिया हूं। ठुमरी में मेरी तालीम श्रीमती शांति हीरानंद जी से हुई। कृष्णा दासगुप्ता जी से मैंने कीर्तन सीखी। संगीत मेरी जान और प्राण है। मैं सिखाती भी हूं। ऑनलाइन सिखाने के कारण दुनिया के दूर दूर कोने में बैठे मेरे स्टूडेंट्स हैं।
1: संगीत जिनकी जान और प्राण है, संगीत से ही जिनका मान और अभिमान है, उन्हीं का नाम है संघमित्रा घोष। आज अपने गीतों के साथ इस मंच पर हमारे जयपुर रेडियो के लिसनर्स के लिए लेके आई हैं अपने गाए कुछ गीत। साहित्य और संगीत में एक रस बहुत प्रधान होता है और उसका नाम है श्रृंगार रस, और श्रृंगार में वियोग श्रृंगार की बहुत प्रधानता है। बहुत सारे गीत वियोग श्रृंगार को लेकर गाए गए हैं। आज कुछ ऐसे गीत लेके आई हैं। पहला गीत बहुत ही लोकप्रिय गीत है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। आइए सुनते हैं ये पहला गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर की आवाज में।

मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, जो कहीं वो मुझ पे गुजर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में।

बेकसी हद से जब गुजर जाए। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की मेहमान सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब एक खूबसूरत नगमा, ना रोए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं, ना रो ए दिल कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

ना रो ऐ दिल कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। ना रो ऐ दिल कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। हमने सुना ये खूबसूरत नगमा हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए आप सुने हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना। हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना दुनिया बड़ी बेईमान। हाँ जी दुनिया बड़ी बेईमान। बुरा है जमाना टूटे ना ये दिल का खिलौना। दुनिया बड़ी बेईमान। आइए सुने ये अगला खूबसूरत गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में।

हारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान हमारे। और जब हम कहते हैं हमारे, आप हमारे, तो कितना इस हमारे शब्द में कितना वजन होता है हमारा कहना। और जब किसी से प्यार हो जाए तो हमारा होना निश्चित है। और ऐसे ही प्यार में एक गीत और गा रही हैं, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, हो नदिया धीरे बहो, चल है नदी की धार, हो नदिया धीरे बहो। आइए सुने ये खूबसूरत गीत संगमित्रा घोष की आवाज में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुपर सिंगर।

हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। भोले भाले रूप में कातिल है मेरे सामने। आइए सुने एक खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। सुन रहे हैं संघमित्रा घोष को।

हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। बिना बादल के कभी आपने बिजली चमकती देखी है, लेकिन गीतों में चमकती है, अपनी रोशनी से सबको सराबोर करती है। डारे नजर हल्के हल्के देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के। आइए सुनते हैं ये बिन बादल बरसात कैसे होती है, आवाज हमारी आज की सुपर सिंगर की।

देखो बिजली डोली बिन बादल के, और जब हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो यूं ही डोलना पड़ता है, जब हम साथ होते हैं तो बात कुछ और ही होती है। और हमारे साथ हैं जयपुर रेडियो के सिंगर संगमित्रा घोष और हमारे वो सारे लिसनर्स जो जयपुर रेडियो और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड को बहुत चाहते हैं। हम उनके लिए यही कहेंगे, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, तुम ही तो नहीं मिलते जाएं तो किधर जाएं, बस में नहीं वरना हम उड़के चले आए। आइए सुने ये सुरीला सॉन्ग।

आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, बस में नहीं है वरना हम उड़ के चले आए। इस खूबसूरत गीत के बाद एक मनभावन गीत, और वो मनभावन के गीत में मनभावन के घर जाने की बेला का ये सुरीला सॉन्ग हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना। बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत में श्रृंगार के दोनों पहलू हैं, वियोग भी है और साथ साथ संयोग भी है कि सजन के घर जाना है और हमें ना भुलाने की बात है। और अब उस पवित्र गंगा की बात करते हैं। हमारी आज की सुरीली मेहमान संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान इस सॉन्ग के साथ।

0: की आवाज आपकी पहचान। सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। इस गीत के बाद तो हम यही कहेंगे कि गंगा को साफ रखें, पवित्र रखें और पाप अपने पास रखें। हमारे साथ रहीं दिल्ली की संगमित्रा घोष, जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार संगमित्रा जी। फिर मिलते हैं इसी रास्ते पर, इसी सफर पे, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब प्रस्तुत है एक बहुत ही सुरीली कहानी, मठाधीश। इसको लेके आई हैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव।
1: नमस्ते, मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। प्रस्तुत है मेरी कहानी मठाधीश। मेरा चातक चितवन उसकी प्रेमिल दृष्टि की नित्य ही प्रतीक्षा करता और वह स्वयं को मेरे दृष्टि पथ से बचाते हुए निकल जाता। मेरा मौन निमंत्रण सदा उसके उच्छ्वासों पर सुगंधी बिखेरता और वह दीर्घ निश्वास भर संगियों के संग ज्ञानालाप के सुर छेड़ता मुड़ जाता। उसका संसार विस्तृत था, हाथों में वेद थे, आंखों में पुराण थे और मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान। मेरे पास क्या था? उसके नाम के मात्र एक झीनी चूनर जिसमें सितारे टके थे उसकी मुस्कानों के, जो मैंने चुराए थे मठ में प्रसाद वितरित करते हुए चुपके से। वह मठ में होने वाली मठाधीश प्रतिस्पर्धा का प्रतिभागी था। 5 ग्रामों के मध्य एक ही मठ था जहां विद्यार्थी आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे तो पुरोहित प्रांगण में बने शिव मंदिर में अर्चन करते थे। वृद्ध परम गुरु के स्थान पर अब नए मठाधीश का चुनाव होना था। परम गुरु अब अस्वस्थ थे, मठाधीश बनना अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। इस युवा ने तो सभी आचार्य महापंडितों को पराजित कर दिया था और बस अब मुख्य शास्त्रार्थ ही बचा था। मेरे पिताजी मुख्य पुरोहित थे मठ के, तो बात हो रही थी मेरे उन दिवसों की जो सजीव थे, वशीकृत थे, उसके नाम से रचे बसरे थे जिसका नाम चंद्रभान था। क्या सचमुच वह विजयी होगा, मठाधीश बनेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा? मुख पर तो मधुमय वसंत बिखरा पड़ा है महोदय के। कोई भी किशोरी नैनों के कानन वन में खो जाए, अधरों की मंद मुस्कानों के पोखर में डूब जाए। ऐसे कितने ही विद्वान मठ में शास्त्रार्थ में हिस्सा ले चुके थे, वे पराजित भी हुए। सदा ही मठ में युवाओं का आना जाना और मेरा सबको प्रसाद वितरण करना सामान्य सा था। पर अब क्या विशेष हुआ, क्यों इस चंद्रभान बाबू के प्रेम में स्वयं को विकल करूं थी? यदि ये विजित हुए तब मेरे प्रेम का क्या होगा? क्या त्रषित नैनों को मात्र दर्शन लाभ से ही संतुष्ट होना होगा? क्या जीवन उनकी रसीली बातों का रसपान भी न कर पाएगा? आह, हृदय ने यह कैसी प्रचंड प्रणय डगर पकड़ ली थी। जब से वह हमारे ग्राम में आया उसका आकर्षण ऐसा कि कुछ दिनों से मेरे ब्रह्मांड में नित्य श्वेत पुष्प खिलने लगे थे। हजारों उल्काओं के मध्य बादलों की धरा पर मेरी झीनी अनुरागी चूनर उन्हें स्वप्न में बीनती और वेणु में गूंज लेती। तब मेरी विकलता कि हाय, उसकी एक दृष्टि तो पड़ जाए इस रूप श्रृंगार पर, इस यौवन पर, कहाँ छिपाऊं इन मादक क्षणों को कि किसी की दृष्टि ना पड़े। एक परिपक्व स्त्री को तो सब कुछ छुपाना आता है, किंतु एक किशोरी को, उसे तो सपने भी छिपाने नहीं आते। तो यह रहस्य सखियों में खुल गया। कुहुकनी कुकुठी मैना गाने लगी, हास परिहास के मध्य मुझे इंगित किया जाने लगा और दूर कहीं बांसुरी मेरा और उसका नाम पुकारने लगी। मेरे नाम में क्या रखा, कुछ भी हो, बात तो उसकी हो रही है। ये सब एक स्वप्न सा था। एक दिन सखियों ने कहा, अरे बावरी तजदेश चाह को, तू नहीं जानती यह पाप है, वह आयु में तुझसे अधिक है, वह हमारा गुरु बनेगा, मठाधीश बनेगा। तब मैं खिलखिला देती, वह मात्र मेरा बनेगा। क्या यह कसक उसकी उर में न जागी होगी? भला इतना आकर्षक युवक और ब्रह्मचर्य जीवन, प्रेम तो इससे अधिक बड़ी साधना है। ओ मेघमालाओ, रसा वर्षण करो उसके अंतर मन पर। ओ कुसुम धनवा, प्रेम विशिक तानो तनिक, मेरा उर पुष्प चुरा के ले गया है वह। मैं झूम उठती, ऋतुराज मेरा प्रेम पल्लवित करो इन गदराए फलों में, इन विकसित फूलों में, बस मेरी ही मेरी सुगंध भर दो। सहस्त्रों निर्झरियां फूट पड़े उसके हृदय में मेरे नाम की। हे गंधवा जाओ जाओ, मेरी मधु स्मृति भर दो उसकी सांसों में। हे चंद्रमालिकाओं, उसके मन के कोने कोने में मेरे सपने, मेरी छवि, मेरी मुस्कानें बसा दो। हे गोरी माँ, मुझे यही वर डाल दो झोली में, अर्थात मैं स्वयं चौकी। यह मैंने क्या मांग लिया? क्या उसकी पराजय मांग ली मैंने? वह तो यहाँ विजयी होकर मठाधीश बनने आया है, उसका मनोबल इतना क्षीण तो ना होगा। वह नित्य आता, पिताजी से संवाद करता और चला जाता। पिछले एक माह से एक दृष्टि तक मेरी ओर ना की थी उसने। मेरा श्रृंगार, मेरी कोमल भावनाएं संदेखी को पी रही थी भीतर तक। भावनाओं का विहल सागर आंदोलित हो रहा था। कब भंवर उठे, कब मैं डूब जाऊं उसमें ज्ञात नहीं था। कुछ दिनों से इसी ब्रह्मांड से आग के गोले बरसने लगे थे, तारिकाएं टूटने लगी थी, सभी ग्रह नक्षत्र डोलने लगे थे, नव की दीपावलियां मुझे रास नहीं आ रही थी। मन खूब उलाहने बुन रहा था, पर यह दुशाला किसे उड़ाऊं? फिर वह सांझ आई जो अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी, 16 कलाओं से परिपूर्ण थी, किंतु क्षणिक थी, यह बाद में जान पाई। अवंती मेरी छोटी बहन भागती हुई आई। जी जी जी जी, पिताजी नहीं है घर पर, चंद्रभान बाबू आए हैं, तुम्हें बुलाते हैं। देव देव देव, क्या हो गया यह? वह मुझे बुलाते हैं? बड़ी रहस्यमय सृष्टि है यह। मैं श्वेत पड़ी जा रही थी जबकि मुझे गुलाबी होना था, और यह सांझ जिसे यह सूचना पाकर गुलाबी होना था, तो वह लाल हुई जा रही थी, संभवतः लाज से। सब रंग उलट पुलट हो रहे थे।

0: वाली थी कि उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। फिर प्रभावी कालजयी स्वरों में जो कहा वह सदियों तक मेरे कानों में गूंजता रहा। सदियों तक इसलिए कि उसके पश्चात एक एक क्षण एक सदी एक युग बन गया था। उन्होंने कहा, चंद्रा, हाँ यही नाम तो है मेरा। उनके अधरों से संबोधित होकर मैं ना रही। चंद्रा चंद्रा चंद्रा बस यही गूंज रहा था सृष्टि में। चंद्रा, उन्होंने पुनः पुकारा तो मेरी सुधीर लौटी। तुम पवित्र आत्मा हो चंद्रा, तुमसे अनुरोध करने आया हूँ, ईश्वर से मेरी पराजय ना मांगना। कहते हैं पवित्र आत्माओं की प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं। उनके मुख पर कुछ प्रभावी तत्व था, क्या था नहीं जानती। उन्होंने हाथ जोड़े और तुरंत मुड़कर चले गए। वे चले गए, संसार चला गया, ईश्वर चला गया, सब कुछ तो चला गया, बस रह गया उनका स्वर, मेरी पराजय न मांगना, मेरी पराजय न मांगना। मैं अवाक थी, मैं जड़ थी, मैं पत्थर थी, मैं पानी भी थी, मैं आग बन ही रही थी कि हवा हो गई। हवा बनी तो सूखी पंखुड़ियों से झरने लगी, तब सांझ थरथराने लगी, धरती कांपने लगी। वह फटती ही ना थी कि मैं उसमें समा जाऊं। कहीं से एक ग्लानि का अणु आ बैठा मन में, तो मैं भी एक दीवार के कोने में जा बैठी, दुबकी सी शून्य को निहारती। भीतर कुछ भी नहीं घट रहा था। ऐसा आघात, ऐसा प्रतिदान, आह कि यह क्या बंधन था कि उन्होंने जान लिया कि मैं उनकी पराजय चाहती हूँ। देव, यह अंतरात्मा का एकीकरण नहीं तो क्या था? मेरे अश्रु नहीं बह रहे थे, क्योंकि प्रातः मुख्य शास्त्रार्थ के पश्चात मेरी देह जल अधिष्ठात्री की गोद में समाने वाली थी। उससे पूर्व में ध्यानस्थ हो चुकी थी उनकी विजयी कामना के लिए। उनने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य होगी, तो मेरे लिए यह वचन ईश्वर के हो गए। और अब ईश्वर में कहाँ सामर्थ्य रह गया कि वह रंच मात्र हेरफेर कर दे मेरे निर्णय में। ईश्वर को उनके वचनों का मान तो रखना ही होगा, मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार करना ही होगी। मैं कब तक ध्यान अवस्था में रही मैं नहीं कह सकती। दूसरे दिन दोपहर समाधिस्थ होने से पूर्व अवंती का स्वर सुनाई दिया, चंद्रभान बाबू विजित हुए, चंद्रभान बाबू विजित हुए। वह चहक रही थी, ताली बजा रही थी, नाच रही थी। पिताजी कहते हैं वे परम ज्ञानी है, उन्हें तो विजय होना ही था।
1: क्या जगे है दोस्तों,
2: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

सच है। क्या ये सच है? खुद से पूछ रहा हूं। हाँ, पहली बार किसी ने, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा हाथ हाथ में लेके वो कहा जो मैं सुनना चाहता था। हाँ, पहली बार किसी ने मुझे कहा है। क्या कहा है?

ना उसे पता चला ना मुझे पता चला। हुआ क्या? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बस हम महसूस कर रहे हैं।

जब उसने छुआ मेरा हाथ पकड़ के नशा सा होने लगा। नशा क्या होता है समझ में आ गया, जिसके लिए मुझे और

एक दूसरे को महसूस तो कर रहे हैं, कुछ कुछ सपने मैं देख रहा हूं, कुछ सपने वो देख रही है। क्या सच होंगे ये सपने, क्या सांसों में सांस मिल जाएगी, क्या हमारे सपनों की कली खिल जाएगी। बस देखते हैं, सपने देखना तो हमारे हाथ में है, कितने सच होते हैं।

समझ सको तो हम सफर हमें तुम अपना जानो, उधर नहीं इधर चलो कभी तो कहना मानो, समझ सको तो हम सफर।

सुरों में ढलकर अमर हो गए, ये सुरों में ढलकर उन्हें याद कर गए। फर्क बस इतना सा था, एक ने इतिहास रचा और एक ने उसे पूरे दिल से जिया। किशोरदा, आपकी आवाज आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक एहसास है और हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो सच्चे मन से संगीत से मोहब्बत करता है। और सुदर्शन, इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए आपका दिल से आभार। आपने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन अनगिनत यादों को एक बार फिर से हमारी धड़कनों में जिंदा कर दिया। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी विदा नहीं होती। आज की महफिल यहीं खत्म हुई, लेकिन किशोरदा का सफर नहीं। इसी उम्मीद के साथ ये संगीतमय शाम आपके दिलों को भी छू गई होगी। मैं गुरप्रीत आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी, किसी नई कहानी और संगीत की एक नई महफिल के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी हैं श्री ओपी शर्मा। ये बात तो हम सभी समझते हैं कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हुआ ना बेहद जरूरी इसका ख्याल रखना। इसमें भी एक जरूरी बात यह है कि शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें खुशी से तरोताजा रखने में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जैन, अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो पिछले 10 वर्षों से अपने चिकित्सकीय कौशल से लोगों को मानसिक सुदृढ़ता के प्रति सचेत बनाकर समाज में एक आवश्यक चेतना जगाने में प्रयासरत हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रीति जैन।
1: नमस्कार सुषमा जी।
0: तो बात करें अच्छे स्वास्थ्य की। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति तो हम धीरे धीरे बहुत सजग हो रहे हैं, मतलब इतने लोग जिम जाना शुरू कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा जो अवेयरनेस है वो इसको लेकर आई है। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, जो हमारे डेली चोर्स में हमें खुश रखने में, एनर्जेटिक रखने में, पॉजिटिव रखने में मददगार है।
1: जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें है ना अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स। बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आपके इमोशनल जो स्टेट है, उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है। अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफ लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है। लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना? कोई खास वाकया इसका कारण बना? कोई खास माहौल? कोई खास प्रेरणा?
1: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था। बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। हर्ड दिस लाइन नंबर ऑफ टाइम्स इवन, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं। इट इज स्टिल अ स्टिग्मा इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम। तो तब मुझे लगा कि यस, देयर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड।
0: राइट, बहुत तेजी से, वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है, किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
1: देखिए, अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता, फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसर्न।

0: बट टाइम के साथ साथ कुछ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होगी। सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजुअली द लॉस ऑफ मेमोरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स।
1: जी
0: सेकेंडली आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं। पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है बच्चा हु इज अराउंड 15 to 16 years ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। एक एम्बिशंस होती हैं लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे। और अभी नंबर ऑफ केसेस दोज आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन वेयर द इवन इफ दी पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर ऑन दी स्टूडेंट्स और दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सच प्रेशर,
1: बिल्कुल.
0: दिस द मोस्ट कंसर्न।
1: और मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, उसके पास बच्चा अपना गोल बना के बैठ जाता है, और अगर उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है. यानी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जो जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में.
0: जी
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं. उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं. तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरनमेंट में परसीव करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेट आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो वी हैव अ ब्रांच ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी, यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है. सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे. एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की. सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में, वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर, जैसा मैंने अभी बात करी, कि यूज ऑफ इंटरनेट है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे, या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान है कि हम हैंडल कैसे करें, कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में, वो इसी उम्र के दौरान आती है। जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करे। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड स्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड स्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना, तो अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स।
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लादते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी मेंटल हेल्थ को, किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है। सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 ईयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है। रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए। अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर आई गई।
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है, और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं. बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति. ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए, अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट। हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं थोड़ा सा, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस, तो ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशंस। अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा? वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है। और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है, तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है। तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है, जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने।
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है. आपको क्या लगता है?
0: देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। 10 10 भी बहुत ज्यादा है। पिछले 5 6 साल में भी मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सो रहे हैं अब चीजों के। अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नो, जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज, कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर
1: बिल्कुल,
0: हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी। तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशंस ले सकते हैं। रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं। तो दिस इज रिलायबल ऑल्सो।
1: और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं.
0: जी,
1: कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की? क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है, वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो उस केस
1: बिल्कुल,
0: के अंदर इम्पोर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सके, वो समझ पाए और वो आपको भी गाइड कर पाए, या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाए. सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन. जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है. ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये नॉर्मल इमोशन है. लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा फैमिली मेंबर्स को भी कि देयर इज सम प्रॉब्लम. वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है. सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है.
1: राइट. तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है.
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है. जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए. हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी. बिल्कुल. तो छोटी छोटी बातें होती है हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूं तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं. तो नॉट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हमें टाइम ही नहीं मिलता. तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल. तो सबसे पहला है लाइफ स्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है, तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे. सेकेंडली हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों. जैसा कि आप देखेंगे एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, है ना. हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है और हर कोई आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है. तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटिफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा. और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं. अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी. तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज ले तो इट विल बी गुड. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज.
1: राइट. सिर्फ आईक्यू ही नहीं बल्कि ईक्यू की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है ईक्यू, दैट इज इमोशनल कोशिएंट. तो कैसे ईक्यू को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी, ईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि आईक्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स उनकी फैमिलीज की, नहीं उससे कि 95% अगर आ जाता है तो मतलब यू नो दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास। ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं तो कहीं भी उसका बेसिस IQ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका IQ ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट। सो इट क्लियरली शोज कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ।
1: लाइफ को मैनेज करने में EQ बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना। रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता। हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें। आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है, वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रांग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है। तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है। और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें कि कहाँ से वार्निंग साइन आप देखोगे। तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, whatever it is, but we need to be very concerned about all the pressures we are having in our life.
1: Exactly. और वो कहते भी है ना कि अगर हमें कुछ चीज प्यारी लगती है तो उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को 10 से 15 मिनट जरूर दें हर रोज, और वो कुछ करें जो आपको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है। क्या आपका फाइनल मैसेज होगा सभी के लिए, एक अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, इसको समझाने के लिए?
0: जी, मेरा फाइनल मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा मन है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बगीचा है। जैसे हम अपने खूबसूरत से बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगाते हैं, देख करके ना, पसंद करके लगाते हैं, ऐसे ही अपने इस प्यारे से बगीचे में, इस अच्छे से मन में कोई भी थॉट हम कैसे आने दें। तो बहुत जागरूक रहिए, जो भी आप सोचते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ये बहुत ही अच्छे से रखिए। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे ही करेंगे।
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए, अपने आसपास अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स। बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आप आपके इमोशनल जो स्टेट है उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है। अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफ लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है। लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना? कोई खास वाकया इसका कारण बना? कोई खास माहौल? कोई खास प्रेरणा?
0: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था। बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। हर्ड दिस लाइन नंबर ऑफ टाइम्स इवन। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं। इट इज स्टिल अ स्टिग्मा इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम। तो तब मुझे लगा कि यस, देर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड।
1: बहुत तेजी से, वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है। किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
0: देखिए, अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता। फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसल्टिंग। बट टाइम के साथ साथ कुछ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होती है। सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजली द लॉस ऑफ मेमोरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स।
1: जी
0: सेकेंडली, आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं। पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है बच्चा, हु इज अराउंड 15 to 16 years ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। एक एम्बिशंस होती है, लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे। और अभी नंबर ऑफ केसेस दोज यू नो आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन, वेयर यू नो द इवन इफ द पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर ऑन दी स्टूडेंट्स, और दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सच प्रेशर,
1: बिल्कुल.
0: दिस द मोस्ट कंसर्न।
1: और मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, उसके पास बच्चा अपना गोल बना के बैठ जाता है, और अगर उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है. यानी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जो जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में.
0: जी
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं. उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं. तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरमेंट में परसीव करते हैं, वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है, ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा, यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू नो यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो यू नो वी हैव अ ब्रांच ऑफ, न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी, यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली यू नो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है. सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे. एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की. सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में, वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी यू नो इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर जैसा मैंने अभी बात करी कि यूज ऑफ इंटरनेट है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे, या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं, आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान हैं कि हम हैंडल कैसे करें, कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में, वो इसी उम्र के दौरान आती है। जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड स्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड स्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना, तो
1: जी
0: अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स।
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी, मेंटल हेल्थ को किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है। सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 ईयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है। रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए। अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मेंटल हेल्थ पर आएगा ही।
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है, और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए, अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट। हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, थोड़ा सा जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस,
1: राइट
0: ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग दी नेगेटिव इमोशंस। अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा? वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है। और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है। तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है, जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने।
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। 10 10 भी बहुत ज्यादा है, पिछले 5 6 साल में भी, मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन हो रहे हैं अब चीजों के। अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नो, जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज, कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर
1: बिल्कुल
0: हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी। तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशंस ले सकते हैं। रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं। तो दिस इज रिलायबल आल्सो।
1: राइट और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं।
0: जी,
1: राइट कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की, क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो उस
1: बिल्कुल
0: केस के अंदर इम्पॉर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सकें, वो समझ पाएं, और वो आपको भी गाइड कर पाएं या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाएं। सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन। जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है, ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल इमोशन है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा फैमिली मेंबर्स को भी कि देयर इज सम प्रॉब्लम। वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है।
1: राइट तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है।
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है। जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया, वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए। हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: क्योंकि जब
0: जरूरी
1: तक
0: है।
1: वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी। बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली
0: जी
1: स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास, मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूँ, तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं। तो नॉट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल। तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा, तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए, जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें, और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है, तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे। सेकेंडली, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों। जैसा कि आप देखेंगे, एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, है ना। हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है, और हर कोई, आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटीफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क
1: बिल्कुल
0: लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा। और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी। तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है, तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज लें, तो इट विल बी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज।
1: सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EQ की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है EQ, दैट इज इमोशनल क्वोशिएंट। तो कैसे EQ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग-अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी, EQ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि IQ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज की, तो ये उससे कि 95% अगर आ जाता है, तो मतलब यू नो दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास। ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं, तो कहीं भी उसका बेसिस IQ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका IQ ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट. सो इट क्लियरली शोज कि ईक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू.
1: लाइफ को मैनेज करने में ईक्यू बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना. रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता. हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया है, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें. आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है. लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है. इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है, वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रांग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं. तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा. और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है. तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है. और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है. और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें कि कहाँ से वार्निंग साइन आप देखोगे. तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, whatever it is, but we need to be very concerned about all the pressures we are having in our life.
1: Exactly. और वो कहते भी है ना कि अगर हमें कुछ चीज प्यारी लगती है तो उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं. तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को 10 से 15 मिनट जरूर दें हर रोज और वो कुछ करें जो आपको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है. क्या आपका फाइनल मैसेज होगा सभी के लिए, एक अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है इसको समझाने के लिए?
0: जी, मेरा फाइनल मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा मन है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बगीचा है. जैसे हम अपने खूबसूरत से बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगाते हैं, देख करके ना, पसंद करके लगाते हैं, ऐसे ही अपने इस प्यारे से बगीचे में, इस अच्छे से मन में कोई भी थॉट हम कैसे आने दें. तो बहुत जागरूक रहिए, जो भी आप सोचते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ये बहुत ही अच्छे से रखिए. पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे ही करेंगे.
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए, अपने आसपास अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है.
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ. कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. कहते हैं ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है.
1: राइट. चलिए डॉक्टर प्रीति जैन, बहुत खूबसूरत बातें आपने शेयर करी हम सभी से. और जहां तक फिजिकल हेल्थ की बात है वो तो हम सोचते ही हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर ये जरूरत सबके सामने बिल्कुल जग जाहिर हुई है कि मेंटल हेल्थ भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हमें एक खुशनुमा जिंदगी बितानी है. आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर प्रीति जैन.
0: यू, माय प्लेजर.
1: थैंक यू सो मच.
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान.
3: अरे ये लाहौर इलाकों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम?
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे

0: आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, खंबा खनी, केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंद्रा आपके साथ मुंबई से। एक बार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी सिनेमा जगत की एक बेहतरीन, दिलकश और खूबसूरत अदाकारा के गीतों से सजी इस महफिल के साथ। आज मैं जिन मोहतरमा के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ, वो अपने सह कलाकारों से लेकर अपने चाहने वालों तक हर किसी की ड्रीम गर्ल है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुंदरता के प्रतीक हेमा मालिनी जी की। इनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। खूबसूरती के साथ ही साथ वो बेहद आला दर्जा के कलाकार भी हैं। आइए सुनाती हूँ उनके व्यक्तित्व को चरितार्थ करता ये सुरीला नगमा ड्रीम गर्ल, जिसे पेश करने आ रहे हैं मुकेश गुलानी और विमल सोनी जी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

बेहद मधुर प्रस्तुति। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की, परंतु क्या आपको पता है उनका फिल्मी सफर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म होने के कगार पर था। ऐसा आखिर क्या हुआ था, बताऊंगी। फिल्म कुदरत का ये गीत तूने और रंगीले के साथ जादू किया, जिसे फिल्म में गाया था लता जी ने, और यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं जूही सिन्हा और डॉक्टर अभिजीत शाह अपनी खूबसूरत आवाजों में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गीत बंगाली गाने हाय की कोरे माने निया से लिया गया है।

वाह क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी के फिल्मी सफर के शुरुआती दौर की। 1963 में हेमा जी ने दो तमिल फिल्मों में सह नर्तकी का काम किया। उसी तमिल फिल्म के डायरेक्टर सी वी श्रीधर जी ने उन्हें अपनी फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहा, लेकिन बाद में हेमा जी को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि वे बेहद पतली हैं और फिल्मी पर्दे पर नायिका के रूप में अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन हेमा जी निराश नहीं हुई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 1968 में उन्होंने रजत पर्दे पर आगाज किया राज कपूर जी के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से। आइए सुनाती हूँ अगला गीत फिल्म दुल्हन से, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, जिसे पेश कर रही है बेहद ही आला गायिका इंदिरा जी।

बेहतरीन सुरीली पेशकश। दोस्तों अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म कुदरत से। वैसे क्या आपको पता है इस फिल्म का पहले नाम रखा गया था प्यासा। इस फिल्म का एक बेहद ही चर्चित गीत पेश खिदमत है, हमें तुमसे प्यार कितना, और पेश करने आमंत्रित कर रही हूँ श्रुति और अश्वथ राव जी को।

बेहद खूबसूरत गायकी। दोस्तों, हेमा मालिनी जी द्वारा अभिनीत फिल्म किनारा 1977 में प्रदर्शित हुई। किनारा भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्माण एवं निर्देशन मेघना मूवीज के बैनर तले गुलजार साहब ने किया। आर डी बर्मन के जादुई संगीत से सजी ये फिल्म मध्य प्रदेश के शहर मांडू में एक प्राचीन से किले में फिल्माई गई थी। सुनाती हूँ इसी फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत नाम गुम जाएगा, जिसे यहाँ अपने खूबसूरत स्वरों से सजाया है दीप शिखा जी और अनिंदु घोष जी ने।

बहुत खूब। दोस्तों, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के प्यार के किस्से फिल्मी गलियारों में बेहद मशहूर थे। पर क्या आपको पता है, दो ऐसे कलाकार भी थे जो हमारी प्यारी ड्रीम गर्ल की खूबसूरती के कायल थे। कौन थे वो दो कलाकार, बताऊंगी सत्ते पे सत्ता के इस खूबसूरत गीत के बाद जिसे फिल्म में गाया है आवाज के शहंशाह किशोर कुमार जी ने, और यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना और संजीव कुमार जी।

सुरीली प्रस्तुति। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी की खूबसूरती के मुरीद नायकों की। वो थे जितेंद्र और संजीव कुमार जी, दोनों ही हेमा जी की अदाओं के कायल हुआ करते थे। जी हाँ, और सूत्रों की माने तो दोनों ने ही हेमा जी को शादी का प्रस्ताव भी दिया था। जितेंद्र ने तो हेमा जी को सगाई की अंगूठी तक पहना दी थी, पर अंदाज तो हमारे पंजाबी मुंडे धर्मेंद्र पाजी का था, जिस पर हमारी तमेलियन हेमा जी फिदा हो गई। आइए सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता का ही एक और बेहतरीन नगमा मुकेश चोपड़ा जी और गायत्री जगन्नाथ जी की आवाजों में।

0: चैन कुली की मेन कुली, मेन कुली की चैन।
1: बहुत खूब दोस्तों, अगली पायदान का जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो फिल्म धर्मात्मा से है। ये फिल्म अंग्रेजी फिल्म गॉडफादर का हिंदी रिमेक है और सूत्रों की माने तो धर्मात्मा फिल्म का टाइटल रोल मटका किंग रतन खत्री से प्रेरित था, जिसे फिल्म में प्रेमनाथ साहब ने अभिनीत किया था। सुनते हैं यही कर्णप्रिय गीत क्या खूब लगती हो, विद्या विकास और वरुण पारिक की सुमधुर आवाजों में।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आपकी सखी तनुजा मुंद्रा। आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड के दिलकश और बेहतरीन अदाकारा हेमा मालिनी जी के कुछ बेहद चर्चित गीत और उनकी जीवन के कुछ खट्टे मिट्टे किस्से भी। अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म दर्द से, जिसे संगीत से सवारा है खयाम साहब ने, फिल्म में गाया है लता जी ने, और यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं MD त्यागी और संगीता जी अपनी मीठी आवाजों में। गीत के बोल, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

सुमधुर प्रस्तुति। दोस्तों, एक फिल्म आई थी सीता और गीता, जिसमें हेमा जी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म ने हेमा जी के फिल्मी सफर को एक बेहतरीन आयाम भी दिए। इस फिल्म का संगीत बेहद कर्णप्रिय रहा और क्यों न हो भला, इसमें आर डी बर्मन, आशा ताई और किशोर कुमार, ये तीनों ही संगीत के जादूगर जो थे। आइए सुनाती हूँ आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हवा के साथ साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं बिस्वजीत और सिमंतिका।

0: आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया। आभार है जयपुर रेडियो का, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मंच उपलब्ध कराया। इन चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगी। आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, जो कभी ना भूले ऐसी मुलाकात ना हो पाई। फिक्र न करो आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिर हाजिर हो जाऊंगी अगले सप्ताह एक और कार्यक्रम के साथ। तो चलिए इजाजत दीजिए अपनी सखी तनुजा मुंद्रा को, फिर आ जाऊंगी अगले सप्ताह कुछ खट्टे मिट्ठे किस्से कहानी और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। और
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
6: हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमें गायन ग्रुप के द्वारा आयोजित इस संगीत में शाम में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम का थीम एक ऐसे स्पेशल कलाकार हैं जिन्होंने अपनी म्यूजिक की जर्नी 1974 में हिट फिल्म खुआरा बाप के म्यूजिक से शुरू की थी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 48 इयर्स नाउ, और संगीत से जुड़े रहने का इनका सफर अभी भी बेहद हसीन रूप से चल रहा है। और क्यों ना हो, इनकी फैमिली इतनी म्यूजिकल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राजेश रोशन जी की, जिनके पिता श्री रोशन लाल जी फिल्म म्यूजिक कंपोजर थे और माता ईरा रोशन वॉज अ बंगाली सिंगर। तो चलो शुरू करें अंताक्षरी, मेरा मतलब आज का राजेश रोशन स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ जयपुर रेडियो पर। राजेश जी फिल्म जूली को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं।

माहौल बना दिया आपने एकदम मस्त वाला। नेक्स्ट सॉन्ग ब्रॉट ऑल द टाइटन्स ऑफ म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री टुगेदर। लता जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, रेखा एंड ऑफ कोर्स राजेश रोशन। उफ, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। अमित जी स्पेशली टुक आउट टाइम टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग। इतना दिल के करीब था ये सॉन्ग उनके। राजेश जी ने लता जी और किशोर दा को बस एक ही बात बोली, ऐसे गाइए जैसे वह एक वैली में गांव के एक युगल जोड़े हैं जो पहाड़ों में गा रहे हैं। बस फिर तो क्या था, रिजल्ट हम सबके सामने है जो हमने हजारों लाखों बार ऑलरेडी सुना है। रेखा और अमिताभ से बेहतर कौन स्क्रीन पर जस्टिस कर पाता है इसे। चलिए सुनते हैं अनदर सुपरहिट सॉन्ग फ्रॉम मिस्टर नटवर लाल, जो सुनाने आ रहे हैं हमें हमारे प्यारे दोस्त रेज और डॉली।

क्या बात है रे जिंडोली, इतनी सुंदर गायकी को कैसे दिल ना दे। बोलो दोस्तों, अगला गीत एकदम अलग जॉनर का है। बासु चैटर्जी वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म स्वामी, जो कि 1977 में रिलीज हुई। बासुदा ने राजेश रोशन को गायक चुनने का पूरा पूरा चॉइस दिया। येशुदास जी को चुना गया फ्रॉम डाउन साउथ। इनिशियली बासुदा वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड because he was expecting Rafi Sahab to sing this one. But एक बार final song सुना, rest was history. येशुदास जी का गाया हुआ ये outstanding गीत का करूं सजनी सुना रहे हैं हमें आज जगदीश जी। आइए सुनते हैं।

जगदीश जी कमाल ही हो आप. यू नो दोस्तों, जगदीश जी नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग. दैट्स हाउ मच ही लव सिंगिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. राजेश जी के परिवार में कई फिल्मी हस्तियां हैं. उनके भाई राकेश रोशन अपने टाइम के पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं और अब तो डायरेक्शन भी करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो राजेश जी इज नेफ्यू ऋतिक रोशन. हिज फर्स्ट फिल्म वॉज वेरी स्पेशल टू हिम, कहो ना प्यार है. टाइटल सॉन्ग वॉज मेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड बिलीव इट और नॉट ऑर्केस्ट्रा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था. और क्या धूम मचाई है इस फिल्म के म्यूजिक ने. और ऋतिक रोशन बिकेम द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन. है ना, कन्फेशन, आई हैड अ स्टार क्रश ऑन हिम टू. इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे. आपको आज हम टाइटल ट्रैक सुना रहे हैं मानवेंद्र और मेरी यानी प्रियंका की आवाज में, जिसका ओरिजिनल प्लेबैक दिया है उदित नारायण एंड अलका याग्निक ने. लेट्स डू दिस देवा, होप यू लाइक इट.

वाह, एकदम बीच छोर पे ले जाता है ना ये सॉन्ग। मजा आ गया। राजेश रोशन ने लता जी के साथ बहुत काम किया। लता जी उनकी और हम सबकी भी फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। अगला गीत आओ मनाएं जश्ने मोहब्बत, सुनते हैं प्रेरणा और बिमल से, जो लता जी और किशोर कुमार ने गाया है। मूवी दूसरा आदमी और फिल्माया गया था ऋषि कपूर और नीतू सिंह पे।

खूब गाया प्रेरणा और बिमल, छा गया आप लोग। दोस्तों अगला गीत मेरा बहुत ही फेवरेट है। इस गीत के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में आई लव यू बोलना सीख गए। आपने गेस कर ही लिया होगा, फिल्म खुद्दार से अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग। हमें सुना रहे हैं रति और मंदार। ओरिजिनल प्लेबैक था किशोर कुमार और लता जी का। लेट्स हियर इट आउट।

0: वाह, क्या पेपर नंबर है ना, मस्ती भरा, फुल ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गीत एक कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग है और इसकी सिंप्लिसिटी ही इस मूवी और इसके म्यूजिक की यूएसपी है। मूवी है बातों बातों में, सॉन्ग सुनिए कहिए। आर्टिस्ट किशोर कुमार, आशा भोसले। 1979 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और इसको टीना मुनीम और अमोल पालेकर पर फिल्माया गया था। आज हमको सुना रहे हैं गगन और सुजा। चलिए सुनते हैं।
1: सुनिए
2: कहीं कहीं
1: सुनिए सुनिए

वाह, अच्छे से सुना ना आपने ये सॉन्ग। दोस्तों आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं आओ झूमे गाएं के सुरीले सिंगर्स को जयपुर रेडियो पर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। नेक्स्ट पेशकश है इनकार मूवी का गीत छोड़ो ये निगाहों का इशारा, जो कि रिलीज हुई थी 1977 में। द सॉन्ग इज संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले, और म्यूजिक ऑफ कोर्स राजेश रोशन जी ने दिया है। हमें आज गायत्री और मुकेश जी सुना रहे हैं। लेट्स हियर देम आउट।

वाह दोस्तों, एक बार दाद देना चाहूंगी आओ झूमे गाएं के सुरीले सिंगर्स को जो आपके सामने ये अनमोल नगमे पेश कर रहे हैं। मूविंग ऑन, यू विल बी शॉक टू नो राजेश जी प्लेड द डफली फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन द सॉन्ग झूठ बोले कौआ काटे फ्रॉम द मूवी बॉबी, जो कि लता जी ने गाया था और तभी से लता जी को राजेश रोशन पसंद थे। अगला गीत हमें प्रेरणा और संजय सुना रहे हैं एक रास्ता है जिंदगी, जो कि वंस अगेन लता जी का ही गाया हुआ है फिल्म काला पत्थर से, और लता जी का साथ निभाया था इसमें किशोर कुमार ने। लेट्स हियर इट।

1977 में रिलीज हुई दूसरा आदमी का यह गीत क्या मौसम है, प्रेम में आदमी को खो जाने को कहता है। आदमी के इस तरह खोने से ही उसे जिंदगी का मतलब समझ में आने लगता है। What a beautiful thought, है ना? राजेश रोशन के मधुर संगीत और बजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाजें दी। गीत के बोल दरअसल प्रेम को एकांत का सबसे सुनहरा पल कहते हैं। गीत के बोल तथा संगीत की वजह से ही ये गीत इतना पॉपुलर है और काफी लोगों को बहुत पसंद है। और आज हमें ये सुना रहे हैं प्रशांत एंड मनीषा। लेट्स हियर देम आउट।

0: वो कहते हैं ना, संगीत की छांव में बैठे बैठे टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इट जस्ट फ्लाइज अवे। दोस्तों, इजाजत चाहूंगी आज के इस खूबसूरत राजेश रोशन स्पेशल प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप सबको यह पेशकश पसंद आई होगी। आओ झूमे गाएं ग्रुप की तरफ से आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके, गुड नाइट।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे सितारा से जो कि अपनी बेहतरीन गायकी और जिंदा दिल स्वभाव से हर किसी के दिल को छू लेते हैं। ये है ट्विन सिटी अम्बाला से किशोर सुशील जी। स्टूडियो में स्वागत है आपका किशोर जी।
2: सपना जी, सबसे पहले तो मैं जयपुर रेडियो और आपका और जगदीश जी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना गायन प्रदर्शन यहाँ कर सकूं।
1: किशोर जी, ये हमारी खुश नसीबी है कि आपके जैसे कलाकार यहाँ पर आए हैं। तो अम्बाला
2: मेरी भी खुश नसीबी है
1: जी। अम्बाला शहर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किशोर जी। यहाँ न सिर्फ एक एयरबेस है बल्कि साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ बनते हैं। लेकिन आज हम आपके नजरिए से आपके शहर को देखना चाहेंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक किशोर जी आखिर हैं कौन।
2: सपना जी, जहाँ तक शहर का सवाल है तो मेरा बहुत छोटा सा शहर है, हरियाणा में पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता हुआ अम्बाला शहर
1: जी,
2: जिसमें एयरबेस भी है, मिलिट्री एरिया भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ तक बात की जाती है, पहले ये सारा है अम्बाला कैंट में। लेकिन मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि सिटी ऑफ मिक्सर एंड ग्राइंडर्स का कभी था।
1: अच्छा,
2: इसके नाम से ये जाना जाता था। और जहाँ तक बात आप मेरी कर रहे हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
1: अच्छा।

0: ब्लेंड है।
1: अच्छा,
0: अब थोड़ा चेंज हो गया है कि ये अंबाला सिटी में जो हुडा के जो सेक्टर्स बन गए हैं वो भी वेल प्लान्ड हैं, लेकिन फ्रॉम माय चाइल्डहुड जब से मैं अंबाला में आया हूँ तब से मुझे अंबाला कैंट ही ज्यादा पसंद रहा है।
1: जी, अंबाला के छावनी से एक मेरी भी बड़ी प्यारी सी याद जुड़ी हुई है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो कुरुक्षेत्र में NIT में मैं पढ़ी हुई हूँ, तो हमारी जो ट्रेन होती थी अक्सर वहाँ पे रुकती थी, और वहाँ पर या तो हम ब्रेड पकौड़े या चने, उनके पूरी चने मिलते थे, जिसका स्वाद अभी तक हमारी जुबान पे बसा हुआ है।
0: जी सपना जी, वो रहेगा, बरकरार रहेगा, क्योंकि उनका भी एक अपना एक जैसे कहा जाए कि स्टाइल होता है
1: जी,
0: उनका
1: जी,
0: भी अपना एक अंदाज है बनाने का उसको, जिसके लिए कि आप लोग अपनी उंगलियां भी चाट लो।
1: बिल्कुल सही कहा किशोर जी,
0: जी।
1: इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: किशोर जी आगे चलते हैं, तो हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी। जैसे आपका काम तो कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो कंस्ट्रक्शन और संगीत का देखा जाए तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आपस में, पर आपने इतनी अच्छी जो आपकी गायकी है, क्या आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कभी?
1: सपना जी, देखिए जहाँ तक दिलचस्पी की बात है तो दिलचस्पी तो मुझे बचपन से ही थी, और मेरी मदर बताया करती हैं कि मेरा पहला गाना ही था कि जूली आई लव यू।
0: अरे वाह, क्या बात।
1: और इसके बाद मेरे जब मैंने अपनी स्कूलिंग में अपने आप ये मानिए कि नाइन्थ या एट्थ क्लास में था, तो मुझे रिदम की कोई नॉलेज नहीं थी कि रिदम क्या होती है।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ पे हमारे अम्बाला सिटी में एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे, जिनको के हर स्टेज पे मतलब जिनका के बहुत जम के स्वागत होता था, और बहुत अच्छी गायकी भी खैर वो करते
0: जी,
1: थे
0: जी,
1: अब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार मुझे सुना और मैंने जब गाना स्टार्ट किया तो वहाँ रिदमिस्ट भी थे, तो उन्होंने रिदम बजाना शुरू किया। मुझे तो मैंने जैसे एज आई टोल्ड यू के मुझे तो रिदम की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक गीत गाया था मेरे लिए जो कि मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, और डिस्करेज मतलब किया गया था मुझे बहुत बुरी तरह से।
0: अच्छा।
1: कि गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता।
0: ओहो हो हो हो, अच्छा।
1: और मैं अननोइंगली, मुझे पता ही नहीं था, वो गाना नया नया अभी लॉन्च हुआ था और रिलीज हुआ था
0: जी।
1: तो मुझे उस गाने के बारे में भी इतना नहीं पता था, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि तेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे और तुझे रिदम में आना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिदम की प्रैक्टिस शुरू की, और एक दिन वो भी आया कि फिर वो बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड भी मुझे मिला।
0: अरे क्या बात।
1: उस दिन से मतलब मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, तो आज मैं इतना अच्छा गा पा रहा हूँ।
0: जी जी,
1: जो भी
0: जो आपके आलोचक थे सबसे पहले, वही आपकी प्रेरणा बन गए कि आप संगीत में इतना आगे निकल गए। तो यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि किशोर सुशील जी इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने मंझे हुए गायक हैं कि एक एक सुर की गहराई में वो उतर जाते हैं। अभी आप हमारे श्रोतागण इनकी गीत सुन ही रहे हैं, तो अपने आप ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो स्तर है गायकी का वो कितना ऊंचा है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने कभी कभी इनके साथ ड्यूएट्स गाए हुए हैं, युगल गीत गाए हैं, और इनसे मुझे बहुत सीखने को भी मिला है।
1: तो सपना जी, आप ये आपकी अपनी रुचि थी, ये आपके अपने एफर्ट्स थे जो आप आज एक मानी हुई कलाकारों में मतलब आपकी गिनती
0: है। तो जी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे शब्द मेरे लिए यूज कर रहे हैं। तो किशोर जी, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस तो ऑब्वियसली बहुत जगह दे चुके होंगे अब तक, तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप कहाँ कहाँ दे चुके हैं और सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया?
1: जी देखिए, जहाँ तक तो मेरा सोलो परफॉर्मेंसेस का दौर चला, जब मैं स्कूलिंग में था तो स्कूल में भी प्रोग्राम हुए, उसके बाद कॉलेज में भी हुए, फिर उसके बाद हम कई बार जैसे कहीं प्रोग्राम होता था बहुत बड़ी स्टेज पे, तो मैंने चंडीगढ़ में भी गाया है, शिमला में भी गाया है, जम्मू में भी गाया है।
0: जी जी।
1: तो उसके बाद म्यूल का दौर आया
0: जी।
1: मैंने आपको बताया कि मैं कोई ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं,
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: कुछ भी हूँ बाथरूम में सिंगिंग सीखी, और उस म्यूल तक का सफर ऐसे ही रहा
0: जी। लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज की सौगात तो आपको भगवान से मिली ही है
1: जी। ये माँ सरस्वती की देन है, इसलिए मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ
0: जी।
1: तो ये आपका बड़प्पन है जो आप इतनी बात मेरे लिए बोलते हैं और मानते हैं इस चीज को
0: जी।
1: तो सपना जी, ये बहुत से तो शोज ऐसे भी हैं जो मुझे याद नहीं है, मेरे फ्रेंड्स जब मुझे याद कराते हैं तो मुझे याद आता है, बहुत जगह की। और सबसे ज्यादा मजा मुझे आया उज्जैन में।
0: अच्छा।
1: जब स्म्यूल का दौर था
0: जी,
1: वो हमारी बहुत अच्छी मीट थी, और बहुत हर चीज मतलब आप कहें कि पूरी व्यवस्था से किया हुआ काम था हर चीज का।
0: अच्छा।
1: साउंड भी बहुत अच्छी थी, वो कीनल जी ने और मैंने मिलके किया था
0: जी, कीनल त्रिपाठी जी।
1: जी कीनल त्रिपाठी जी,
0: जी जी।
1: तो सबसे ज्यादा मुझे उस मीट में सबसे ज्यादा मजा आया।
0: क्या बात है, बहुत ही दिलचस्प रह रही हैं आपकी बातें, और इसी के साथ हम एक छोटा सा विराम लेंगे और आपका अगला गीत सुनाते हैं
1: जी। बहुत शुक्रिया।

0: किशोर जी, आप एक बहुत ही सफल प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी आपने असिस्ट किया है। आप, जैसे कि आपने खुद ही बताया, आप कई शहरों में अपना एक सिंगिंग में नाम बना चुके हैं, और जब परफॉर्मेंसेस देते हैं, खैर मैं तो इसकी गवाह हूँ, तो लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने परिवार और बिजनेस की या प्रोफेशन की जिम्मेदारियों के साथ आप संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: सपना जी, ये बनाने से नहीं बनता, ये अपनी, देखिए मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी को सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। और मैं सोचता हूँ कि अपने लिए हर इंसान को एक दो घंटा निकालना चाहिए, जो कि शाम को मेरा निकलता था।
0: बिल्कुल सही।
1: और अपने सारे जितना भी मेरे प्रोफेशनली जो मेरे पे जिम्मेदारियां थी, वो मैं शाम को 6 या 7 बजे तक उनको निपटाने की कोशिश करता था। और उसके बाद मतलब मेरा जो टाइम रहता था वो 8 to 10 का ही रहता था हमेशा। इसीलिए आपने शायद स्म्यूल पे भी देखा होगा, जो भी मेरे कोलैब्स वगैरह इनवाइट्स वगैरह आते थे वो रात को 8 और 10 के बीच में आते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस का टाइम भी वही था मेरा, और मेरा अपना अपने लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वो टाइम था।
0: जी जी, बिल्कुल सही। तो क्या आपके परिवार में किसी और को भी ये रुचि है संगीत की?
1: जी देखिए, वैसे तो ये जो संगीत की रुचि जो आप मुझे कह रही हैं, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से सौगात में मिली है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी मोहम्मद रफी साहब को बहुत अच्छा गाया करते थे।
0: क्या बात है, वाह।
1: और मेरी मदर भी भजन बहुत अच्छे गाया करती थी, तो उनके साथ भजन भी मैंने कई बार गाए हैं।
0: जी जी जी जी। तो आपके बच्चों में आई है ये संगीत?
1: मेरे बच्चों में मेरे सबसे छोटी बिटिया और बेटे को ही ज्यादा शौक है
0: जी,
1: बाकी किसी को नहीं है। मेरी वाइफ तो बिल्कुल इसके हिंदी सॉन्ग के तो बिल्कुल आप मानिए कि वो
0: उनको शौक नहीं
1: है बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाबी हैं। अच्छा, तो उनको पंजाबी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी कि आपके परिवार में अभी जैसे आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, और आपके बच्चे 3 जनरेशन में ये जीन्स में आ गई है संगीत की बात, ठीक है ना?
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। यहीं पर हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: किशोर जी कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो यहाँ जहाँ पर भी आप अपने आप को इस वक्त पा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी का और संगीत का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा किसे देना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ सपना जी,
0: जी
1: तो मैं अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत का जो मुझे ये रास्ता जिन्होंने दिखाया, वो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं।
0: जी जी,
1: ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: अब अगर हम संगीत की बात करें
0: जी,
1: तो संगीत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं जितना भी गा पाया, जितना भी मैंने जितना भी सीखा, जितना भी मैं कर पाया, वो सारा मैं उन्हीं सिंगर के मतलब ये वो करना चाहता हूँ, उन्हीं को श्रेय देना चाहता हूँ मैं ये सारा,
0: जिन्होंने आपकी आलोचना की,
1: जिन्होंने मुझे बहुत बैडली डिस्करेज किया था कि गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, तो ये मैं श्रेय उन्हीं को दूंगा। संगीत के मामले में हमेशा मेरा श्रेय उन्हीं को रहेगा।
0: जी, तो हम वो उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पर भी हों, वो शख्सियत इस वक्त ये प्रोग्राम जरूर सुन रहे हो, ताकि वो खुद ही जान सकें कि उनकी एक छोटी सी बात,
1: एक दिलचस्प बात और भी, सॉरी मैं आपको
0: नहीं कोई बात बताइए,
1: वो समय भी आया कि जब उन्होंने आके मुझे गले लगाया और बोला कि मुझसे एक बार सॉरी फील किया कि मेरे वो जो अल्फाज थे वो गलत थे।
0: इससे बड़ी बात
1: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
0: जी,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए कोई भी ट्रॉफी, कोई भी अचीवमेंट मेरे लिए इससे बड़ी नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
1: जिसने मुझे डिस्करेज किया,
0: इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही और कोई नहीं।
1: कॉम्पिटिशन में गा के मैंने बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड जीता।
0: क्या बात है, क्या
1: और फिर उनका गले लगाना, सोने पे सुहागे का काम किया उसने।
0: वाह, तो किस गीत पर आपको अवार्ड मिला था किशोर जी?
1: सपना जी, ये था मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। किशोर जी का बहुत ही लोकप्रिय गीत है और इसे गाना कोई आसान नहीं, क्योंकि इस गाने में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि किशोर जी का एक
1: वो टाइम था जब मैं सिर्फ 22 साल का था।
0: अरे वाह,
1: आज के टाइम में अगर आप मुझे कहें कि मैं यूडलिंग कर पाऊंगा तो वो मेरे आप बस में नहीं है, क्योंकि किशोर जी भी, किशोरदा हमारे जो थे, वो भी 50 के बाद यूडलिंग नहीं कर पाए थे।
0: अच्छा,
1: so now I'm,
0: नहीं मालूम था। अच्छा,
1: नाउ आई एम ऑल्सो इन 50।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत मजेदार रही
1: आपके साथ। सपना जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जयपुर रेडियो और जगदीश अरोड़ा जी, और आपका तह दिल से
0: धन्यवाद।
1: मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे आपने ये इतना माना और मुझे ये मौका दिया कि मैं जयपुर रेडियो के माध्यम से अपने गाने सुना पाऊँ।
0: आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कहते जाइए।
1: देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे जो भी हमारे जयपुर रेडियो के श्रोता हैं उन सबका आभार धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो अपने बहुत ही अपने बिजी टाइम में से अपना टाइम निकाल के जो सुनते हैं।
0: जी जी।
1: और श्रोताओं में से मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे जो स्म्यूल के सिंगर्स भी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: स्पेशली उन सिंगर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए स्म्यूल हमारा स्ट्रेस बस्टर है।
0: जी।
1: हम अपना गाना गा के यहाँ पे अपनी जो दिन भर की टेंशन है, दिन भर का जो भी हमारा ऊंच नीच हुआ हमारे साथ, उसमें हम निपट के उससे हम ये अपना टेंशन दूर करने के लिए हम उसको अपना स्म्यूल पे आए।
0: जी बिल्कुल।
1: अब कई सिंगर्स का क्या रहता है कि वो अपने इनवाइट्स खोलते हैं, किसी को रिस्पांस नहीं देते।
0: जी।
1: ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खुशी बांटेंगे तो खुशी लौट के भी आएगी आपके पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो मैं हर सिंगर से यही कहूंगा कि आप अपने ज्वाइनर्स को जरूर सपोर्ट करें, डिस्करेज ना करें। किसी ने अगर बुरा भी गाया तो उसको भी दो शब्द उसके लिए एनकरेजमेंट के लिए बोल दिए कीजिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और आपस में प्रेम प्यार वाली भावना मन में रख के कमेंट करें उनको।
0: जी बिल्कुल, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए। अगर
1: जी,
0: कोई
1: जी,
0: अपने
1: मेरे शब्द आपने कह दिए मेरे शब्द,
0: कोई अपनी व्यस्त जिंदगी में से दो मिनट भी निकाल के अगर हमारे साथ गाना गाने आ रही है तो खैर, पहली बात तो ये कि हम ये बोलने वाले या ये टोहने वाले, मापदंड करने वाले कोई भी नहीं है कि कोई अच्छा गा रहा है या बुरा, क्योंकि हम उस स्तर पर हम नहीं गाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई हमें ज्वाइन कर रहा है तो जरूर उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने सपना जी।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अम्बाला के किशोर सुशील जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं एक बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड गायिका सोनिका को, जो कि शहर अंबाला की शान है। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सपना, एंड थैंक यू सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्ते, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वाले बेताब है ये जानने के लिए कि आज की जो हमारी जगमगाता सितारा हैं, उनकी पहचान क्या है और आपके शहर अंबाला की खासियत क्या है।
2: मेरी पहचान छोटी सी पहचान है सोनिका। आई एम सोनिका
1: जी,
2: और बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर। कानपुर शहर से हूँ और मेरी शादी अंबाला में हुई है
1: जी,
2: और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। दो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं।
1: तो आपकी जो सारी परवरिश हुई है वो कानपुर की ही हुई है?
2: सारी परवरिश कानपुर की हुई है, मेरे पेरेंट्स कानपुर से ही हैं।
1: अच्छा अच्छा, तभी आपकी हिंदी जो है इतनी अच्छी है,
2: शुद्ध है।
1: जी, तो खैर ये तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर एक लड़की को अपना मायका बहुत ही पसंद होता है, पर आपके लिए इन दोनों शहरों में से आपके दिल के कौन से ज्यादा करीब है, अंबाला या कानपुर?
2: एक्चुअली मैं बोलूँ तो अंबाला ज्यादा करीब है, कानपुर पसंद है, वहाँ पे मैंने बचपन बिताया है, लेकिन वो क्राउडेड ज्यादा लगता है मुझे।
1: अच्छा,
2: और मुझे
1: अच्छा।
2: पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है, तो अंबाला मुझे बहुत छोटा सा और पीसफुल शहर लगता है
1: जी,
2: तो इसलिए मुझे अंबाला ज्यादा पसंद है कानपुर से ज्यादा।
1: वैसे आपने जो ये शब्द यूज किया है छोटा, कहने को तो शायद ये छोटा हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हरियाणा के लिए भी और भारत के लिए भी। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि आप अंबाला को किस तरह देखती हैं।
2: अंबाला हिस्टोरिकल अगर आप देखा जाए तो हिस्टोरिकल में भी, मतलब कि जब जिस टाइम पर ब्रिटिश और मुगल ने यहाँ पर रूल किया था उस टाइम से है
1: जी,
2: तो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ये उस टाइम का
1: जी।
2: और अंबाला फोर्ट है यहाँ पे
1: जी, जी
2: जो 14th सेंचुरी से है।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: हाँ जी, और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब लोग बहुत अच्छी हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: इकोनॉमिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं।
1: अच्छा,
2: कपड़ा यहाँ बहुत फेमस है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि खासकर पंजाब के लोग, अगर किसी के घर में कोई शादी आती है तो वो पंजाब को छोड़ के सीधा रवाना हो जाते हैं अंबाला की तरफ शादी की शॉपिंग के लिए।
2: राइट। यहाँ के कुछ एक दो फेमस शॉप्स हैं।
1: अच्छा,
2: तो जहाँ पर लोग स्पेशल शॉपिंग करने आते हैं।
1: क्या बात है। तो सोनिका, इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो सोनिका, अपनी बातों का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संगीत के बारे में कुछ बताइए कि आपकी रुचि क्या संगीत में शुरू से ही थी या इसके अलावा भी कुछ शौक रखती हैं आप?
1: हाँ, मैं शौक रखती हूँ, बहुत सारे शौक रखती हूँ। संगीत में मेरी रुचि सच में स्टार्टिंग से ही थी और एक्चुअली मैं सिंगिंग से ज्यादा डांस करती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो डांस का ज्यादा शौक था, लेकिन हाँ सिंगिंग भी साथ साथ चलती रहती थी। मुझे म्यूजिक सुनने का बचपन से ही बहुत शौक था
0: जी।
1: बट हाँ, कभी कोई स्टेज प्रोग्राम तो नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी मम्मी से मुझे ये गिफ्ट में मिला, आवाज मिली है।
0: अच्छा, वो गाती हैं आपकी मदर?
1: थी।
0: ओहो, अच्छा।
1: बहुत अच्छा गाती थी
0: जी।
1: और मींस 80 इयर्स में वो गए हैं, तो 80 इयर्स में भी उनकी वॉइस बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बच्चा गा रहा हो।
0: अरे वाह, मतलब क्रिस्टल क्लियर वॉइस थी उनकी।
1: हाँ बिल्कुल क्रिस्टल
0: क्लियर वॉइस। जीन्स में ही मिली है ये सौगात।
1: हाँ, ये मुझे जीन्स में मिली है बिल्कुल, तो ये मेरी माँ का गिफ्ट है मेरे लिए।
0: तो आपके पिताजी को भी शौक रहा है संगीत?
1: नहीं, वो बिल्कुल सोशल वर्कर थे।
0: अच्छा।
1: वो बीजेपी की साइड थे और बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं मेरे पापा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो आपके हस्बैंड को है शौक संगीत का?
1: सुनते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन हाँ मुझे मना नहीं करते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो स्पेशली मेरे से बिना पूछे अनाउंस कराते हैं कि सोनिका गाएगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज स्पाउसेस में बड़ा कम होता है कि एक दूसरे को इतना प्रोत्साहन मिले। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं और हमारी यही भगवान के आगे भी यही प्रेयर रहेगी कि इसी तरह आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो सोनिका, आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंसेज शादी के बाद दिए हैं?
1: मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेज ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ दो तीन मीट्स में, ऐसे गेट टुगेदर में मैंने मैंने एक दो बार गाया है
0: जी। जी
1: स्टेज पे।
0: तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके दिल को छू गया हो या कोई हंसी वाली बात हुई हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं?
1: ऐसा तो कुछ खास मुझे याद नहीं है।
0: तो यहाँ मैं अपने श्रोताओं को सोनिका की तरफ से इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि मैंने इनकी मीट का एक वीडियो देखा था जहाँ पर ये अपनी ऑडियंस से पूछ रही थी कि माइक कैसे पकड़ना है, कम से कम मुझे ये बता दो।
1: यस यस यस, मुझे सच में माइक पकड़ना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी एक दो बार ही मीट्स में मैं गई हूँ और मैंने वहाँ पे स्टेज में परफॉर्म किया है, तो मैं जब भी माइक पकड़ती हूँ तो वो वॉइस सबके तक जाती नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे माइक पकड़ना सिखा दो।
0: वैसे सोनिका, आप इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इसमें माइक की गलती है कि वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, आपकी गलती नहीं है।
1: ठीक है।
0: चलिए, इसके साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं।

0: सोनिका, आप स्म्यूल के जगत में एक जाना माना नाम है। वर्सेटिलिटी में आपका कोई जवाब ही नहीं। अलग अलग जॉनर्स के गीत आप बड़ी कुशलता से गा लेती हैं और ये मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं अक्सर आपको सुनती रहती हूँ।
1: थैंक यू सो मच।
0: कई ग्रुप्स की भी आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत के परिवार का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: बहुत सिंपल है
0: जी।
1: जब पहले घर का काम देखती हूँ
0: जी,
1: जो मेरी प्रायोरिटी है,
0: हाँ,
1: सुबह से उठकर, तो उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो वो टाइम मैं खुद को देती हूँ, वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी देता है, और म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है
0: जी। हम सबकी रूह की खुराक है संगीत, और इसके बगैर तो खैर हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात बोली कि प्रायोरिटी तो हमेशा हर किसी की पहले परिवार ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, नहीं तो जिंदगी बड़ी नीरस हो जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने शौक की जिंदगी कुछ टाइम अपने लिए हमें देना है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनिका, आप संगीत के साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अब अपने जीवन में कदम बढ़ाया है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसे उस तरफ इंटरेस्ट बना।
1: स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान बनकर रहना है
0: जी,
1: जिसमें लाइक मैं समझती हूँ कि नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट
0: जी,
1: नो जेलसी, नो एंगर, इन शॉर्ट कि मुंह से कुछ भी निकालने से पहले हमें एक सेकंड का पॉज लो, फिर बस मुंह से निकाला हुआ ये शब्द सोच लो कि सामने वाले को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहा।
0: और कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसे तीर की तरह होता है जो वापस नहीं आप कभी ले पाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: जी जी जी। एंगर की आपने बात की, तो एंगर को तो खैर काबू में रखना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त और इतनी तेज हो गई है। इवन अगर हम रोड पर भी जा रहे हो, कोई तेजी से हमें गलत तरीके से ओवरटेक कर जाए तो भी गुस्सा आ जाता है। तो
1: मुझे नहीं आता
0: है। आप अच्छा
1: आता ही नहीं है,
0: आता ही नहीं है।
1: नहीं आता, आसानी से नहीं आता।
0: अच्छा,
1: बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है मुझे।
0: और जब आता है
1: आता है तो फिर थोड़ी देर का होता है, निकल जाता, फिर मैं बस वो रोती हूँ।
0: ओहो, मतलब आप अपने आप को ही तंग करती हैं, दूसरों को तंग नहीं करती।
1: नहीं, पर ठीक भी जल्दी होती हूँ।
0: जी जी, बहुत ही प्यारी इंसान है आप। हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सोनिका के साथ स्म्यूल में कई ड्यूएट्स भी गा चुकी हूँ, अक्सर इनको सुनती तो रहती ही हूँ। ये जितनी प्यारी इंसान है उतनी ही इनकी प्यारी आवाज है, शख्सियत है। खैर, हमारे श्रोता अब तक तो ये जान ही चुके होंगे आपके गीत सुनकर। तो इन दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपका अगला गीत सुनते हैं।

0: सोनिका, आज आपके डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने से यहाँ आपकी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीतों से सारा माहौल महक उठा है। आपका दिल से आभार कि आपने अपनी व्यस्त जिंदगी से इतना वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में स्पेशली हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपने इतने बेशकीमती नगमे लेकर आई हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए आप दो शब्द जरूर कहते जाए।
1: बिल्कुल, मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी
0: जी,
1: चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए मतलब चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ हैप्पीनेस को चूज करो, आपको खुश रहना है। और इसके लिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालकर अपनी पसंद का अपना पसंद का काम जरूर करो
0: जी,
1: जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि हम सबके लिए तो जीते ही हैं, अपने लिए जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार, खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया बात कही। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप से ही प्यार करना भूल जाते हैं, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपना नंबर हमारा सबसे पीछे होता है। स्पेशली जो भारत की गृहणियां हैं, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनके ऊपर तो खैर ये बात बहुत ही 100% सही उतरती है। इनफैक्ट हम तो खाना भी जब बच्चे छोटे होते हैं तब खाते हैं कि चलो ठीक है, अगर इनका कुछ छूटा है तो वो खा लो।
1: यस, बिल्कुल बिल्कुल सच।
0: तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे श्रोताओं को बोली।

0: आपका बहुत धन्यवाद सोनिका.
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन.
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अंबाला से सोनिका जी के साथ. मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी. जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ. यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए. रब राखा.
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन. अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी. जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो.

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आपका स्वागत करता है, आपकी आवाज, आपकी पहचान, और मैं आरजे प्रीत लेकर के आती हूँ डेली कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। हमारी कुकिंग शो में बहुत सारी ऐसी क्यूट मॉम्स आती हैं जो सिंगर हैं, कुकिंग तो करती हैं, वर्किंग वुमेंस भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं। बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें कुछ सिंगल लड़कियां भी आती हैं जो बैचलर हैं अभी। तो सभी ने अपनी डिशेस को आप तक पहुंचाया है, आप सब तक शेयर किया है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हैं अलका जी, और अलका जी से ही हम सीधा बात करते हैं। और चूंकि हम उनके किचन में पहुंच चुके हैं, तो किचन में रेसिपी बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है, ये तो सब आपको पता ही है आप सबको। तो पहले तो हम अलका जी से ही पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए लिसनर्स को।
2: नमस्ते जी, प्रीत जी नमस्कार, और जयपुर रेडियो को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे सांझा चूल्हा में ऐड किया और मेरा एक अच्छा सा इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका हमारी जयपुर रेडियो की पूरी टीम की ओर से। आरजे प्रीत वेलकम कर रही है आपका। तो अलका, आप कहाँ से हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएं।
2: मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ, बट मैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का यू नो ये होता है ना कि वो, फिर मैं हैदराबाद में सेटल हूँ, और मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में काम करते हैं, एक्चुअली डिफेंस में है, तो मेरा तो ऑल ओवर इंडिया घूमना चलता रहता है, बट फाइनली अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ, हैदराबाद में फाइनली सेटल हो गई।
1: आप अलका हैदराबादी हो गई हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती हैं मी हैदराबादा। जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हैदराबादा बोलते हैं यहाँ पे।
1: तो कानपुर से हैदराबाद का सफर बहुत लंबा है, तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा होगा आपको वहाँ पे।
2: बहुत बहुत, एक्चुअली मेरी जर्नी जो है वो कानपुर से हैदराबाद नहीं थी, आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जगह रहना पड़ा। कानपुर से मैं भुज गई, भुज से फिर बंगाल गई, बंगाल से फिर मैं राजस्थान गई, राजस्थान से फिर जम्मू कश्मीर गई, देन लास्टली मैं हैदराबाद सेटल हो गई।
1: मतलब कुछ फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे हैं, घूमने को मिल रहा है आपको,
2: बहुत, और ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा मैंने देख लिया है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये

0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को, जो है हैदराबाद से, और एक प्यारा सा सॉन्ग से उन्होंने श्री गणेश कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं रेसिपी की ओर। तो अलका जी, आज क्या आप शेयर करने वाली हैं लिसनर से?
1: हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छी सी रेसिपी बताऊंगी और मैं चाहूंगी आप सब एक बार जरूर ट्राई करें इसको। और एक ऐसी रेसिपी है, जैसे कि होता है कि हम जैसे भूल जाते हैं कि सडनली मुझे याद आता है कि मुझे आज इडली खाने का मन हो रहा है,

0: हाँ
1: बट मैं भूल गई कि मैंने नारियल भी नहीं भिगोया, नारियल की चटनी कैसे बनाऊंगी। फिर मैंने बैटर नहीं भिगोया, चावल नहीं भिगोए, दाल नहीं भिगोया, फिर मैं कैसे बनाऊंगी इडली। तो
0: करेक्ट,
1: वही थोड़ा सा क्या है कि उसको फटाफट वाला कि बस
0: ट्विस्ट ट्विस्ट
1: तो
0: लेकर
1: उसको,
0: आई हैं आज आप। हाँ
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद का तो है, हैदराबाद का फेमस
0: हाँ
1: है इडली सांभर डोसा
0: हाँ
1: मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ
1: कहा यहीं से ही शुरुआत करती हूँ एक बार
0: हाँ
1: देखिए
0: जी।
1: मैं एक्चुअली वो इंस्टेंट इंग्लिश इडली है कि फटाफट आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल लेना है। मटेरियल है फर्स्ट कि आपको 1.5 कप चावल का आटा लेना है। जनरली चावल का आटा मिल जाता है हैदराबाद में, तो बहुत मिलता है,
0: हाँ,
1: बट
0: यहाँ
1: अगर
0: हर जगह मिलता है वो तो, चावल का आटा हर जगह मिलता है। हाँ
1: हाँ चावल का आटा हर जगह मिलता है, तो आप एक नाप रख लीजिए, जो भी नाप आपकी कटोरी है या कप है कुछ भी एनीवन, तो
0: जी।
1: नाप रख करके 1.5 कप चावल का आटा ले लीजिए। फिर उसमें आधा कप सूजी, थोड़ी मोटी वाली सूजी भी दो
0: ओके
1: प्रकार की आती है, एक पतली आती है और एक मोटी
0: हाँ
1: आती है,
0: हाँ करेक्ट हाँ
1: थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे तो उससे पफ जो होता है ना थोड़ा सा अच्छा आएगा उसमें।
0: ओके हाँ
1: हाँ तो वो मिलाकर और उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली नमक डाल करके, और फिर उसमें 1 कप दही डाल
0: ओके
1: करके, और उसको पानी धीरे धीरे डालते जाइए और उसको मिलाते
0: का
1: जाइए, फूटते
0: बैटर
1: जाइए
0: बैटर ऐसा बनना है जो
1: बैटर।
0: इडली
1: हाँ
0: वाला हो।
1: हाँ बैटर जब ये वाला इतना डाल करके आप उसको फेंट लेंगे, देख लीजिए ये बैटर आपको कैसा लग रहा है, थिक लग रहा है या थोड़ा सा थिन लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है इसमें, वो बैटर बना के आप 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए।
0: ओके
1: उसके बाद उसमें फिर आप सोचेंगे चटनी कैसे बनाऊं, अब मैं तो नारियल को वो नहीं किया है, कैसे बनाऊंगी तो कैसे खाऊंगी, बट उसका भी एक प्रोसेस है कि चटनी कैसे बनानी है।
0: अलका जी, लेकिन हमें बैटर को मतलब कि रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद आप चटनी के प्रोसेस की ओर जा रही हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: अभी जो
0: मैं चाह रही
1: 10 मिनट
0: हूँ कि बैटर को तब तक के रेस्ट करने दीजिए। और इस बीच हम सुनते हैं अलका सक्सेना जी का एक सॉन्ग और, तो कुछ
1: बिल्कुल
0: गुनगुनाएंगे
1: बिल्कुल
0: आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रुके रुके से कदम।

0: बहुत अच्छी सिंगिंग है, इवन सिंगिंग करती हैं आप, बहुत ही प्यारे सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत ही अच्छे। जो जयपुर रेडियो के लिसनर्स हैं ना, जो थोड़े से मतलब ओल्ड सॉन्ग्स पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन लेकर आई हैं अलका सक्सेना, जो
1: थैंक यू
0: हैदराबाद से हैं। तो हमने अभी इडली के बैटर को रखा हुआ है रेस्ट करने के लिए, देन कंटिन्यू प्लीज।
1: बिल्कुल। हाँ, तो मैंने इडली के बैटर को 10 मिनट्स के लिए रखा था, आपने एक गाना भी सुन लिया उसके बीच में।
0: जी बिल्कुल।
1: अभी मैं उसकी चटनी पे आती हूँ। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए जरा सा। उसमें मूंगफली, कच्ची मूंगफली होती है ना,
0: हाँ
1: तो कच्ची मूंगफली को उसमें डाल दीजिए। छिलका नहीं
0: ओके
1: उतारना है, सिंपल डाल देना है।
0: अच्छा हाँ
1: एंड जो रोस्टेड चना दाल होती है, जैसे वो वाली चना दाल, थोड़ी सी, जितना
0: हाँ
1: मूंगफली लिया है उसका आधा
0: ओके
1: जस्ट।
0: ओके
1: तो हरी मिर्च डाल दीजिए, एक अदरक ले लीजिए, और थोड़ा सा उसको जैसे चटपटा बनाने के लिए एक छोटी सी इमली डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, और उसको फ्राई कर लीजिए हल्का सा।
0: ठीक है हाँ
1: बहुत थोड़ा सा तेल डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि फिर चटनी में तेल ही तेल नजर आएगा। बहुत
0: हाँ
1: ही हल्का सा
0: लाइट सा
1: डालना है।
0: लाइट सा,
1: हाँ,
0: कुछ
1: बस कि
0: ड्रॉप
1: बस बस हाँ, जस्ट
0: ड्रॉप
1: जस्ट वन वन स्पून समझ लीजिए, ताकि वो
0: ओके
1: हमारा बस भून जाए, जो भी मटेरियल
0: ओके
1: डाल रहे हैं उसमें एक हल्का सा सौंधापन आ जाए।
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: कानपुर में एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं, सौंधापन आ जाए,
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: खुशबू जो आती है ना, वो आपको खुद से पता
0: बहुत आ रही आ
1: चलेगी।
0: रही आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, नहीं लिसनर्स के भी मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी तैयारी करिए फटाफट से
1: बस
0: इंस्टेंट
1: उसके बाद
0: इडली
1: आ गया, तो
0: बनाने के
1: आपका
0: लिए।
1: बस भुन गया, आपको खुशबू आ गई है। अब बस उसको थोड़ा सा ठंडा करके रखिए, उसके बाद ठंडा करने के बाद उसको पीस लीजिए। बस पीस करके आपको उसमें अच्छा सा तड़का देना है, उसको बढ़िया वाला तड़का, जो कड़ी पत्ता से तड़का दिया जाता है।
0: ओके
1: तो उसमें तड़का देने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तड़का कैसे देना है। तो उसको पीसने के बाद आपको एक ऑयल फिर से एक बाउल में गरम करना है, उसके बाद राई एंड थोड़ी सी उड़द दाल हाफ स्पून, एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लाल मिर्च फुल वाली जो सजी हुई होती है, हम
0: ओके
1: हमारे तड़का मिर्च बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ लाल तड़का वाली मिर्च बोलते हैं। तो
0: ओके
1: उससे तड़का दे करके बस उसको चटनी के ऊपर डाल देना है। आपकी चटनी रेडी हो गई, एकदम गर्मा गर्म।
0: वाह, मैं क्या करूं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसी डिश है जो हर तरफ से बनाई जा सकती है कि
1: बिल्कुल, अभी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के टिफिन के लिए, और इतनी इंस्टेंट है कि फटाफट बन जाइए, हाफ एन आवर में आपकी डिश आप खा भी लेंगे,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो
1: वो
0: हमने
1: बहुत।
0: चटनी तो देख ली सुन ली, पर अभी हमें इडली के बारे में थोड़ा सा जानना है कि इडली का बैटर फूल चुका है और हम
1: जी
0: उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसकी रेसिपी भी सुन लेते हैं चलते हैं इडली बनाने के लिए। आपके कैसे, ओवन में या गैस में कैसे बनाती हैं बताइए।
1: जिसके पास ओवन नहीं है वो भी बना सकते हैं, कि आप एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख सकते हैं, उसके ऊपर इडली के पैन आते हैं, या फिर वैसे बने हुए आते हैं खांचे जैसे इडली के, जिसमें कि इडली का शेप होता है,
0: जी
1: उसको आप ले सकते हैं, और उसमें पानी गर्म करके उसकी स्टीम में ही डालना है उसको, एक्चुअली वो स्टीम से ही पकता है, फिर उसको ऊपर
0: ओके
1: से ढक करके आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट ओवन में भी बन सकता है, आपको जैसा। इडली के वैसे भी प्रॉपर स्टैंड भी आते हैं जो इडली मेकर होते हैं, तो जिसके
0: हाँ
1: पास जो भी
0: तो
1: अवेलेबल है, जिसके पास नहीं भी अवेलेबल है, तो वो भी इजीली बना सकता है उसको।
0: करेक्ट हाँ, तो फिर उसको इडली को हमें चेक करने के लिए एक स्टिक डाल के और चेक करना है कि वो पक गई है ना।
1: हाँ, वो जब आप ओवन के अलावा बनाते हैं तो आपको एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में।
0: बिल्कुल
1: ओवन में
0: बिल्कुल
1: तो हमें पता होता है कि क्या होता है, कैसे डालना है, कितना मिनट लगाना है, कितने सेकंड्स लगाना है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा।
0: हाँ, तो मतलब ये बहुत ही टेस्टी सी इडली उसके साथ डिप यानी चटनी भी शेयर कर चुकी हैं अलका सक्सेना जी। तो जब तक ये लिस्टर्स कर रहे हैं ना तैयारी, क्योंकि उनको तो टाइम लगने वाला है, ये सब घर में ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा ये डिब्बे खोलना वो डिब्बे खोलना सब कलेक्ट करना, तो जब तक वो
1: जी
0: ये करेंगी ना तब तक के चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं आपका, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हो जाए
1: चलिए हो जाए।

0: की रेसिपी शेयर करिए अलका सक्सेना जी। नहीं, उनके जादू से कोई नहीं बच पाएगा और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स जरूर से जरूर अलका सक्सेना जी की बनाई हुई रेसिपी इडली विद चटनी जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। उनको अपना फीडबैक दीजिए, उनको अच्छा लगेगा अगर आपका फीडबैक आएगा। इनफैक्ट अगर आप उसमें कुछ वेरिएशन करना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, तो वो भी हमें शेयर करिए। हमारा संजय चूल्हा की टीम आपके हर एक मैसेज का इंतजार करती है जो आप हमें देते हैं। और रेटिंग रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए जयपुर रेडियो को। और जयपुर रेडियो के सभी लिस्टनर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर डिश में कुछ भी स्किप हुआ है तो प्लीज, हमारा रिपीट ब्रॉडकास्टिंग आता है डेली, दिन में 2 बजे, शाम 5 बजे, आप बिल्कुल सुनना ना भूलें। और अपनी इडली और चटनी दोनों की, ये जो मुंह में पानी आ रहा है ना लिस्टर्स, मेरे भी आ रहा था, क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसी डिश है कि क्या ही करें। तो बनाने की तैयारी करिए और मस्ती से गाते गाते, सुनते सुनते जो अलका जी ने सॉन्ग सुनाए हैं उनको आराम से बनाइए। तो अलका, आप क्या कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगी जयपुर रेडियो के लिसनर्स के साथ, किसी
1: बिल्कुल
0: टिप?
1: टिप शेयर करूंगी। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने स्किप का नाम लिया तो मैंने तो 10 मिनट बेटर रखा था। 10 मिनट बाद एक और प्रोसेस है, वो मैं
0: हाँ
1: बताना भूल गई हूँ, वेरी सॉरी।
0: हाँ बताइए बताइए,
1: वो
0: अभी टाइम
1: प्रोसेस ये कि
0: है।
1: 10 मिनट के जैसे ही आप उसको, चटनी आपकी रेडी हो गई है, उसमें आप जैसे ही बनाने जाएंगे, जस्ट 2 मिनट्स पहले एक इनो का पाउच उसमें डालेंगे, बिकॉज हमें उसका फर्मेंटेशन चाहिए। और मैं फर्मेंटेशन किसी से नहीं ले रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा
0: राइट,
1: नहीं डाल रही हूँ। तो जस्ट
0: करेक्ट,
1: एक इनो का पाउच डालेंगे, और डालते ही थोड़ा ही हिलाना है, बहुत ज्यादा फेंटना नहीं, क्योंकि फिर फर्मेंटेशन उसका खत्म हो जाएगा। फटाफट बस हिला करके उसको चढ़ा देना है, बस इतना ही था। इनकेस आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो सोडा भी यूज कर सकते हैं।
0: हाँ। तो अगर इनो नहीं है घर में तो आप सोडा यूज कर सकते
1: जी
0: हैं, पर
1: बिल्कुल,
0: बनानी तो जरूर है अलका जी की
1: बनानी
0: बनाई।
1: जरूर है, बहुत टेस्टी है, और
0: हाँ
1: हैदराबाद की तो स्पेशल
0: करेक्ट,
1: डिश
0: यस
1: एक्चुअली है ये।
0: हाँ। तो अलका जी के बनना देख लीजिए आप, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स की खबर लेने वाली हैं अलका जी। तो
1: बिल्कुल
0: बनानी जरूर है, फीडबैक जरूर देना है। टिप जो
1: बिल्कुल,
0: टिप्स आपने शेयर करें वो जरूर
1: हाँ
0: से
1: एक,
0: जरूर फॉलो करना है। एक और टिप है ना?
1: हाँ हाँ जी, बस एक एक टिप जरूर बताना चाहूंगी जो अच्छा है लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग जनरली, हम लोग कानपुर के यू हैं, तो पूड़ी पराठा ये सब घर में बनता रहता है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो पूड़ी बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आटा माड़ के मैं रख देती हूँ, बट वो थोड़ी देर में जब पूरी बनाने जाओ तो एकदम वो गीला गीला सा हो जाता है। पूरी का आटा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड माड़ो तो फटाफट पूरी बनती है, विदाउट मतलब पर्थन यूज करे हुए। पर्थन समझ
0: हाँ
1: रहे ना,
0: जी
1: पर्थन।
0: जी जी हाँ हाँ रोटियां
1: जी
0: बनाने के लिए तो हर घर में ही यूज
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: जी
0: हाँ जी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो पर्थन यूज करे बगैर आपका कड़े आटे में अच्छा बनता है। बट अगर आपका थोड़ा लूज हो जाएगा तो आप या तो उसको इतना भी करेंगे वो बात नहीं आ पाती है। तो आपका जब आप पूरी सेकते हैं पर्थन के साथ बेल करके, तो वो पूरा ऑयल खराब हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है, उसमें पूरा पर्थन चला जाता है। तो उसके लिए एक टिप है कि अगर आप पर्थन में पूरी सेक रहे हैं तो एक चुटकी नमक आप अपनी कढ़ाई में डाल लीजिए, ऑयल में, पूरी सेकने से पहले, तो आपका ऑयल कभी भी खराब नहीं होगा।
0: हाँ, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि ये पर्थन ऐसे कुछ ऐसे शब्द है ना कुकिंग में जो
1: जी
0: हर घर में यूज होते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें कई कई नामों से जानते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्राई आटा
1: हाँ
0: जो हम
1: बिल्कुल,
0: है ना उसको जो रोटियां बनाने में यूज करते हैं, उसे हम भी पर्थन ही बोलते हैं। आपका पता नहीं है क्या बोलते हैं, पर आपको समझ आ रहा होगा जो टिप आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट टिप है, यूजफुल टिप है, इसको जरूर से जरूर यूज करिए और जरूर से जरूर अलका जी के रेसिपी को ट्राई करिए। अलका जी, जाते जाते एक सॉन्ग और आपका और सुनेंगे, फिर वापस आते हैं हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाय शर्मा, हाय शर्मा, हाय शर्मा, किस किस को बता।

0: जी आप बता चुकी हैं अपने खाने की कहानी, बता चुकी हैं अपनी डिश की कहानी, बता चुकी हैं, और ये कहानी जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच चुकी है। और जयपुर रेडियो जो हमारी हर जगह कोने कोने में दुनिया देश में सुना जाता है, स्मॉल टाउन्स में, गांव में, देहात में, कस्बे
1: वाह
0: में, मेट्रो सिटीज में, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह पर जयपुर रेडियो सुनते हैं लोग। तो जयपुर रेडियो सुनना ना भूलें, और साथ में कुकिंग शो सुनना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। आज आप सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को। तो अलका सक्सेना जी,
1: जी
0: प्यारी
1: बोल
0: सी
1: जी, थैंक
0: सिंगिंग सुना करी आपने, मतलब सॉन्ग्स हम सबको सुनाए अच्छे अच्छे और
1: यू थैंक यू।
0: डिश भी बहुत अच्छी शेयर करी, टिप्स यूजफुल थे। तो क्या अब आप जाते जाते लिसनर्स को कुछ बोलना चाहेंगे?
1: बस यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले आप तो जो मैंने डिश बताई है 100% ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भूल जाते हैं, और भूल नहीं भूलते हैं तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं, बट अगर भूल जाते हैं तो आपको हाफ एन आवर में आपको पसंदीदा आपको टिफिन बॉक्स में मिल जाएगा, बच्चों को आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। तो ये जरूर ट्राई कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गानों को सराहने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: मैं एक बार जानती हूँ कि ये ऐसी डिश है जो ब्रेकफास्ट में, लाइट लंच में और डिनर जो लोग हल्का करते हैं, जो चाहते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी ना मिलके कुछ हल्का सा
1: हाँ
0: मिले, तो उस जगह पर ये बहुत यूजफुल डिश है। इसको आप
1: जी
0: ट्राई
1: जी
0: कीजिए
1: बिल्कुल
0: और जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए। जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलिए। अलका जी, जाते जाते एक तड़का मारिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जाते जाते मुलाकात पे ये गाना सुना देती हूँ।

0: जी बिल्कुल ललका जी, आपसे हमारा दिल का याराना और प्यार का सिलसिला पुराना है और चलता रहेगा। तो
1: क्या बात है।
0: जयपुर रेडियो में हम आपको दोबारा से फिर से जल्दी ही आमंत्रित करेंगे ताकि आप एक और नई डिश के साथ आए और हमारे जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच जाए और उनके किचन के
1: थैंक
0: अंदर धावा दे दे। तो
1: यू,
0: थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। कुछ
1: थैंक यू सो मच।
0: जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांधा चूल्हा विद आरजे प्रीत, और आरजे प्रीत आज लेकर आई थी अलका सक्सेना जी को। तो जल्दी ही हम एक नई मोम के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ नई नई डिशेस बनाते रहिए जो जयपुर रेडियो से प्रसारित हो रहा है कुकिंग शो फ्यूजन सांधा चूल्हा विद आरजे प्रीत। उसमें जो नई नई मॉम्स आ रही हैं उनकी बताई हुई डिश को ट्राई करते रहिए। तो जल्दी ही फिर वापस कल से मिलते हैं। गुड बाय।
2: आपने सुना प्रोग्राम फ्यूजन सांझा चूल्हा, और आज अपनी बात साझा कर रही थी हैदराबाद से अलका सक्सेना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और अब सुनते हैं संगीता माल्या को दुबई से।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के जिस शहर से अपना सितारा लेकर आए हैं उसकी तारीफ में अमीर खुसरो साहब ने लिखा है, घर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती हमारे स्टूडियो में लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न पंडिता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार सपना जी, आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
0: जी ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वालों को प्रद्युम्न जी आप अपने बारे में कुछ बताइए और साथ में ये भी बताइए कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी, कि क्या किसी खास घटना ने आपको प्रेरित किया या फिर आप ये विरासत में लेकर ही जन्मे थे।
1: जी देखिए मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी जी।
1: तो मेरा बचपन कश्मीर में बीत गया, तो पूरी स्कूलिंग मेरी कश्मीर से है। और उसके बाद जब कॉलेज का टाइम आया तो मेरा एडमिशन हुआ था आरईसी श्रीनगर में, जो एनआईटी श्रीनगर कहलाता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक संगीत का सवाल है, देखिए संगीत में रुचि तो थी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत विरासत में तो डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं

0: आप ये कहिए कि क्योंकि आजकल एनीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी,
1: जी जी
0: तो शायद एनीबॉडी कैन बिकम अ सिंगर, कुछ शायद अब वो किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी
1: टेक्नोलॉजी
0: है
1: बहुत हेल्प करती है, तरह तरह की एप्स डेवलप हो रही हैं, तो लोग अपनी कला को, अपने हुनर को सबके आगे लाने में काफी सफल हो रहे हैं। तो प्रतिमन जी, सुनने में आया है कि हालांकि स्कूल और कॉलेज में आप बहुत ही शर्मीले से थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन हमने सुना है कि दोस्तों के उकसाने पर आप एक बार गर्ल्स हॉस्टल किसी शरारत के इरादे से गए थे और वहां पर किसी खूबसूरत लड़की के झुमकों में उलझ कर रह गए थे, तो क्या हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे?
0: नहीं, ये तो खैर ये तो गलत अफवाह उड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, ये बात जरूरी है, जो आप दोस्तों के साथ जो आपका व्यवहार होता है और जो पब्लिकली आपका व्यवहार होता है, तो काफी अंतर होता है। मैं दोस्तों के साथ आप बेझिझक बिल्कुल अपने मस्ती में होते हो रहे,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब ये घटना ऐसी है, जब हमारी माइग्रेशन हुई आ रही थी श्रीनगर से, क्योंकि वहाँ टेररिज्म के कारण वो कॉलेज बंद हुआ एक डेढ़ साल, तो हमें फिर ऑप्शन दिया गया कि आप जो इंडिया के बाकी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे आप माइग्रेशन ले सकते हो और अपना जो प्रोफेशनल स्टडीज है वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो फिर हमें कुरुक्षेत्र बुलाया गया उसके लिए, तो वहां पे अब कई चीजें, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा वो पहली बार ऐसा था कि मैं कश्मीर से बाहर आ रहा, तो काफी सारी चीजें ऐसी लगी कि ये नई नई है। और फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, जो साइकिल रिक्शा होता है,
1: जी,
0: तो वहां पे जब हमने कुरुक्षेत्र के कैंपस में देखे कि लोग वो साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, हमारे लिए नई चीज थी। अब जब हम वेट कर रहे थे बाहर, मतलब ग्राउंड में, तो फिर ऐसा लगा कि यार हम ये ट्राई करें, कोई नई चीज है।
1: इसलिए
0: शायद वो वहाँ लड़कियों ने देखा होगा, भाई ये कई लोग आए हैं, ये रिक्शा चला रहे हैं, तो शायद आप उस बात का जिक्र कर रहे होंगे।
1: यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एक किस्मत की बात कह लीजिए या कुछ फेट कह लीजिए, तो जिस वक्त की प्रतिमन पंडिता जी बात कर रहे हैं, तो उसी वक्त मैं भी एनआईटी कुरुक्षेत्र का ही एक हिस्सा थी, मैं वहां पे स्टूडेंट थी, और वाकई सारी लड़कियों में बड़ी सनसनी की तरह ये खबर फैल गई थी कि बहुत ही गोरे गोरे से लड़के आए हैं कश्मीर से जो कि रिक्शा चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े अजूबे की बात थी कि क्या इन्होंने आज तक रिक्शा नहीं देखा। तो इसी शरारती सी बात पर हम आपका पहला गीत लेते हैं। प्रतिमन जी, क्या सुनवा रहे हैं आप?
0: देखिए, मेरे मन में अभी आ रहा है कुछ ना कहो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है।
0: ये जो आप शरारत की बात कर रहे हैं ना, तो बस इतना काफी है। तो कुछ ना कहो वाला गाना जो मेरे को बहुत ही दिल के करीब है,
1: कुमार सानू
0: जी का, तो ये
1: हम सुना।

0: बहुत ही मिठास के साथ आपने इस गीत को निभाया प्रद्युम्न जी, मजा आ गया। तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं और जैसे कि आपने बताया कि आप भारत के बेहद प्रसिद्ध कॉलेज NIT वारंगल से आपने अपनी तालीम हासिल की है, तो कश्मीर के एक छोटे से गांव और अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स की बड़ी बड़ी फार्म से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? कुछ खट्टी यादें होंगी, कुछ मीठी यादें होंगी, कुछ चुनौतियां आपके जीवन में रही होंगी, तो वो थोड़ा संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी जरूर। देखिए, यादें तो बहुत है। मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा बचपन मेरा बीता है वहाँ।
0: जी जी।
1: तो बचपन की यादें तो बहुत ही मीठी होती हैं। तो चाहे वो, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में ये था कि मतलब वहाँ एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज है, चाइल्ड चाहे मतलब खेलना कूदना, ये नहीं है कि घर पे ही बैठना पढ़ाई करना। तो पढ़ाई इनफैक्ट मेरे लिए एक साइड एक्टिविटी होती थी। हमारे बाग, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे बाग बगीचे गाय, फिर खेलना अलग, फिर आपकी पढ़ाई अलग। तो क्या होता था,
0: पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती थी आपकी एक दिन में
1: पूरी पूरी। तो वो तो इनफैक्ट वहाँ कोई घरों में अगर बैठता था तो कह रहा क्यों सब ठीक है, बीमार तो नहीं है कोई। उस हिसाब से देखिए, आई एम वेरी लकी कि जो बचपन बीता है वो काफी अच्छा बीता है, काफी अच्छी यादें। फिर आपके दोस्तों के साथ यादें, जैसे जो फ्री टाइम मिलता था खेलने जाते थे, चाहे वहाँ तो देखिए नेचुरल रिसोर्स की तो भरमार है, चाहे आप वाटर बॉडीज ले लो, दरिया ले लो, नदियां ले लो, स्प्रिंग्स ले लो। तो हम, हमारा ये था कि चलो दरिया तैरना है, स्विमिंग करनी है। अब ये वही है जो लाइफ स्किल्स आप पिक करते हैं ऑन द गो, कोई आपको सिखाने नहीं आता, चाहे वो बड़े बड़े दरिया है उनको क्रॉस करना, चाहे वो बागों में जाना सेब चुराने किसी के
0: पेड़ पे चढ़ना,
1: पेड़ पे चढ़ना, तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ तक कि हमारे एक टीचर साहब थे, वो अभी हैं
0: जी,
1: तो जो हमारा स्कूल था तो उनका जो सेबों का बाग बिल्कुल पास में था स्कूल के,
0: अच्छा
1: हायर सेकेंडरी स्कूल था। अब हम जो ब्रेक का टाइम होता था तो हम उनके कई बार उनके बाग में घुस जाते थे, वहाँ उनके फादर साहब होते थे। अब ऐसा होता था कि हम पेड़ पे चढ़ के सेब उतार रहे हैं, अब वो एल्डरली थे, अब वो कितना बाग थे हमारे पीछे, और जब तक वहाँ पे हमारे पीछे बाग थे तब हम खा पी के निकल जाते थे। अब उनके जो बेटे साहब थे वो हमारे टीचर थे, इनफैक्ट मैथ्स टीचर थे।
0: अच्छा।
1: और हमारी जो पलटन होती थी इसमें एक लड़का ऐसा था जिसके बाल वो ब्लॉन्ड से थे, मतलब अच्छा, ब्राउन कलर,
0: सुनहरी। हाँ जी,
1: सुनहरी। अब क्या होता था, अब वो अपने बेटे को बोलते थे घर जाके, यार आपके स्कूल से बच्चे आए थे और एक लड़का ये था सुनहरी बाल वाला।
0: अच्छा।
1: अगला दिन क्या होता था, वो टीचर साहब उसको खड़ा करते थे और एक दो चांटे मारते थे कि बता कौन था तेरे साथ, तो वो सबके नाम देता था, फिर हमारी सबकी पिटाई। तो ये ऐसे खट्टी मीठी यादें मतलब बहुत सारी मेरे दिमाग में आती हैं।
0: जी।
1: लेकिन
0: जी।
1: फिर ऐसे बचपन बीतते बीतते फिर एक ऐसा स्टेज आया जब हम कॉलेज में गए कि सडनली वैली में वो अनरेस्ट हो गया।
0: जी, वो बहुत ही दुखदायी वक्त था, बहुत ही दुखदायी वक्त था।
1: एक काली रात आ गई कि हमें सब छोड़ छाड़ के, ये काफी लंबी स्टोरी है लेकिन मैं इसको बिल्कुल संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि हमें बच्चों को हमारे माँ बाप ने बोला कि आप बिल्कुल जो घर के कपड़े हैं इसी में निकल के तुम निकल जाओ और जम्मू पहुंच जाओ। अब उस टाइम ये भी था कि देखिए ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई फोन था, और बच्चे निकल गए, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे, मरे। तो कई बार ये भी हमें ये मतलब हम भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जीवित हैं।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: मतलब जिस तरह के हालात उस टाइम बने थे
0: जी,
1: तो वो सब देख के फिर अगेन ये भगवान की कृपा ही रही हम पे कि सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। और
0: आपके माता पिता ने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और बड़ी हिम्मत दी उन्होंने, क्योंकि ये हमारे, मैं कहूंगी हमारे जेनेटिक भी होता है ये कि अपने माँ बाप को देख देख कर ही हम कभी सीखते हैं, कुछ हमारे जीन्स में आता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी चुनौतियों भरी जिंदगी जी है और यहाँ तक इस मुकाम तक आप पूरी अपनी मेहनत से ही पहुँचे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं प्रतिमन जी।

0: यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी प्रतिमन जी, कि आपके कश्मीर में इंडिया में से जगह जगह से टूर्स आते हैं, लोग स्पेशली इस जगह को देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि कितना खूबसूरत हमने इसको सुना है, पढ़ा है, तो क्या ये वाकई में इसकी खूबसूरती उतनी है? तो हम तो बहुत ही हैरत से वहां पर जाकर सारी चीजें देखते हैं। तो एज अ होस्ट, जब आपके शहर में, आपकी स्टेट में ये सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें तो अच्छा लगता था, कोई आता था वहाँ, मतलब हम आइडिया शेयर करते थे, हमें भी ये पता चलता था कि ये कहाँ से आए, इनका क्या कल्चर है। और फिर ये भी होता था, एक रौनक भी वहाँ होती थी, और जैसे
0: साथ में रिसोर्सेज तो फिर गवर्नमेंट को मिलते ही हैं टूरिस्ट से,
1: और एक टूरिज्म का वो एक सपोर्ट, देखो एक इकोनॉमी का वो होता है, तो हमें तो अच्छा ही लगता था। ऑनेस्टली बोलूंगा, अभी भी हम जाए, देखिए अब चाहे हमारा देश है, अब हम एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश ये तो हम सब में एक ये बात है कि अगर कोई चीज है तो इसको हमें संभाल के रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हमारा देश है, हमें संभाल के रखना चाहिए। कोई जगह सुंदर है, इसकी सुंदरता को कायम करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक पब्लिक में, जनता में ये जागरूकता होना बड़ा
0: बहुत
1: जरूरी
0: है। ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये रहने वालों की, जो पब्लिक है, जनता है, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। आसपास सफाई रखें ताकि टूरिज्म को हम ज्यादा प्रमोट कर सकें, विनम्र रहें। तो प्रधानमंत्री जी, आप कश्मीरी में गीत और भजन भी लिखते हैं, तो कैसे वक्त निकालते हैं आप इस शौक के लिए?
1: देखिए, शौक तो थोड़ा बहुत था, बट अभी तो टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले ये था कि पहले जब भी मैं मतलब अकेले में होता था, तो कोई इनफैक्ट ये बिल्कुल बचपन में ही ऐसा होता था कि कोई ट्रिगर आपको हो जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, बट मेनली मेरा वो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था। और कुछ कभी फ्लो बन जाता था और मैं अपना वो जॉट डाउन करता था थॉट्स, तो उसमें से चाहे थोड़ा बहुत शायरी बने या भजन बने, तो पहले थोड़ा बहुत मैं लिखता था
0: जी,
1: बट आई विश आई कुड डू मोर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप अभी भी वक्त निकालते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ कश्मीरी में ही गुनगुना दीजिए, जो आपने खुद लिखा है।
1: जी जरूर, देखिए ये एक गुरु के प्रति, अभी तो गुरु पूर्णिमा दो दिन पहले
0: थी, दो दिन पहले थी, हाँ।
1: राइट, एक एक गुरु को समर्पित है ये, एक भजन ही मान लीजिए कश्मीरी में है, तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसका भाव क्या है।
0: जी,

0: तो काफी लंबा भजन है, लेकिन भाव मैं संक्षेप में ये बताऊंगा आपको। इसमें ये है कि हम अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि मैं आपको क्या ऑफर करूं, मतलब मेरा अपना तो कुछ नहीं है, ये जो मेरी जान है या मेरे अंदर जो प्राण है ये भी तो ये मैं वारूं आपका, लेकिन ये भी आपका ही है, तो ये भी मेरा नहीं। इसका भाव ये है
1: जी।

0: प्रद्युम्न जी, जिंदगी के जिस मुकाम पर आज आप अपने आप को पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने का और अपनी कामयाबी का जो श्रेय है, वो अपनी मेहनत के अलावा आप और किसे देना चाहेंगे?
1: देखिए सपना जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जो भी हम हैं, कोई भी
0: जी,
1: इसमें माँ बाप का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वो आपके रोल मॉडल रहते हैं। और जिस कठिनाई से फिर हम आए, आप इमेजिन कीजिए कि हम कश्मीर से माइग्रेट होके आए रातों रात, फिर हमारे पास छत नहीं था, हम कैंपों में रह रहे थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कठिनाई है। और इसी दौर में मेरा इंजीनियरिंग एडमिशन हुआ ही था, तो ऐसे में मेरे माँ बाप के पास मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उन्होंने कैसे सारा, जो चाहे मेरी फंडिंग हो या मेरी देख रेख की, और ये इंश्योर किया कि मेरी इंजीनियरिंग पे कोई इम्पैक्ट ना आए, राइट। तो इसलिए मैं पूरे का पूरा क्रेडिट, मेहनत तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मैं पूरा क्रेडिट अपने माँ बाप को देता हूँ। मतलब फादर को अपने हिसाब से, मदर को अपने हिसाब से, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर, तो उनने बहुत कुछ मेरे को संभाला है, कितनी भी डिफिकल्टी थी, शी वाज ऑलवेज बाय माय साइड। तो इसलिए मैं पूरा श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ।
0: और इसी बात से हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम जहाँ पर भी हों, जिस भी मुकाम पर, जिस भी शिखर पर हों, हमें अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि उनका कहना ही हमारे लिए भगवान के कहने के मुताबिक होना चाहिए। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न, आपसे बातचीत बहुत मजेदार रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात प्रद्युम्न पंडिता जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता, और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: लफ्जों की गुजारिश, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
3: नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं रति भार्गव, आपकी होस्ट और दोस्त। तेरी आंखों में समा जाऊं काजल की तरह, तू ढूंढती रह जाएगी पागल की तरह। हमारी आज के एपिसोड का थीम काजल, इट्स अ फन राइड। अगर हम इन शब्दों की खूबसूरती को देखें जो जादू कर देते हैं फिल्मी गीतों में। ये गाना फिल्म दूसरा आदमी यशराज फिल्म बैनर से बोल मजरू सुल्तानपुरी के, म्यूजिक राजेश रोशन, और गाया बड़ी खूबसूरती से लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और इसे पेश कर रहे हैं आपके लिए प्रताप और विद्या।

मैं और मेरी दोस्त साथ में बैठे खाना बनाते हुए जब रेडियो पे गाना बजा, ये कहाँ आ गए हम। यार ये सिलसिला का गाना है ना। बस इतना ही कहना था कि मेरी फ्रेंड बोली, यही तो मैं कह रही हूँ, वो तो रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री थी, वो पैशन, वो इंटेंसिटी। अगर ऐसी केमिस्ट्री हर जोड़ी में होती तो हमारी तरफ भी कोई ऐसे देखता, हमारी भी घुटने पिघल से जाते, हम भी जान निगल से जाते। बस फिर मेरी दोस्त बोली, तो ये जावेद अख्तर गुलजार के गाने सुनने बंद कर दे और मटर छील ठीक से। द स्टोरी ऑफ आर लाइव्स, एक हकीकत रूहानी, एक सच्चाई बेमानी। आइए हम अपना अगला गाना सुनते हैं मूवी जीवा से संजय दत्त और मंदाकिनी पे पिक्चराइज। और ये गाना जितना प्यारा उतनी ही प्यारी आवाज लेके आ रहे हैं MD त्यागी और पूर्णा।

गाजर, मटर, ठंड और रेडियो पे चलते ये गीत। पैशन अ फ्रूट बन के रह गया और केमिस्ट्री सिर्फ बच्चों की किताबों में मिलती है। ट्रू और फॉल्स? सिजलिंग मुमताज पे पिक्चराइज ये गाना, जो इतनी हॉट, इतनी सुंदर, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड डीवा। एक टाइम पे तो उन्होंने सारी रेनिंग ब्यूटी क्वींस को पीछे कर दिया था। हमारा अगला गीत मूवी दो रास्ते से, ब्लॉकबस्टर हिट बॉक्स ऑफिस में। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज, बोल आनंद बख्शी के और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसे पेश कर रहे हैं अपनी सुरीली आवाज में AKD और सुधी।

फिल्मों ने हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया है। वो जो 3-4 मिनट में दिखा के दिल में आग लगा के निकल जाते हैं, हम बैठकर फिर सोचते रहते हैं कि हाय हमारी जिंदगी भी ऐसी होती तो, अभी होती तो कुछ काम नहीं कर पाते, दिन के 24 घंटे ऐसे रह सकते हैं क्या? ऐसा जीना गवारा नहीं। देर इज़ अ रीज़न कि लाइफ आलू मटर गाजर बन जाती है, क्योंकि हम सबके अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट भी होता है। हमारा अगला गाना भी मुमताज़ और राजेश खन्ना पे पिक्चराइज मूवी अपना देश, खूबसूरती से निभाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी और म्यूजिक आरडी बर्मन का। इसे अपनी सुरीली आवाज में लेके आ रहे हैं किरण और वैदेही।

केमिस्ट्री और पैशन दो गाने गा के एक शिफॉन साड़ी पहन के थोड़ी ना होती है, वाट लग जाती है अच्छी खासी, क्योंकि इंटेंसिटी सही या गलत में फर्क नहीं करता। इंटेंस इमोशंस का मतलब इंटेंस गुस्सा भी, इंटेंस पॉजिटिवनेस भी, इंटेंस जेलसी भी, और ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतनी ही बैंड बजती है। खैर, अभी तो आप पैशनेट गाने सुन के आहे भर लीजिए अपने घर, गाड़ी या ऑफिस स्पेस की सेफ्टी के अंदर से। बातें करते करते हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना भी आ गया। ये गाना है मूवी दीवाने से, उर्मिला मातोंडकर, महिमा चौधरी और अजय देवगन जिनका डबल रोल था। इस फिल्म का साउंडट्रैक साल का 13th हाईएस्ट सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर था। पेश है ये गाना रमेश और प्रियंका की मधुर आवाज में।

0: प्यार करो उतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। बस ख्वाब देखते रहिए, देखने का साहस करते रहिए। फिलहाल तो जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारे गीतों के साथ। तब तक के लिए मैं रति भार्गव।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार, और आज हमारे साथ हैं यूएई से योगेश आनंद। अपने बेहतरीन गीतों के साथ आइए सुनते हैं और करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। आज के कलाकार प्रोग्राम में योगेश आनंद का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपके पहले गीत के साथ।

बातें ये कभी तू न सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जी हाँ, जीना और किसी के खातिर जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना पड़ता है, अपनी खातिर भी, अपनों की खातिर भी। योगेश आनंद हमारे साथ UAE से हैं और ये सुरीला सॉन्ग आप सबकी नजर किया। आइए आप सुनते हैं योगेश जी का अगला गीत। सुरीली आवाज जैसे आपकी आवाज, आपकी पहचान।

कैसी है ये रुत जिसमें फूल बन के दिल खिले, और ये फूलों की महक आप तक पहुंच रही है योगेश आनंद के स्वर में। यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स से हमारे संग हमारे साथ हैं योगेश आनंद, अपनी सुरीली आवाज के धनी इस मंच पर। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुने अगला गीत योगेश जी का।

कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साये में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवाओं में खो जाऊं। बिल्कुल हवाओं में आपके आवाज की खुशबू खो रही है और बोल रही है और सबके कानों तक पहुंच रही है हमारे श्रोताओं के। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। हमारे आज के सुरीले मेहमान यूएई से योगेश आनंद, बहुत खूबसूरत आवाज और इतना शानदार गीत हमने सुना, सच में मजा आ गया।

हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझ न पाए खामोशी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गईं। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। और ये शानदार चीज हमारे कानों तक पहुंच रही थी, योगेश आनंद की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान। जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, हमारे संग हमारे साथ हैं यूएई से योगेश आनंद। आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं आज।

मैं किधर जाऊं, दोनों से रिश्ता है नजदीक का, एक तरफ इसका घर एक तरफ उसका घर, और एक तरफ जयपुर रेडियो वर्ल्ड और एक तरफ यूएई, और यूएई से हमारे संग इस खूबसूरत प्रोग्राम में रहे सुरीली आवाज के धनी योगेश आनंद। बहुत ही खूबसूरत गजलों से आपने बरसात के मौसम में सच में समा बांध दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। शुक्रिया योगेश जी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शाम गजल, और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं लंदन से दीप्ता सुदीप्ता। आपकी आवाज आपकी पहचान, जी हाँ, जानी पहचानी सिंगर आपकी, आज अपनी गजलों के साथ

आज इस नजर पर मुझे मर जाने दो। उसने लोगों बड़ी मुश्किल से आज इधर देखा है, पहली सो बार इधर और उधर देखा है, फिर कहीं डर के हमें एक नजर देखा है। एक खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाई लंदन की सुदीप्ता समानता ने। जी हाँ, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज दीप्ता अपनी गजलों के साथ इस मंच पर, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप।

उसके होठों से अब क्या मांगूं, जो भी कहता है दुआ लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। आवाज सुदीप्ता की लंदन से। हमारी आज की कलाकार ने ये गजल आपके लिए पेश की, और अगली गजल में फिर दीप्ता सुदीप्ता समानता, आपकी आवाज आपकी पहचान।

बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। हमने सुना दीप्ता की आवाज में ये खूबसूरत गजल, आपकी आवाज आपकी पहचान। शामे गजल प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं लंदन से हमारी आज की कलाकार दीप्ता सुदीप्ता समानता को।

कब मिली थी कब बिछुड़ी हमें याद नहीं, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने मगर देख ली दुनिया हमने। दीप्ता की आवाज, आज की कलाकार लंदन से हमारे साथ अपनी अगली गजल में।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल हमने सुनी हमारी आज की गजल गौ से। आप हैं दीप्ता सुदीप्ता समानता लंदन से हमारे साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान। फिल्म हंसते जख्म की ये खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाई हमारी आज के कलाकार ने। आपकी आवाज आपकी पहचान। बहुत खूबसूरत गाती हैं और गजल तो गजलों में तो कमाल करती हैं।
1: पहले अंडा या मुर्गी, ये फंडा क्या है? ये तो आप रोज ही सुनते हैं, तो सुनिए कुछ अलग कुछ हटके। बैक टू बैक म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर।
2: गाँव वालों, I'm suicide। तुम्हारे इस रामगढ़ में कोई भी रेडियो चैनल नहीं आता। अब बताओ बसंती को मैं कौन से गाने सुना के इम्प्रेस करूंगा? हाँ
3: अब वीरू जी, आपको सुसाइड करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे गांव में अब इंटरनेट आता है।
2: तो उससे क्या होगा?
3: अब इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए आप जयपुर रेडियो और उस पर 24 आवर्स गाना आता है और सुनाइए बसंती जी को।
2: अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब अब मोबाइल पर भी रेडियो आएगा। बसंती मैं आ रहा हूँ जयपुर रेडियो ऐप डाउनलोड करके।

0: ये देखो आई है कौन?
1: हमारे आसपास की सभी औरतें हमसे शिकायत करती रहती है कि देखो हमारे पति पी के आते हैं, लड़ते हैं, हम खूब लड़ती हूँ, मना करती हूँ, पर मानते नहीं। पर तुम्हारे पति भी तो पी कर आते हैं, पर तुम्हारे यहाँ से कभी कोई आवाज नहीं। तब हम उनको एक सीक्रेट बताई, जिस दिन वो पी के आते हैं ना, हम उन्हें बहुत लाड करते हैं, उस खाने में जमा घोटा फूस फूस के भर भर के खिला देते हैं। आप लेकिन जो उनका लेफ्ट राइट होता है आधा पी के नहीं आते। हमारे पास ऐसा बहुत सा और आइडिया है पति को लाइन पे लाने के।
0: तो सुनते रहिएगा मंतोष भाभी को।
2: हुजूर, होंगे आप जमीन के शहंशाह, आसमां के बन के दिखाइए, आपकी सल्तनत में हमें रेडियो सुनवाइए।
3: बीरबल, हमारी सल्तनत में कोई भी रेडियो चैनल क्यों नहीं आता?
4: हुजूर, अब रेडियो चैनल की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारी सल्तनत में आता है इंटरनेट।
3: इंटरनेट?
4: हाँ हुजूर, इंटरनेट के जरिए आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो ऐप और ऑनलाइन रेडियो सुनिए।
3: क्या कहा, ऑनलाइन?
4: हाँ हुजूर, जयपुर रेडियो कहीं भी कभी भी ऐप डाउनलोड किया आपने?
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। सुदीप्ता दीप्ता समानता का आभार कि हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ी रही अपने गजलों के साथ। बहुत आभार, धन्यवाद। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे।

भाई, अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं। आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी प्यार में दुख भी होता है और एक एहसास होता है इंतजार का, या कभी कभी ऐसे भी एहसास होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, तो ऐसे में दिल गाता है किस लिए, किसका रास्ता देख रहे हैं हम।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?
1: किस

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तू ही प्यार दू, गोरी भैया तो पे वार दू, किस लिए तू

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे और हमारे गीत ही जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का नाम है किस लिए इसलिए, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके मन में बड़े सवाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर सवाल कम हो जाते हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे मासूम, कई क्यों से भरे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जैसे हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, और किसी के लिए दिल क्यों धड़कता है। ऐसे ही मासूम सवालों से भरे हम आपका स्वागत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो है क्यों चल

भाई अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं, आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी प्यार में दुख भी होता है और एक एहसास होता है इंतजार का, या कभी कभी ऐसे भी एहसास होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, तो ऐसे में दिल गाता है किस लिए, किसका रास्ता देख रहे हैं हम।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तुहे प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा।
1: यारों की महफिल रॉकिंग रागा के साथ जयपुर रेडियो पे म्यूजिक दिन रात, दोस्ती फ्रेंडशिप का बीट रॉकिंग रागा और वाइब सो स्वीट।
2: हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके?
3: हरी रुको रुको वेट, हेलो जयपुर रेडियो फैमिली फ्रॉम आर रॉकिंग रागा फैम, कैसे हैं आप सब लोग?
2: देखो देखो रति, तो पहले से ही सुपर एक्साइटेड हो गई।
3: एक्साइटेड? मैं तो एकदम पम्प्ड अप हूँ यार, क्योंकि आज का शो है कंप्लीट दोस्ती स्पेशल।
2: हाँ रति, आज तो हमारा शो है फुल ऑन धमाल, क्योंकि आज बात होगी दोस्ती की, यारी की और पागलपन की। आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट आरजे हरी और आरजे रति को, और ऑनेस्टली हम सब ने इस शो का बहुत ही वेट किया है।
3: तो दोस्तों, बॉलीवुड के दोस्ती सॉन्ग से हमने क्या सीखा? मैंने तो सीखा है कि ट्रू फ्रेंड्स कभी जजमेंटल नहीं होते, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। याद है हरी, ऋतिक, फरहान, अभय, तीनों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा और सपोर्ट किया।
2: एग्जैक्टली और दिल चाहता है से सीखना कि फ्रेंडशिप इवॉल्व होता है। आमिर सैफ, अक्षय, दे ग्रू अप अपार्ट बट लव नेवर फेडेड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैच्योर फ्रेंडशिप्स।
3: डेफिनेटली मैच्योर फ्रेंडशिप्स। और दोस्तों, दोस्ती सिर्फ सेम एज ग्रुप में नहीं होती। पीकू में अमिताभ, दीपिका या 102 नॉट आउट में अमिताभ, ऋषि, इंटरजेनरेशनल

0: और क्या गूसबम्स आ गए, लिटरली गूसबम्स। क्या खूब गाया है इंद्राणी, दीपक और रेणुका आपने।
1: दोस्ती की खट्टी मीठी यादें तो मेरे लिए हॉस्टल लाइफ है, जब बहुत इंजॉय किया हमने एक साथ कॉलेज बंक करके मूवी देखने जाना, रात रात भर अपना ब्यूटी सेशन जारी रखना, रात को छुप छुप के खाना बना के रात के 1:30-2 बजे खाना, उसके बाद हॉस्टल लेट से वापस आना, किसी और के लिए प्रॉक्सी देना, बहुत बहुत इंजॉय किया। वो लाइफ जब भी याद आता है तो चेहरे पे एक हंसी आ जाती है।
0: फैबुलस इंद्राणी।
2: हरि बताओ ना, दोस्त क्यों जरूरी है जिंदगी में।
0: हरी, दोस्त वो है जो तुम्हारे साथ हंसेंगे, लेकिन साथ हो तो कभी रोने नहीं देंगे। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, वही दोस्त असली है जो मुश्किल वक्त में साथ दे।
2: याद है स्कूल के वो दिन, वो दोस्त जो टिफिन शेयर करते थे,
0: उसमें अलग ही मजा था। पर तुम तो कह रहे थे तुम्हारे दोस्त टिफिन ले जाते थे तुम्हारा।
2: हाँ हाँ, मेरा दोस्त टिफिन ले जाता था, शेयर नहीं करता था। लेकिन सीरियसली, दोस्ती हेल्थ के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है, स्ट्रेस कम और हैप्पीनेस ज्यादा देती है।
0: सुनते हैं हमारे रॉकिंग रागा फैमिली से अभिनव को क्या कहना है दोस्ती के बारे में।
3: ए आर जे रति एंड हरी, सो कूल टू कनेक्ट विद यू बोथ।
4: दोस्ती कभी लैंडलाइन की घंटी पे मिलती थी दोस्ती, अब बस एक मिस्ड कॉल काफी है। कभी साथ रहना जरूरी था, अब बस समझना काफी है। अब दोस्ती शोर नहीं करती, बस इतना कह जाती है, जब जिंदगी भारी लगे मैं यही हूँ।
0: That's so true, अभिनव। एक कोट सुनो, दोस्त वो नहीं जो रोज मिले, दोस्त वो है जो दिल में रहे।
2: चलो सुनते हैं हमारा अगला दोस्ती का स्पेशल गीत, जिसको लेके आ रहे हैं मीनाक्षी जी, समीर और अभिनव।

0: बेहद सुंदर पेशकश अभिनव, समीर और मीनाक्षी जी आपकी।
1: वाह क्या गाया है तीनों धुरंधरों ने। ओके, अब टाइम है सबका फेवरेट फन मोमेंट का। मैं और रति खेलने वाले हैं दो सी रैपिड फायर राउंड।
0: रूल्स बिल्कुल सिंपल है हरी, मैं पूछती हूँ तुम जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, नो सोचना नो समझना और जो बोलना सिर्फ दिल से।
1: चलो शुरू करो, मैं रेडी हूँ।
0: ऑल राइट, पहला क्वेश्चन, दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है?
1: ट्रस्ट, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड, आंखें बंद करके ट्रस्ट।
0: वाह जबरदस्त आंसर। बेस्ट प्लेस फॉर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन?
1: रात को कार राइड विद म्यूजिक प्लेइंग सॉफ्टली।
0: क्या बात, परफेक्ट आंसर। चलो इसी बात पे अगला गाना सुनते हैं, जिसे लेके आ रही है हमारी तीसरी टीम, रचिता, सुधीर, विद्या प्रकाश फ्रॉम सिकंदर वाइब्स।

0: phases of our life, we have different friends, like school friends, college friends, workplace friends, neighborhood friends, school friends, and so on. But the time spent with each of them is like unforgettable memories, turning ordinary moments into lifelong stories.
1: That's amazing. What a fabulous singing by Rachita, Sudhir and Vidya.
2: Okay, अब पासा पलटते हैं और चेक करते हैं कि तुम्हारा फ्रेंडशिप क्वेश्चन कितना है.
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो पूछो.
2: ये रहा तुम्हारा पहला सवाल. माई फेवरेट गो टू फ्रेंडशिप मूवी.
1: तुम्हारी फेवरेट गो टू फ्रेंडशिप मूवी द थ्री इडियट्स.
2: ओके, दैट्स नाइस. सही जवाब. फेवरेट स्ट्रीट फूड.
1: सो इजी, समोसा.
2: वाह, ये कैसे पता लगा तुम्हें? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यकीनन हम में से कई लोगों के कई किस्से एक प्याली चाय और समोसे पे ही बने होंगे.
1: गरम समोसे के साथ चटनी की कीमत तुम क्या जानो हरी बाबू.
2: माय फेवरेट स्पोर्ट्स
1: क्रिकेट, क्योंकि सचिन और सहवाग के बाद तुम्हारा ही नंबर आता है ना.
2: वेरी फनी. लेट नाइट स्नैक्स
1: मैगी, हम दोनों का फेवरेट, और इसके साथ जुड़ी हैं बहुत सारी फ्रेंडशिप्स.
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाहे कुछ फटाफट खाने का मूड हो और दोस्तों का साथ हो तो एक ही सहारा होता है, चाहे हॉस्टल हो, कॉलेज हो या पहाड़ों की ठंड वाली वो ट्रिप हो. दोस्तों, आज का ये दोस्ती स्पेशल एपिसोड बनाने का हमारा मकसद था कि हम अपने आप को, अपने श्रोताओं को और अपने सभी दोस्तों को ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि दोस्ती एक बहुत ही खास रिश्ता है. इसे महसूस करें, इसे एंजॉय करें और इसकी कदर करें. दैट्स द रीजन हमारे इस एपिसोड में हमने हर टीम में 3 सिंगर्स को नॉमिनेट किया, जहां हम दोस्ती की असली स्ट्रेंथ, उनकी क्रिएटिविटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शा सकें. थैंक यू.
1: सुनाते हैं हमारा अगला गाना टीम 3, 3 पत्ती. संपत, श्वेता, साहिल.

0: क्या सॉन्ग था यार, एकदम दिल से।
1: फैबुलस सिंकिंग, संपत, श्वेता एंड साहिल। ओके दोस्तों, अब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं एक मिनट के लिए।
0: हाँ, बात करते हैं अब ग्रैटिट्यूड की।
1: हम सबने आखिरी बार कब अपने किसी दोस्त को बोला था कि हम उनकी फ्रेंडशिप को अप्रिशिएट करते हैं?
0: वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जाने अनजाने में हम हमेशा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा दोस्त जानता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कभी खुद बोलते ही नहीं।
1: चलो तो तुमसे ही शुरू करते हैं, बताओ हमारी फ्रेंडशिप को कैसे डिस्क्राइब करोगे?
0: अंडरस्टैंडिंग, एडवेंचरस, फनी एंड माई गो टू पर्सन ऑलवेज।
1: वाओ, तो चलिए दोस्तों, हम सब भी आज से ही शुरू करते हैं। थैंक यू उस दोस्त को बोलने के लिए जो कभी हमें जज नहीं करते।
0: ये तो जेन्युइन है। थैंक यू उस दोस्त को बोलना जो हमेशा हर वक्त हमारे साथ बना रहता है, और थैंक यू उस फ्रेंड को बोलना जो हमारी छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करता है, और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे रॉकिंग रागा ग्रुप को, जिसकी वजह से हम सब दोस्त बने।
2: Mutual trust, respect for each other and unconditional support are the hallmarks of what I consider most important in friendship. It's a responsibility I don't take lightly, and to me, it is about being present during good and hard times. A best friend should always be a safety net, a sense of belonging and a shoulder to cry on.
1: I wholeheartedly agree with you, Anu. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं हमारा अगला गीत टीम आर आर फ्रेंड्स राधा अमोल जगताप जी की मधुर आवाज में।

0: मुझे लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा अच्छा बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। हम सब कुछ उसे शेयर कर सकते हैं, और मित्रत्व का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है, क्योंकि जब हाथ को चोट लगती है तो आँख में आंसू आ जाते हैं, और आँख में आंसू आ जाए तो उन्हें पहुँचने के लिए हाथ ही आगे आते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने रेणुका, और इस गीत को खूब निभाया आपने अमोल, राधा जी, जगताप जी। बताओ हरी बताओ, बॉलीवुड की सबसे फेवरेट ऑन स्क्रीन दोस्ती कौन सी है?
2: जय वीरू फ्रॉम शोले, नो कंपटीशन। उनकी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दैट्स अल्टीमेट डेफिनेशन।
1: हमारे 90s के दशक की मूवी जो जीता वही सिकंदर, इसने दिखाई हमें फ्रेंडशिप विद फ्लॉ, फाइट एंड अनकंडीशनल सपोर्ट।
2: पर मॉडर्न एज में देखो, ऋतिक फरहान और अभय, उन्होंने प्रूव किया कि दोस्ती में ऑनेस्टी जरूरी है। नो फेक प्रॉमिसेस, जस्ट रियल इमोशंस।
3: दोस्ती उम्र भर रहने वाला एक प्यारा एहसास है, एक ऐसा रिश्ता है जो सब रिश्तों से गहरा होता है। इसमें सच्चा प्यार, साथ, भरोसा और समझदारी है। जहाँ आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा राजी। तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं दोस्ती के पावर को, और एक जोरदार गाना सुनाते हैं दोस्ती पे फ्रॉम टीम धुरंधर, देवयानी, राजेश, कंकना।

0: वाओ, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देवयानी, राजेश एंड डॉक्टर कंकना।
1: किसी ने मुझसे पूछा कि दोस्ती क्या है। मैंने कहा, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता।
0: आहा, क्या बात।
1: एलिगेंट फ्रेंडशिप की शुरुआत अक्सर ऐसी क्योटिक होती है। मोस्ट ग्रेट दोस्ती स्टोरीज स्टार्ट विद दैट क्लासिक लाइन, आई एक्चुअली हेटेड यू व्हेन वी फर्स्ट मेट।
0: सो ट्रू, वो दुश्मन टर्न बेस्टी वाला ट्रांजिशन इज सो इलाइट। शुरू में एक दूसरे को जज करना और फिर वही इंसान आपका कंफर्ट जोन बन जाता है।
1: एग्जैक्टली, इट्स लाइक ए स्लो बर्न मूवी। पहले वाइब्स क्लैश करती हैं, फिर वही वाइब्स मैच हो जाती हैं। स्टाइल माइट क्रिएट राइवल्स इनिशियली, पर ये छोटी छोटी ट्रेजेडीज ही तो दोस्ती को लेजेंडरी बनाती हैं।
0: तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें बताते रहिए कैसे शुरू हुई आपकी फर्स्ट मीट वाली दोस्ती। तब तक लेट्स कीप द मूड लाइट एंड द वाइब्स हाई। सुनाते हैं हम आपको ये अगला गीत टीम हम किसी से कम नहीं, एमी, शिखा एंड संजीव।

0: तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खट्टी मीठी नोक झोंक शिखा, एमी और संजीव की? मुझे तो बड़ा मजा आया। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती की। जब हमारे दोस्त अदर टाइम जोन में रहते हैं तो सच में बहुत मुश्किल होती है।
1: आजकल तो बिल्कुल टैगिंग गिरा ही चल रहा है। लोग कॉल नहीं करते बल्कि स्टोरी, पोस्ट, रील भेज देते हैं, और अगर उस पे हार्ट मिल जाए तो फ्रेंडशिप बिल्कुल स्टेबल है। ये भी एक तरह का डिजिटल पल्स बन गया है।
0: सो ट्रू। लेकिन हरी, उस दोस्ती की बात ही कुछ और होती है जिसमें बिना कहे भी दूसरे को महसूस करें और उसको समझ जाएं।
1: सही कहा। तो चलो थोड़ा माहौल बदलते हैं और ये गाना डेडिकेट करते हैं उन लोगों को जो कुछ दूर रहते हैं अपने दोस्तों से।
0: सुनते हैं दोस्ती का ये क्लासिक सॉन्ग टीम शोले आरआर के प्रताप जी, मनोज जी, सूरज की जोशीली आवाज में।

0: दोस्ती एक विश्वास है, भरोसा है, अपनेपन का एहसास है। सच्ची दोस्ती की डोर समय के साथ और मजबूत होती जाती है। एक दोस्त ही तो होता है जो दूसरे दोस्त की परेशानी को बिना कहे समझ जाता है और उसकी परेशानी में हमेशा साथ निभाता है और हर संभव दोस्त की मदद करता है।
1: वाह, क्या खूब कहा और क्या गाया है आपने इस जोशीले अंदाज में प्रताप जी, मनोज जी और सूरज।
2: और अब आ गया हमारा फाइनल सेगमेंट।
1: क्या जर्नी थी दोस्तों आज की हमारी।
2: बस यही तो फ्रेंडशिप है एक नटशेल में।
1: सही बोल रहे हो हरी। अब रिकैप करते हैं आज क्या सीखा।
2: फ्रेंड्स फैमिली बन जाते हैं, हर दोस्त अपने आप खास हो जाता है।
1: रियल फ्रेंड्स के साथ रात के 2 बजे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और रॉकिंग रागा ग्रुप के फ्रेंड्स एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं।
2: कीप रॉकिंग, बी ऑसम एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर।
3: दोस्त यार, ये वो प्यारे और अनमोल रिश्ते हैं हमारी जिंदगी के, जो खून का रिश्ता न होकर भी हमारे दिल से जुड़े हुए होते हैं। बचपन में मासूमियत से और बुढ़ापे तक हमारे सुख दुख का सहारा बनकर।
1: बिल्कुल ठीक गायत्री, दोस्तों की यारी हर कदम पर जरूरी है। और इसी के साथ सुनते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत कमीने दोस्त ऑफ आर आर से अनुराव, गायत्री एंड राजेश चड्डा जी।

0: मुझे तो दोस्तों वाकई गूसबम्स आ गए। क्या खूब गाया है आपने इसे गायत्री, राजेश जी और अनु। तो दोस्तों आज की यारों की महफिल कैसी लगी आपको?
1: और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करना मत भूलना।
0: एक मैसेज जरूर करिए, तू है तो मैं हूँ।
1: मैं हूँ हरी
0: और मैं हूँ रति
1: और ये था दोस्ती स्पेशल एपिसोड
0: सिर्फ जयपुर रेडियो पर। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही प्यारे गीतों के साथ, अपने रॉकिंग रागा फैमिली के कलाकारों के साथ, आपके अपने जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान। तब तक के लिए मैं रति भार्गव और मेरे साथ हरी, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बस ख्वाब देखते रहिए, देखने का साहस करते रहिए।
2: ये है रॉकिंग रागा, दिल को छू लेने वाले सुर और जोश से भरपूर बीट्स। साथ हैं आपके आरजे रति और मैं हरी। रॉकिंग रागा, रॉकिंग रागा, ट्यून रहे आपके अपने रेडियो स्टेशन जयपुर रेडियो, म्यूजिक नॉन स्टॉप।
3: एक गीत एक कलाकार गाता है, संगीत से संगीतकार उसे सजाता है, पर गाने वाला अगर अदाकार हो तो गीत बोल उठता है, कहने लगता है, उसे सुनकर सुनने वाला नाचने लगता है, हंसने लगता है, सपने बुनने लगता है और दर्द में तो रोने भी लगता है। इसलिए हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा। और हमारे इस प्रोग्राम की सुपर सिंगर हैं अर्चू रानू 16। और आज हम इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं सीने जगत के बहुत ही मशहूर गायक और अदाकार किशोर कुमार साहब के गीतों को। और इन दो गानों में अर्चू रानू का साथ देंगे उनके साथी सुरीले सिंगर्स। जीवन के मोड़ से शुरू करते हैं कहानी गीतों की आरजे भूमिका के जुबानी। पहले गीत में साथ हैं, संग हैं राजेंद्र रसगई, आइए सुने।
4: जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सब पर। खूबसूरत आवाजें दी हैं किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले।

0: लिनक्स। अपने ध्यान रखें, बाय दास।
1: जयपुर रेडियो के हर मोड़ पर संगीत के इस सफर में हमें आप जैसे ना जाने कितने सिंगर्स मिलते हैं, लेकिन आप जैसे दूर तक साथ देने वाले संगीत के हमसफर, संगीत के पारखी बहुत कम होते हैं। हमने सुना अर्जु रानू और राजेंद्र रसगई को, और अब संगीत और सांसों की बात करते हैं। गीत के कई बार इतने अनमोल, क्या आपने कभी जाना? यदि नहीं तो आइए सुने सिंगिंग बर्ड संजू के साथ अर्जु रानू को, गीत मुझे छू रही है तेरी नरम सांसें।
2: मुंबई इनवाइटिंग यू इन दिस ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग रोमांटिक सॉन्ग मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें।

मन को छूकर सच में गा गए सुनील और अर्चू रानू 16 इस गीत को। लगता है यूं संग संग गा रहा है जग सारा, और जग का और हमारी ऑडियंस का भी यही इशारा है कि आपकी आंखों में खोजी जाए गीतों की गलियां और सुरीले ख्वाबों के महल। आइए सुने सिंगर लाल करमवानी और सुपर सिंगर अर्चू रानू को।

बहके हुए से ख्वाब और सुरीले अंदाजों का आनंद लिया हमने इस गीत में, अर्चू रानू और लाल कर्मवानी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आइए अब सुनते हैं महालेसम और अर्चू रानू को गीत गुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम।

सच में आज तो आपके गीतों को सुन के ऐसा लगा जैसे एक से बढ़ के एक हैं। किसका नाम लूं, किसका नाम लिखूं? बस गए हैं दिल की धरती पर आपके गीतों के पैगाम। महालेसम और अर्चू रानू के संग आपने सुना ये सुरीला गीत। अब तो दिल करता है चल दूर कहीं निकल जाएं। आइए इसी गीत को गाते हैं अर्चू रानू और SV अय्यर के साथ। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, मेरे यानी RJ भूमिका के साथ। आइए सुने SV अय्यर और अर्चू रानू को।

0: bless you all.
1: बिल्कुल दूर निकल के आ गए हैं शॉर्टकट वे पर, और अब यहाँ से तो मंजिल बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। बहुत ही सुपर डुपर गीत मेरे महबूब कयामत होगी। ये गीत यदि हम आपको नहीं सुनाएंगे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। अर्चु रानू का साथ दे रहे हैं किंग रोमियो, आइए सुने।

दिल के हाथों मजबूर बेबस प्यार की जुबां को आवाज देने आ रहे हैं महालेसम और अर्चू रानू। गीत दिल क्या करे। अगले गीत में सुनते हैं महालेसम और अर्चू रानू की आवाज।

और अगला शॉर्ट वर्जन है भूपेंद्र के साथ जीने की बात करता, ये अगला सॉन्ग अर्जुन रानू के संग। आइए सुने ओ साथी रे।

0: हमें उम्मीद है कि आज का ये विशेष सुरीला आयोजन आपको भाया होगा। हमारे बहुत सारे सुरीले मित्रों के फीडबैक और लाइक्स हमें मिलते रहते हैं। आप भी यदि इस प्रोग्राम में हमारी सुपर सिंगर अर्चू रानू के संग गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तो अर्चू रानू 16 को स्मूल ऐप पर खोज सकते हैं और अपनी सुरीली आवाज की पहचान बना सकते हैं सुपर सिंगर अर्चू रानू के संग गाकर। यदि आप भी इस प्रोग्राम को सुनकर कोई सुझाव या अपनी राय या फिर लाइक्स भेजना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं।
1: जी हाँ, ये प्रोग्राम भूमिका चली गई है, लेकिन इस मंच के मेल सिंगर आ गए हैं। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, गीत बन के आए हैं अनुराग सिन्हा मुंबई से। भूमिका ने तो अनुमति ले ली, लेकिन इस मंच पर आ पहुंचे हैं अनुराग मुंबई से हमेशा की तरह, कुछ देर से सही लेकिन आ गए हैं। तो वेलकम है अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं अपने गीत लेके। और कह रहे हैं चांदनी रात है तू मेरे साथ, बिल्कुल आपका साथ, साथ फूलों का।

और हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा, चांदनी रात में कह रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और अगले गीत में क्या कहते हैं, ये जो मोहब्बत है ये किनका काम है, और जिनका काम है उसी के नाम है मोहब्बत का ये पैगाम।

अनुराग का ये कहना हम ना करेंगे प्यार, और आगे कहने जा रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा ये जहां। सच में इस प्रोग्राम को हम जरूर याद करेंगे और सुनेंगे भी।

0: प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ये जहां। हमारे आज के मेल सिंगर अनुराग।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। आज हम याद कर रहे हैं उस फनकार को जिसकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों में हमेशा के लिए बस गई। जरा याद कीजिए, आज से कई साल पहले एक सीधी सी आलाप गूंजी थी।

सुनने में तो ये एक साधारण सी आलाप लगती है, लेकिन जिसने भी हिंदी फिल्म संगीत को दिल से सुना है, वो सिर्फ इतनी सी आलाप सुनकर एक ही नाम लेगा, किशोर कुमार। जी हाँ, आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस अलबेले, अनूठे और बेमिसाल कलाकार किशोर कुमार को। 4 अगस्त को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। वे सचमुच एक प्रेशियस गिफ्ट थे, प्रतिभा का ऐसा पावर हाउस जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन था, और हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा कलाकार हुआ हो जो एक्टर भी था, डायरेक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी था, म्यूजिशियन भी था और सिंगर भी था। कहाँ से आया था, कौन सी दुनिया का मुसाफिर था, हर दिल में घर कर गया, फिर भी जैसे बेखबर था, बस कुछ सुरों की रोशनी बिखेर कर चला गया, हर गुनगुनाते लम्हे में मगर आज भी ठहर गया। हंसी की ओढ़नी ओढ़े, दर्द की खुशबू समेटे, वो गीत बनकर जी गया, वो याद बनकर रह गया। यकीन मानिए, ये पंक्तियां मानो किशोरदा के व्यक्तित्व का आईना है। उनकी आवाज में वो शोखी भी थी, शरारत भी, दर्द भी था, मासूमियत भी, और जिंदगी को पूरे दिल से जी लेने का जज्बा भी। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज में ढाल दिया। यही वजह है कि करोड़ों दिलों में कोरे कागज पर उन्होंने अपने गीतों से अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। और आज इस खास मौके पर किशोरदा को अपनी आवाज के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सुदर्शन, जो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। उनके गाए हुए हर गीत में सिर्फ सुर ही नहीं, बल्कि अपने फेवरेट सिंगर के लिए बेइंतहा प्यार और रिस्पेक्ट भी है। लेकिन इस संगीत यात्रा के आगाज से पहले किशोरदा से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार अक्सर बताया करते थे कि बचपन में एक बार खेलते खेलते किशोर के पैर में एक नुकीली कील लग गई, और दर्द इतना अनबियरेबल था कि वो कई दिनों तक लगातार रोते रहे। बाद में दादा मुनि मुस्कुराकर कहा करते हैं, शायद उसी रोने ने उसका गला खोल दिया। सच्चा है जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि उस मासूम बच्चे की वही आवाज आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। और शायद इसलिए आज की संगीत यात्रा की शुरुआत इससे बेहतर किसी और गीत से हो ही नहीं सकती। तो सुनते रहिए किशोर कुमार के सदाबहार और अमर गीत सुदर्शन की मधुर आवाज में। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी इस संगीतमय सफर के अंतिम पड़ाव पर।

सच है। क्या ये सच है? खुद से पूछ रहा हूं। हाँ, पहली बार किसी ने, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा हाथ हाथ में लेके वो कहा जो मैं सुनना चाहता था। हाँ, पहली बार किसी ने मुझे कहा है। क्या कहा है?

ना उसे पता चला ना मुझे पता चला। हुआ क्या? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बस हम महसूस कर रहे हैं।

जब उसने छुआ मेरा हाथ पकड़ के नशा सा होने लगा। नशा क्या होता है समझ में आ गया, जिसके लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं, बस यूं ही मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ चलना।

एक दूसरे को महसूस तो कर रहे हैं, कुछ कुछ सपने मैं देख रहा हूं, कुछ सपने वो देख रही है। क्या सच होंगे ये सपने, क्या सांसों में सांस मिल जाएगी, क्या हमारे सपनों की कली खिल जाएगी। बस देखते हैं, सपने देखना तो हमारे हाथ में, कितने सच होते हैं।

समझ सको तो हम सफर हमें तुम अपना जानो, उधर नहीं इधर चलो कभी तो कहना मानो, समझ सको तो हम सफर हमें

सुरों में ढलकर अमर हो गए, ये सुरों में ढलकर उन्हें याद कर गए। फर्क बस इतना सा था, एक ने इतिहास रचा और एक ने उसे पूरे दिल से जिया। किशोरदा, आपकी आवाज आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक एहसास है और हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो सच्चे मन से संगीत से मोहब्बत करता है। और सुदर्शन, इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए आपका दिल से आभार। आपने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन अनगिनत यादों को एक बार फिर से हमारी धड़कनों में जिंदा कर दिया। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी विदा नहीं होती। आज की महफिल यहीं खत्म हुई, लेकिन किशोरदा का सफर नहीं। इसी उम्मीद के साथ ये संगीतमय शाम आपके दिलों को भी छू गई होगी। मैं गुरप्रीत आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी, किसी नई कहानी और संगीत की एक नई महफिल के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं।

कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी ना किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी।

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत।

आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हो, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं।

0: कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी न किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
1: इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी।

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत

से सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हों, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत मिलन के। जी हाँ, जब हम सब मिलते हैं और गाते हैं तो कहते हैं गीत मिलन के, लेकिन इस मंच पर जब हमारे सिंगर आते हैं तब भी हम कहते हैं गीत मिलन के। और आबू धाबी UAE से हमारे संग हमारे साथ आए हैं गीत मिलन के लेकर, गीतों की त्रिवेणी लेके, नम्रता गुप्ता, विपिन श्रीवास्तव और उत्कर्ष श्रीवास्तव। आइए वेलकम करते हैं इस मंच पर, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। तो आज आपके गीतों का वेलकम करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुनेंगे। सबसे पहले नम्रता गुप्ता क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं नम्रता गुप्ता आबू धाबी UAE से आप सबका अभिनंदन करती हूं। आप सब मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हैं, जिससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन होता है। आप प्लीज ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्यास जी और जयपुर रेडियो को भी धन्यवाद देती हूँ फॉर हैविंग ट्रस्ट ऑन मी एंड प्रोवाइडिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ दो बहुत ही अच्छे गायक हैं, विपिन जी एंड उत्कर्ष। अपने गानों के माध्यम से आज हम सब आपका मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक। धन्यवाद।

0: संगीत मिलन के सुन रहे हैं आप। अबू धाबी से हमारे संग है हमारे गीतों की हमराई नम्रता गुप्ता और नम्रता गुप्ता के दो हमराई विपिन श्रीवास्तवा और उत्कर्ष श्रीवास्तवा। आपकी आवाज आपकी पहचान डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। आइए आप सुनते हैं उत्कर्ष को प्रोग्राम गीत मिलन में हमारे आज के इस प्रोग्राम के अगले सिंगर।
1: हेलो जयपुर रेडियो, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव और मैं आपके सामने ला रहा हूं अरिजीत सिंह के कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने। एक स्पेशल मेंशन जयपुर रेडियो के लिए जिसने हमें ये फीचर किया, थैंक यू व्यास जी ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, और एक स्पेशल अप्रिसिएशन नम्रता जी जिनके वजह से ये पॉसिबल हो सका। आशा है आप सबको मेरा ये गाना पसंद आए।

0: और हम ये कहेंगे कि उत्कर्ष जयपुर रेडियो के सिंगर हो गए आज से। जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत मिलन के इस मंच पर जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान जयपुर रेडियो पर। और अब सीनियर यानी विपिन श्रीवास्तव आ रहे हैं आज से इस मंच पर।
1: हेलो जयपुर रेडियो, विपिन श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे मुकेश दा, रफी साहब और कुमार सानू को गाते हुए सुनेंगे। थैंक्स टू जयपुर रेडियो मुझे फीचर करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू ब्यास जी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, और थैंक्स टू नम्रता जी आल्सो कि नम्रता जी के प्रयास से हम लोग जयपुर रेडियो को जुड़े हैं। आशा है जयपुर रेडियो के लिसनर्स को हमारे गाने पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच।

विपिन श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप। एक बार फिर वही आवाज मिलन के गीत के साथ। नम्रता गुप्ता, आबू धाबी, यूएई से।

एक बार फिर वही आवाज जिससे हमने की थी शुरुआत, यानी नम्रता गुप्ता आबू धाबी यूएई से। जयपुर रेडियो की सिंगर, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हा में ना, ना में हा। और ये की है ना, आपको आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। नम्रता गुप्ता को आपने सुना, यूएई से प्रोग्राम गीत मिलन के सुन रहे हैं आप। आइए सुनते हैं नम्रता और विपिन श्रीवास्तव की आवाजों में ये सुरीला दोगाना।

ये हसीन दर्द ही दो दिलों का है सहारा, और इस गीत ने यही पुकारा। नम्रता और विपिन जी की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला दो गाना, और आइए सुनते हैं अगला सुरीला सॉन्ग।

गीत मिलन के प्रोग्राम सुन रहे हैं आप डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। इस गीत में आपने सुना अनम्रता गुप्ता को, और आइए सुनते हैं फिर वही आवाज।

गीत मिलन के प्रोग्राम में हमारे तीन सिंगर त्रिदेव, नम्रता गुप्ता, विपिन श्रीवास्तव और उत्कर्ष श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं अब उत्कर्ष का गाया ये सुरीला सॉन्ग।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: यारों की महफिल रॉकिंग रागा के साथ जयपुर रेडियो पे म्यूजिक दिन रात, दोस्ती फ्रेंडशिप का बीट रॉकिंग रागा और वाइब सो स्वीट।
1: हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके?
2: हरी रुको रुको वेट, हेलो जयपुर रेडियो फैमिली फ्रॉम आर रॉकिंग रागा फैम, कैसे हैं आप सब लोग?
1: देखो देखो रति, तो पहले से ही सुपर एक्साइटेड हो गई।
2: एक्साइटेड? मैं तो एकदम पम्प्ड अप हूँ यार, क्योंकि आज का शो है कंप्लीट दोस्ती स्पेशल।
1: हाँ रति, आज तो हमारा शो है फुल ऑन धमाल।

0: क्योंकि आज बात होगी दोस्ती की, यारी की और पागलपन की। आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट आरजे हरी और आरजे रति को, और ऑनेस्टली हम सब ने इस शो का बहुत ही वेट किया है।
1: तो दोस्तों, बॉलीवुड के दोस्ती सॉन्ग से हमने क्या सीखा? मैंने तो सीखा है कि ट्रू फ्रेंड्स कभी जजमेंटल नहीं होते, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। याद है हरी, ऋतिक, फरहान, अभय तीनों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा और सपोर्ट किया।
0: एग्जैक्टली और दिल चाहता है इसे सीखना कि फ्रेंडशिप इवॉल्व होता है। आमिर सैफ, अक्षय, दे ग्रू अप अपार्ट बट लव नेवर फेडेड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैच्योर फ्रेंडशिप्स,
1: डेफिनेटली मैच्योर फ्रेंडशिप्स। और दोस्तों, दोस्ती सिर्फ सेम एज ग्रुप में नहीं होती। पीकू में अमिताभ, दीपिका या 102 नॉट आउट में अमिताभ, ऋषि, इंटर जेनरेशनल फ्रेंडशिप भी उतनी ही ब्यूटीफुल है।
0: बिल्कुल सही, दोस्ती किसी भी एज में हो सकती है, बस दिल साफ होना चाहिए। चलो रति, अब टाइम आ गया है सुनने का दोस्ती का हमारा पहला एंथम, जिसको लेके आ रहे हैं हमारे गीतकार इंद्रानी, दीप और रेणुका जी, और इनके ग्रुप का नाम है आर आर के रॉक्स, और गाना है तेरे जैसा यार कहाँ।

0: और क्या गूसबम्स आ गए, लिटरली गूसबम्स। क्या खूब गाया है इंद्राणी, दीपक और रेणुका आपने।
1: दोस्ती की खट्टी मीठी यादें तो मेरे लिए हॉस्टल लाइफ है, जब बहुत इंजॉय किया हमने एक साथ कॉलेज बंक करके, मूवी देखने जाना, रात रात भर अपना ब्यूटी सेशन जारी रखना, रात को छुप छुप के खाना बना के

0: ये रात के 1:30-2 बजे खाना, उसके बाद हॉस्टल लेट से वापस आना, किसी और के लिए प्रॉक्सी देना, बहुत बहुत इंजॉय किया है। वो लाइफ जब भी याद आता है तो चेहरे पे एक हंसी आ जाती है।
1: फैबुलस इंद्रानी।
2: हरी बताओ ना, दोस्त क्यों जरूरी है जिंदगी में?
1: हरी, दोस्त वो है जो तुम्हारे साथ हंसेंगे, लेकिन साथ हो तो कभी रोने नहीं देंगे। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, वही दोस्त असली है जो मुश्किल वक्त में साथ दे।
2: याद है स्कूल के वो दिन, वो दोस्त जो टिफिन शेयर करते थे?
1: उसमें अलग ही मजा था, पर तुम तो कह रहे थे तुम्हारे दोस्त टिफिन ले जाते थे तुम्हारा।
2: हाँ हाँ, मेरा दोस्त टिफिन ले जाता था, शेयर नहीं करता था। लेकिन सीरियसली, दोस्ती हेल्थ के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है, स्ट्रेस कम और हैप्पीनेस ज्यादा देती है।
1: सुनते हैं हमारे रॉकिंग रागा फैमिली से अभिनव को क्या कहना है दोस्ती के बारे में।
3: ए आर जे रति एंड हरी, सो कूल टू कनेक्ट विद यू बोथ।
4: दोस्ती कभी लैंडलाइन की घंटी पे मिलती थी, दोस्ती अब बस एक मिस्ड कॉल काफी है। कभी साथ रहना जरूरी था, अब बस समझना काफी है। अब दोस्ती शोर नहीं करती, बस इतना कह जाती है, जब जिंदगी भारी लगे मैं यही हूँ।
1: That's so true, अभिनव। एक कोट सुनो, दोस्त वो नहीं जो रोज मिले, दोस्त वो है जो दिल में रहे।
2: चलो सुनते हैं हमारा अगला दोस्ती का स्पेशल गीत, जिसको लेके आ रहे हैं मीनाक्षी जी, समीर और अभिनव फ्रॉम द टीम द थ्री इडियट्स। और गाना है बहती हवा सा था वो।

0: बेहद सुंदर पेशकश अभिनव, समीर और मीनाक्षी जी आपकी।
1: वाह क्या गाया है तीनों धुरंधरों ने। ओके, अब टाइम है सबका फेवरेट फन मोमेंट का। मैं और रति खेलने वाले हैं दो सी रैपिड फायर राउंड।
0: रूल्स बिल्कुल सिंपल है हरी, मैं पूछती हूँ तुम जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, नो सोचना नो समझना और जो बोलना सिर्फ दिल से।
1: चलो शुरू करो, मैं रेडी हूँ।
0: ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है?
1: ट्रस्ट, मतलब ब्लाइंडफोल्डेड, आंखें बंद करके ट्रस्ट।
0: वाह जबरदस्त आंसर। बेस्ट प्लेस फॉर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन?
1: रात को कार राइड विद म्यूजिक प्लेइंग सॉफ्टली।
0: क्या बात, परफेक्ट आंसर। चलो इसी बात पे अगला गाना सुनते हैं, जिसे लेके आ रही है हमारी तीसरी टीम, रचिता, सुधीर, विद्या प्रकाश फ्रॉम सिकंदर वाइब्स।

0: places of our life, we have different friends, like school friends, college friends, workplace friends, neighborhood friends, school friends, and so on. But the time spent with each of them is like unforgettable memories, turning ordinary moments into lifelong stories.
1: That's amazing. What a fabulous singing by Rachita, Sudhir and Vidya.
2: Okay, ab paasa palatte hain aur check karte hain ki tumhara friendship quotient kitna hai.
1: Haan, kyun nahi? Puchho.
2: Ye raha tumhara pehla sawal. My favorite go-to friendship movie.
1: Tumhari favorite go-to friendship movie, The Three Idiots.
2: Okay, that's nice. Sahi jawab. Favorite street food.
1: So easy, samosa.
2: Wah, ye kaise pata laga tumhe? Bilkul sahi jawab. क्योंकि यकीनन हम में से कई लोगों के कई किस्से एक प्याली चाय और समोसे पे ही बने होंगे.
1: गरम समोसे के साथ चटनी की कीमत तुम क्या जानो हरी बाबू.
2: माय फेवरेट स्पोर्ट्स
1: क्रिकेट, क्योंकि सचिन और सहवाग के बाद तुम्हारा ही नंबर आता है ना.
2: वेरी फनी. लेट नाइट स्नैक्स
1: मैगी हम दोनों का फेवरेट और इसके साथ जुड़ी है बहुत सारी फ्रेंडशिप्स.
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाहे कुछ फटाफट खाने का मूड हो और दोस्तों का साथ हो तो एक ही सहारा होता है, चाहे हॉस्टल हो, कॉलेज हो या पहाड़ों की ठंड वाली वो ट्रिप हो. दोस्तों, आज का ये दोस्ती स्पेशल एपिसोड बनाने का हमारा मकसद था कि हम अपने आप को, अपने श्रोताओं को और अपने सभी दोस्तों को ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि दोस्ती एक बहुत ही खास रिश्ता है, इसे महसूस करें, इसे एंजॉय करें और इसकी कदर करें. दैट्स द रीजन हमारे इस एपिसोड में हमने हर टीम में 3 सिंगर्स को नॉमिनेट किया, जहां हम दोस्ती की असली स्ट्रेंथ, उनकी क्रिएटिविटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शा सकें. थैंक यू.
1: सुनाते हैं हमारा अगला गाना टीम 3, 3 पत्ती, संपत, श्वेता, साहिल.

0: क्या सॉन्ग था यार, एकदम दिल से।
1: फैबुलस सिंकिंग, संपत, श्वेता एंड साहिल। ओके दोस्तों, अब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं एक मिनट के लिए।
0: हाँ, बात करते हैं अब ग्रैटिट्यूड की।
1: हम सब ने आखिरी बार कब अपने किसी दोस्त को बोला था कि हम उनकी फ्रेंडशिप को अप्रिशिएट करते हैं?
0: वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जानी अनजानी में हम हमेशा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा दोस्त जानता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कभी खुद बोलते ही नहीं।
1: चलो तो तुमसे ही शुरू करते हैं, बताओ हमारी फ्रेंडशिप को कैसे डिस्क्राइब करोगे?
0: अंडरस्टैंडिंग, एडवेंचरस, फनी एंड माई गो टू पर्सन ऑलवेज।
1: वाओ, तो चलिए दोस्तों हम सब भी आज से ही शुरू करते हैं। थैंक यू उस दोस्त को बोलने के लिए जो कभी हमें जज नहीं करते।
0: ये तो जेन्युइन है। थैंक यू उस दोस्त को बोलना जो हमेशा हर वक्त हमारे साथ बना रहता है, और थैंक यू उस फ्रेंड को बोलना जो हमारी छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करता है, और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे रॉकिंग रागा ग्रुप को जिसकी वजह से हम सब दोस्त बने।
2: Mutual trust, respect for each other and unconditional support are the hallmarks of what I consider most important in friendship. It's a responsibility I don't take lightly, and to me, it is about being present during good and hard times. A best friend should always be a safety net, a sense of belonging and a shoulder to cry on.
1: I wholeheartedly agree with you, Anu. To chaliye dosto, sunte hain hamara agla geet. टीम आर आर फ्रेंड्स राधा अमोल जगताप जी की मधुर आवाज में।

0: मुझे लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा अच्छा बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। हम सब कुछ उसे शेयर कर सकते हैं, और मित्रत्व का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है, क्योंकि जब हाथ को चोट लगती है तो आँख में आंसू आ जाते हैं, और आँख में आंसू आ जाए तो उन्हें पोंछने के लिए हाथ ही आगे आते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने रेणुका, और इस गीत को खूब निभाया आपने अमोल, राधा जी, जगताप जी। बताओ हरी बताओ, बॉलीवुड की सबसे फेवरेट ऑन स्क्रीन दोस्ती कौन सी है?
2: जय वीरू फ्रॉम शोले, नो कंपटीशन। उनकी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दैट्स अल्टीमेट डेफिनेशन।
1: हमारे 90s के दशक की मूवी जो जीता वही सिकंदर, इसने दिखाई हमें फ्रेंडशिप विद फ्लॉ, फाइट एंड अनकंडीशनल सपोर्ट।
2: पर मॉडर्न एज में देखो, ऋतिक फरहान और अभय, उन्होंने प्रूव किया कि दोस्ती में ऑनेस्टी जरूरी है। नो फेक प्रॉमिसेस, जस्ट रियल इमोशंस।
3: दोस्ती उम्र भर रहने वाला एक प्यारा एहसास है, एक ऐसा रिश्ता है जो सब रिश्तों से गहरा होता है। इसमें सच्चा प्यार, साथ, भरोसा और समझदारी है। जहाँ आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा राजी। तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं दोस्ती के पावर को, और एक जोरदार गाना सुनाते हैं दोस्ती पे फ्रॉम टीम धुरंधर, देवयानी, राजेश, कंकना।

0: वाओ, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देवयानी, राजेश एंड डॉक्टर कंकना।
1: किसी ने मुझसे पूछा कि दोस्ती क्या है। मैंने कहा, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता।
0: आहा, क्या बात।
1: एलिगेंट फ्रेंडशिप की शुरुआत अक्सर ऐसी क्योटिक होती है। मोस्ट ग्रेट दोस्ती स्टोरीज स्टार्ट विद दैट क्लासिक लाइन, आई एक्चुअली हेटेड यू व्हेन वी फर्स्ट मेट।
0: सो ट्रू। वो दुश्मन टर्न बेस्टी वाला ट्रांजिशन इज सो इलाइट। शुरू में एक दूसरे को जज करना और फिर वही इंसान आपका कंफर्ट जोन बन जाता है।
1: एग्जैक्टली, इट्स लाइक ए स्लो बर्न मूवी। पहले वाइब्स क्लैश करती हैं, फिर वही वाइब्स मैच हो जाती हैं। स्टाइल माइट क्रिएट राइवल्स इनिशियली, पर ये छोटी छोटी ट्रेजेडीज ही तो दोस्ती को लेजेंडरी बनाती हैं।
0: तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें बताते रहिए कैसे शुरू हुई आपकी फर्स्ट मीट वाली दोस्ती। तब तक लेट्स कीप द मूड लाइट एंड द वाइब्स हाई। सुनाते हैं हम आपको ये अगला गीत टीम हम किसी से कम नहीं, एमी, शिखा एंड संजीव।

0: तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खट्टी मीठी नोक झोक शिखा, एमी और संजीव की? मुझे तो बड़ा मजा आया। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती की। जब हमारे दोस्त अदर टाइम जोन में रहते हैं तो सच में बहुत मुश्किल होती है।
1: आजकल तो बिल्कुल टैगिंग गिरा ही चल रहा है। लोग कॉल नहीं करते बल्कि स्टोरी, पोस्ट, रील भेज देते हैं, और अगर उस पे हार्ट मिल जाए तो फ्रेंडशिप बिल्कुल स्टेबल है। ये भी एक तरह का डिजिटल पल्स बन गया है।
0: सो ट्रू। लेकिन हरी, उस दोस्ती की बात ही कुछ और होती है जिसमें बिना कहे भी दूसरे को महसूस करें और उसको समझ जाएं।
1: सही कहा। तो चलो थोड़ा माहौल बदलते हैं और ये गाना डेडिकेट करते हैं उन लोगों को जो कुछ दूर रहते हैं अपने दोस्तों से।
0: सुनते हैं दोस्ती का ये क्लासिक सॉन्ग टीम शोले आरआर के प्रताप जी, मनोज जी, सूरज की जोशीली आवाज में।

0: दोस्ती एक विश्वास है, भरोसा है, अपनेपन का एहसास है। सच्ची दोस्ती की डोर समय के साथ और मजबूत होती जाती है। एक दोस्त ही तो होता है जो दूसरे दोस्त की परेशानी को बिना कहे समझ जाता है और उसकी परेशानी में हमेशा साथ निभाता है और हर संभव दोस्त की मदद करता है।
1: वाह, क्या खूब कहा और क्या गाया है आपने इस जोशीले अंदाज में प्रताप जी, मनोज जी और सूरज।
2: और अब आ गया हमारा फाइनल सेगमेंट।
1: क्या जर्नी थी दोस्तों आज की हमारी।
2: बस यही तो फ्रेंडशिप है एक नटशेल में।
1: सही बोल रहे हो हरी। अब रिकैप करते हैं आज क्या सीखा।
2: फ्रेंड्स फैमिली बन जाते हैं, हर दोस्त अपने आप खास हो जाता है।
1: रियल फ्रेंड्स के साथ रात के 2 बजे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और रॉकिंग रागा ग्रुप के फ्रेंड्स एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं।
2: कीप रॉकिंग, बी ऑसम एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर।
3: दोस्त यार, ये वो प्यारे और अनमोल रिश्ते हैं हमारी जिंदगी के, जो खून का रिश्ता न होकर भी हमारे दिल से जुड़े हुए होते हैं। बचपन में मासूमियत से और बुढ़ापे तक हमारे सुख दुख का सहारा बनकर।
1: बिल्कुल ठीक गायत्री, दोस्तों की यारी हर कदम पर जरूरी है। और इसी के साथ सुनते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत कमीने दोस्त ऑफ आर आर से अनुराव, गायत्री एंड राजेश चड्डा जी।

0: मुझे तो दोस्तों वाकई गूसबम्स आ गए। क्या खूब गाया है आपने इसे गायत्री, राजेश जी और अनु। तो दोस्तों आज की यारों की महफिल कैसी लगी आपको?
1: और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करना मत भूलना।
0: एक मैसेज जरूर करिए, तू है तो मैं हूँ।
1: मैं हूँ हरी
0: और मैं हूँ रति
1: और ये था दोस्ती स्पेशल एपिसोड
0: सिर्फ जयपुर रेडियो पर। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही प्यारे गीतों के साथ, अपने रॉकिंग रागा फैमिली के कलाकारों के साथ, आपके अपने जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान। तब तक के लिए मैं रति भार्गव और मेरे साथ हरी, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बस ख्वाब देखते रहिए, देखने का साहस करते रहिए।
2: ये है रॉकिंग रागा, दिल को छू लेने वाले सुर और जोश से भरपूर बीट्स। साथ हैं आपके आरजे रति और मैं हरी। रॉकिंग रागा, रॉकिंग रागा, ट्यून रहे आपके अपने रेडियो स्टेशन जयपुर रेडियो, म्यूजिक नॉन स्टॉप।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। आज हम याद कर रहे हैं उस फनकार को जिसकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों में हमेशा के लिए बस गई। जरा याद कीजिए, आज से कई साल पहले एक सीधी सी आलाप गूंजी थी।

सुनने में तो ये एक साधारण सी आलाप लगती है, लेकिन जिसने भी हिंदी फिल्म संगीत को दिल से सुना है, वो सिर्फ इतनी सी आलाप सुनकर एक ही नाम लेगा, किशोर कुमार। जी हाँ, आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस अलबेले, अनूठे और बेमिसाल कलाकार किशोर कुमार को। 4 अगस्त को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। वे सचमुच एक प्रेशियस गिफ्ट थे, प्रतिभा का ऐसा पावर हाउस जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन था, और हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा कलाकार हुआ हो जो एक्टर भी था, डायरेक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी था, म्यूजिशियन भी था और सिंगर भी था। कहाँ से आया था, कौन सी दुनिया का मुसाफिर था, हर दिल में घर कर गया, फिर भी जैसे बेखबर था, बस कुछ सुरों की रोशनी बिखेर कर चला गया, हर गुनगुनाते लम्हे में मगर आज भी ठहर गया। हंसी की ओढ़नी ओढ़े, दर्द की खुशबू समेटे, वो गीत बनकर जी गया, वो याद बनकर रह गया। यकीन मानिए, ये पंक्तियां मानो किशोरदा के व्यक्तित्व का आईना है। उनकी आवाज भी, वो शोखी भी थी, शरारत भी, दर्द भी था, मासूमियत भी, और जिंदगी को पूरे दिल से जी लेने का जज्बा भी। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज में ढाल दिया। यही वजह है कि करोड़ों दिलों में कोरे कागज पर उन्होंने अपने गीतों से अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। और आज इस खास मौके पर किशोरदा को अपनी आवाज के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सुदर्शन, जो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। उनके गाए हुए हर गीत में सिर्फ सुर ही नहीं, बल्कि अपने फेवरेट सिंगर के लिए बेइंतहा प्यार और रिस्पेक्ट भी है। लेकिन इस संगीत यात्रा के आगाज से पहले किशोरदा से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार अक्सर बताया करते थे कि बचपन में एक बार खेलते खेलते किशोर के पैर में एक नुकीली कील लग गई, और दर्द इतना अनबियरेबल था कि वो कई दिनों तक लगातार रोते रहे। बाद में दादा मुनि मुस्कुराकर कहा करते हैं, शायद उसी रोने ने उसका गला खोल दिया। सच्चा है जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि उस मासूम बच्चे की वही आवाज आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। और शायद इसलिए आज की संगीत यात्रा की शुरुआत इससे बेहतर किसी और गीत से हो ही नहीं सकती। तो सुनते रहिए किशोर कुमार के सदाबहार और अमर गीत सुदर्शन की मधुर आवाज में। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी इस संगीतमय सफर के अंतिम पड़ाव पर।

सच है। क्या ये सच है? खुद से पूछ रहा हूं। हाँ, पहली बार किसी ने, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा हाथ हाथ में लेके वो कहा जो मैं सुनना चाहता था। हाँ, पहली बार किसी ने मुझे कहा है। क्या कहा है?

ना उसे पता चला ना मुझे पता चला। हुआ क्या? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बस हम महसूस कर रहे हैं।

जब उसने छुआ मेरा हाथ पकड़ के नशा सा होने लगा। नशा क्या होता है समझ में आ गया, जिसके लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं, बस यूं ही मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ चलना।

एक दूसरे को महसूस तो कर रहे हैं, कुछ कुछ सपने मैं देख रहा हूं, कुछ सपने वो देख रही है। क्या सच होंगे ये सपने, क्या सांसों में सांस मिल जाएगी, क्या हमारे सपनों की कली खिल जाएगी। बस देखते हैं, सपने देखना तो हमारे हाथ में, कितने सच होते हैं।

0: सुरों में ढलकर अमर हो गए, ये सुरों में ढलकर उन्हें याद कर गए। फर्क बस इतना सा था, एक ने इतिहास रचा और एक ने उसे पूरे दिल से जिया। किशोरदा, आपकी आवाज आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक एहसास है और हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो सच्चे मन से संगीत से मोहब्बत करता है। और सुदर्शन, इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए आपका दिल से आभार। आपने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन अनगिनत यादों को एक बार फिर से हमारी धड़कनों में जिंदा कर दिया। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी विदा नहीं होती। आज की महफिल यहीं खत्म हुई, लेकिन किशोरदा का सफर नहीं। इसी उम्मीद के साथ ये संगीतमय शाम आपके दिलों को भी छू गई होगी। मैं गुरप्रीत आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी, किसी नई कहानी और संगीत की एक नई महफिल के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।
1: एक गीत एक कलाकार गाता है, संगीत से संगीतकार उसे सजाता है, पर गाने वाला अगर अदाकार हो तो गीत बोल उठता है, कहने लगता है, उसे सुनकर सुनने वाला नाचने लगता है, हंसने लगता है, सपने बुनने लगता है और दर्द में तो रोने भी लगता है। इसलिए हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा। और हमारे इस प्रोग्राम की सुपर सिंगर हैं अर्चू रानू 16। और आज हम इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं सीने जगत के बहुत ही मशहूर गायक और अदाकार किशोर कुमार साहब के गीतों को। और इन दो गानों में अर्चू रानू का साथ देंगे उनके साथी सुरीले सिंगर्स। जीवन के मोड़ से शुरू करते हैं कहानी गीतों की आरजे भूमिका के जुबानी। पहले गीत में साथ हैं, संग हैं राजेंद्र रसगई। आइए सुने।
2: जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सब पर। खूबसूरत आवाजें दी हैं किशोर कुमार जी, आशा भोसले।

0: ब्लेस अपने ध्यान रखें बाई राज।
1: जयपुर रेडियो के हर मोड़ पर संगीत के इस सफर में हमें आप जैसे ना जाने कितने सिंगर्स मिलते हैं, लेकिन आप जैसे दूर तक साथ देने वाले संगीत के हम सफर संगीत के पारखी बहुत कम होते हैं। हमने सुना अर्जू रानू और राजेंद्र रसगई को, और अब संगीत और सांसों की बात करते हैं। गीत के कई बार इतने अनमोल, क्या आपने कभी जाना? यदि नहीं तो आइए सुने सिंगिंग बर्ड संजू के साथ अर्जू रानू को, गीत मुझे छू रही है तेरी नरम सांसे।
2: मुंबई इनवाइटिंग यू इन दिस ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग रोमांटिक सॉन्ग मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसे।

0: very talented. Nice whistle.
1: मुझे छू रही है तेरी गरम सांसें कि मेरे रात और दिन महक रहे हैं, महकते गीतों की ये सुरीली सौगात आपके लिए लेके आई हैं सुपर सिंगर अर्चू रानू। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर। दिल को छू लेने वाले ये सुरीले गीत आप सुन रहे हैं आरजे भूमिका के साथ। दिल छूने के बाद आइए मन की खोज करते हैं और सुनते हैं किशोर दा का बहुत ही पॉपुलर गीत, छू कर मेरे मन को पिया तूने क्या इशारा। इस गीत में अर्जुन रानू का साथ दे रहे हैं सुनील, आइए सुनें।

मन को छूकर सच में गा गए सुनील और अर्जुन रानू 16 इस गीत को। लगता है यूं संग संग गा रहा है जग सारा, और जग का और हमारी ऑडियंस का भी यही इशारा है कि आपकी आंखों में खोजी जाए गीतों की गलियां और सुरीले ख्वाबों के महल। आइए सुने सिंगर लाल करमवानी और सुपर सिंगर अर्चू रानू को।

बहके हुए से ख्वाब और सुरीले अंदाजों का आनंद लिया हमने इस गीत में, अर्चू रानू और लाल कर्मवानी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आइए अब सुनते हैं महालेसम और अर्चू रानू को गीत गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

सच में आज तो आपके गीतों को सुनके ऐसा लगा जैसे एक से बढ़के एक हैं। किसका नाम लूं, किसका नाम लिखूं? बस गए हैं दिल की धरती पर आपके गीतों के पैगाम। महालेसम और अर्चू रानू के संग आपने सुना ये सुरीला गीत। अब तो दिल करता है चल दूर कहीं निकल जाएं। आइए इसी गीत को गाते हैं अर्चू रानू और SV अय्यर के साथ। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, मेरे यानी RJ भूमिका के साथ। आइए सुने SV अय्यर और अर्चू रानू को।

0: वेस्टियोल।
1: बिल्कुल दूर निकल के आ गए हैं शॉर्टकट वे पर, और अब यहाँ से तो मंजिल बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। बहुत ही सुपर डुपर गीत मेरे महबूब कयामत होगी। ये गीत यदि हम आपको नहीं सुनाएंगे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं किंग रोमियो, आइए सुनें।

दिल के हाथों मजबूर बेबस प्यार की जुबां को आवाज देने आ रहे हैं महालेसम और अर्चू रानू। गीत दिल क्या करे। अगले गीत में सुनते हैं महालेसम और अर्चू रानू की आवाज।

और अगला शॉर्ट वर्जन है भूपेंद्र के साथ जीने की बात करता, ये अगला सॉन्ग अर्चू रानू के संग, आइए सुने ओ साथी रे।

हमें उम्मीद है कि आज का ये विशेष सुरीला आयोजन आपको भाया होगा। हमारे बहुत सारे सुरीले मित्रों के फीडबैक और लाइक्स हमें मिलते रहते हैं। आप भी यदि इस प्रोग्राम में हमारी सुपर सिंगर अर्चू रानू के संग गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तो अर्चू रानू 16 को स्मूल ऐप पर खोज सकते हैं और अपनी सुरीली आवाज की पहचान बना सकते हैं सुपर सिंगर अर्चू रानू के संग गाकर। यदि आप भी इस प्रोग्राम को सुनकर कोई सुझाव या अपनी राय या फिर लाइक्स भेजना

0: चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं।
1: जी हाँ, ये प्रोग्राम भूमिका चली गई है, लेकिन इस मंच के मेल सिंगर आ गए हैं। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, गीत बन के आए हैं अनुराग सिन्हा मुंबई से। भूमिका ने तो अनुमति ले ली, लेकिन इस मंच पर आ पहुंचे हैं अनुराग मुंबई से हमेशा की तरह, कुछ देर से सही लेकिन आ गए हैं। तो वेलकम है अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं अपने गीत लेके। और कह रहे हैं चांदनी रात है तू मेरे साथ, बिल्कुल आपका साथ, साथ फूलों का।

और हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा, चांदनी रात में कह रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और अगले गीत में क्या कहते हैं, ये जो मोहब्बत है ये किनका काम है, और जिनका काम है उसी के नाम है मोहब्बत का ये पैगाम।

अनुराग का ये कहना हम ना करेंगे प्यार, और आगे कहने जा रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ये जहां। सच में इस प्रोग्राम को हम जरूर याद करेंगे और सुनेंगे भी।

प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ये जहां। हमारे आज के मेल सिंगर अनुराग। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
2: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
2: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुल

0: कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो, अपनार आवाज, अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो,
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो कि अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। स्टूडियो में स्वागत करती हूँ आज के झिलमिलाते सितारे का, जो कि आए हैं सपनों की नगरी मुंबई से। एक ऐसा जादू है इनकी आवाज में जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। ये हैं मुश्ताक खान उर्फ मुशी। मुशी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुना है कि जब आप अपना गिटार उठाकर इम्प्रॉम्प्टू गाते थे तो आसपास रहने वाले लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको सुनते थे। तो हमारे सुनने वाले बेताब है ये जानने के लिए कि मुशी कौन है।
6: थैंक यू, नमस्कार। जयपुर रेडियो के जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया
5: जी,
6: और आपने रेडियो के जो दर्शक हैं उनसे रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा, तो हाँ, एक दौर था जब हम गिटार लेके बैठ जाते थे और लोग सुनने की। संगीत एक ऐसी चीज है कि जिससे लोग यूं ही जुड़ जाते हैं
5: जी।
6: आपको कुछ अपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस संगीत आपको अपने आप जोड़ देता है लोगों से।
5: बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुशी, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन है आपके परिवार में?
6: मैं मुंबई से हूँ और मेरा जो म्यूजिक और प्रोफेशन दोनों अलग अलग है। मैं संगीत को भी प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ और
5: जी,
6: वैसे बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और वही में ही मेरा प्रैक्टिस है। फैमिली में आई हैव मेरी वाइफ है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है
5: जी,
6: और मेरे दो बेटे हैं, वो भी आर्किटेक्चर में हैं।
5: क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी कि खान एंड खान सन्स की तैयारी है पूरी, आपका जो ये फैमिली बिजनेस बन गया है। तो आपके बेटे भी गाते हैं?
6: एक्चुअली संगीत हमारे घर से खानदान में है पर मेरे बच्चों में नहीं आया। हालांकि मैंने एक बार बड़े बेटे से सुना है गाते हुए, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, पर उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन या हॉबी लिया नहीं।
5: अच्छा अच्छा अच्छा जी, तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं
6: जी। शुक्रिया
5: जी।
6: क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे?
5: जो भी आप अपने दिल की आवाज सुनिए और जो आप सुनाना चाहते हैं वो सुनवाइए।
6: जरूर जरूर।

0: मुंशी संगीत में आपने शिक्षा ली है या यूं ही आपने रुचि के तौर पे अपने सीखा?
1: संगीत की मैंने शिक्षा ली है बकायदा। मैंने एक्चुअली पहले मैं तबला सीखता था,
0: अरे वाह,
1: और जब एक्चुअली पेरेंट्स को जब पता लगा कि बच्चा गाने में रुचि रखता है, तो उन्होंने मुझे एक तबला, हमारे ट्रेनर थे गुरु जो मुझे सिखाने आते थे,
0: जी
1: और हारमोनियम भी मैं उन्हीं से सीखा हूँ।
0: अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: मैं होऊंगा अराउंड 8-10 साल, 8-9 साल का उस वक्त।
0: अरे वाह,
1: हाँ, और पेरेंट्स ने मुझे जब नोटिस किया तब मैं 5 साल का था, मैं डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा होकर गाना गा रहा था।
0: क्या बात है।
1: तो एक हादसा है वो भी समझ लीजिए कि, और वहाँ से उन्हें पता लग गया कि बच्चे में रुचि है। तो
0: जी,
1: फिर जब मैं, हम मुंबई आ गए, तो यहाँ हमारे ट्रेनर थे जो मुझे तबला सिखाते थे और हारमोनियम भी बताते थे।
0: अच्छा, आप शुरुआत से ही मुंबई में नहीं रह रहे, आप मुंबई से पहले कहीं और रहते थे?
1: हाँ, माई फादर ही इज अ रिटायर्ड कमांडर फ्रॉम नेवी, तो
0: क्या बात है।
1: पोस्टिंग्स होती रहती हैं यहाँ।
0: जी जी जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मेरी स्कूलिंग का टाइम जो था तब मैं मुंबई में था, फिर कॉलेज मैंने ग्वालियर में किया, फिर वापस मुंबई आ गया। ये मेरी
0: अच्छा, तो मुझे आप बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स जैसे कि किशोर जी, रफी साहब, महेंद्र कपूर जी के गीतों को बखूबी निभाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि किस तरह के गीतों को आप अपने दिल के करीब मानते हैं और क्यों?
1: बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब मैं 5 साल की उम्र से गा रहा था, तब किशोर दा बड़े पॉपुलर थे उस वक्त, और हम तो जो रिकॉर्डर होता था उससे सुन के गाना गाते थे या रेडियो को सुन के गाना गाते थे। तो तब किशोर दा के बहुत गाने, राजेश खन्ना, ये बहुत पॉपुलर हीरो होते थे उस वक्त। और
0: जी
1: जैसे हम बड़े हुए तो रफ़ी साहब आ गए, और जब मैं 10th में पहुंचा तो मैं गज़लों की तरफ काफ़ी झुक गया। फिर मैंने गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब, इनके गाने, गज़लें, और हुसैन ब्रदर्स, उनकी गज़लें गाना शुरू की, और फिर मैंने खुद की कुछ गज़लें भी कंपोज की।
0: क्या बात है। अच्छा,
1: और ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने करीब 7-8 गाने, मेरे गजलें मेरी वहां पे रिकॉर्ड की। तो
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: ये मेरा एक्चुअली स्कूल तक का सफर था। इसके बाद फिर मैंने वापस संगीत विद्यालय में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, और फिर लगा कि नहीं, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं वापस आर्किटेक्चर में आ गया। और तब
0: अच्छा,
1: जाके मैंने दूसरे सिंगर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें काफी लोगों ने तारीफ की कि आप महेंद्र कपूर साहब बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि
0: जी
1: उनकी हाई रेंज काफी रहती है। तो
0: जी
1: फिर मेरा झुकाव उनकी तरफ भी हो गया। और सही बात कहूँ तो मैं उन सब गानों को गाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दिल के करीब लगते हैं। तो मैं सिंगर एज अ स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो
0: जी
1: शायद वो वर्सिटैलिटी कहीं ना कहीं झलकने लग जाती है।

0: जी, और आपकी एक और खासियत है कि आप रेयर सॉन्ग्स गाकर बड़े खुश होते हैं, और आपके जो सह गायक या सह गायिकाएं हैं उनको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि एक स्म्यूल ऐप पर जब आप इनफॉर्मली गाते हैं, यूं ही अपने शौक के लिए गाते हैं, तो वहां पर मुझे भी मौका मिला है आपके साथ कभी कभी गाने का, और बहुत सीखा है मैंने आपसे। तो इन दिलचस्प बातों से विराम लेते हैं, और अब क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए ही हुए हैं, तो अपनी ये मीठी सी आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए।
1: जरूर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारा कि मुझे स्म्यूल ऐप में इतने अच्छे से नोटिस किया, और मेरे जो अतरंगी गाने हैं जो मैं, क्योंकि रेगुलर गाने सब गाते हैं, तो
0: जी,
1: उनको आप लोगों ने अच्छे से सुना और गाया भी, तो
0: नहीं, आपसे
1: कोई
0: बहुत कुछ
1: ऐसा
0: सीखा
1: ही
0: है मुझे।
1: शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब क्या कहूँ, इसके तारीफ समझूँ या तो कोई एक ऐसा ही गाना आप लोगों को सुनाता हूँ।
0: जी

0: मुशी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत से मेगा म्यूजिकल इवेंट्स करते हैं। आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से प्लेबैक सिंगिंग का भी ऑफर आया। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से मन से वक्त निकालते हैं। पेशे से, जैसे आपने कहा, आप आर्किटेक्ट हैं, तो इन सब चीजों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: जब संगीत आपके सिर्फ प्रोफेशन ना हो, आपकी हॉबी भी बन जाए, आपका नशा
0: जी
1: हो, तो फिर वो वक्त तो निकल ही जाता है। क्योंकि प्रोफेशन के बिना, जो मेरा आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन है उसके बिना तो दाल रोटी नहीं चलने वाली, तो मुझे उससे पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है।
0: सही सही
1: फैमिली को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे। तो
0: जी
1: मेरा जो संगीत का वक्त है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है, और
0: जी
1: मैं रिलीजियसली 2 घंटे बैठता हूँ और गाता हूँ। कभी कभी स्ट्रीम्यूल पे गा देता हूँ, कभी अगर स्ट्रीम्यूल नहीं गा रहा हूँ तो मैं वैसे ही गुनगुना रहा होता हूँ, पर मैं वो 12 से 2 बजे तक मैं अपना पूरा वक्त संगीत को देता हूँ।
0: तो आप नियम से रियाज भी करते हैं?
1: बिल्कुल, उसको आप यही समझ लीजिए कि,
0: अच्छा, वो
1: क्योंकि
0: रियाज के
1: रियाज
0: तौर पर ही है।
1: के तौर पे मैं कुछ कुछ नए गाने प्रैक्टिस करता हूँ,
0: जी
1: पुराने गाने प्रैक्टिस करता हूँ, उनको सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वापस सुनता हूँ।
0: जी क्योंकि मैंने आपके मन्ना डे साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं। आपकी क्लासिकल सॉन्ग्स पर भी उतनी ही बखूबी से पकड़ है जितनी कि आप किशोर जी के नॉर्मल सॉन्ग्स, जो नॉन क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उनको गाते हैं। तो यहाँ पर हम आपका एक और गीत लेते हैं।
1: जरूर।

0: वह मुंशी, आपके एक एक गीत को सुनकर ऐसे लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं। इतना आपने खूबसूरत माहौल बना दिया है सारे स्टूडियो में। तो मैं अब अगला सवाल मेरा ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो इस वक्त आप जहां पर अपने आप को पाते हैं, आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का दूंगा, क्योंकि मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: जी
1: और माय मदर जो थी, उन्होंने मुझे कंपोजिशन कैसे करना है उसके लिए प्रेरित किया काफी।
0: अच्छा,
1: वो बोलती थी कि तुम हारमोनियम में इतना गाते हो और गजल गाते हो, तो क्यों ना अपनी खुद की एक गजल बनाओ और गाओ।
0: बहुत
1: तो वो
0: बहुत
1: पेपर में कुछ कटिंग्स निकाल के मुझे देती थी कि देखो, पहले पेपर में गजलें आती थी, लोग लिखते थे ऐसे, मैगजीन्स में भी आती थी, तो उसमें से गजल कट करके मुझे दे देती थी और बोलती थी इसका धुन बनाओ और इसको गा के देखो।
0: अरे वाह,
1: और यही मेरी शुरुआत थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने अपनी खुद की गजलें वहाँ पे कंपोज करके, उस टाइम तो मेरी लिखी हुई नहीं थी। ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने फिर उसके बाद खुद लिखना भी शुरू किया।
0: अरे वाह, मतलब आप एक बहुत ही उम्दा गायक के साथ साथ एक उम्दा शायर भी हैं।
1: अपने दिल में जो है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो शौक
0: जी,
1: मेरी मदर ने मेरे मुझे मतलब प्रेरित किया कि तुम करके देखो, कोशिश करो।
0: अपनी कोई लिखी हुई रचना हमें सुनाइए।
1: जरूर एक मेरी जो मैं कभी सोच रहा था एक एल्बम बनाने के लिए, तो उसको मैंने ही लिखा है, कंपोज किया हुआ है, तो मैं वो सुनाता हूँ और मैं
0: जी
1: डेडिकेट भी करूँगा मेरी मदर को।
0: जी
1: गा के सुनाओ या पढ़ के सुनाओ?
0: जी गा के सुनाइए, नेकी और पूछ पूछ।

0: मुझे आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया, यहाँ पे एक सैक्सोफोन की कमी महसूस कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर को खो दिया और उनकी याद में मैंने एक गाना कंपोज किया था, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूँ आपके इस प्रोग्राम में। तो लीजिए सुनिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुशी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देकर जाइए, कुछ कह कर जाइए।
1: मैं सबसे यही कहूंगा कि संगीत जो है वो दिल से होना चाहिए।
0: जी
1: ये वैसा नहीं है कि हम कोई इंजीनियरिंग सीख के और फिर करते हैं। सीखना तो जरूरी है, पर जब आप दिल से उसे गाते हैं तो वो कनेक्ट करता है दूसरे के दिल से। तो
0: जी
1: कोशिश करें कि आवाज़ कैसी भी हो आपकी खुद की होनी चाहिए,
0: जी
1: और बस दिल से उसे गाइए। और संगीत दो चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आधारित है, जो है सुर और तार। तो
0: जी
1: ना बेताला हो और ना बेसुर हो, और बस दिल से गाइए।
0: जी तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं मुशी, तो आजकल जो कैरियोके सिंगिंग इतनी पॉपुलर हो रही है और जगह जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठा होते हैं और कैरियोके पर गाना गाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: हाँ, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि संगीत अब घर घर में चला गया है।
0: जी
1: कराओके आने से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गाना गा सकते हैं,
0: राइट
1: या सिंगिंग से कोसों दूर थे, सिर्फ सुनते थे, वो कम से कम संगीत के साथ जुड़ गए। हाँ, पर उनको इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि संगीत जो है सुर और ताल पे आधारित है।
0: जी
1: जैसे समय एक ताल उसकी चलती है, तो अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो समय तो चलता रहेगा। तो कराओके भी एक समय की तरह चलता रहता है। अगर आपने
0: बिल्कुल
1: बीच
0: सही,
1: में छोड़ दिया तो वो आगे ताल चली जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: बस
0: सही
1: सीख
0: कहा
1: के करिए, जो भी करिए अच्छा करिए।
0: जी, बहुत खूब। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात मुंशी जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
1: थैंक यू सपना जी, मुझे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो में बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी टीम का।
0: शुक्रिया। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का लोकप्रिय जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से ही हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आ रही हैं पंजाब के मैनचेस्टर लुधियाना शहर से एक बहुत खूबसूरत वहां की जानी मानी टैलेंटेड गायिका दीपिका चावला जी। ये सीधा ट्रेन पकड़कर आ रही हैं हमारी कमर्शियल कैपिटल लुधियाना से जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। दीपिका जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे सुनने वाले को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पहचान क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं?
2: नमस्ते सपना, सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में आकर,
0: जी
2: बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर सारी बातचीत करके।
0: जी
2: सपना, मेरा मायका जो है वो पानीपत का है, जो कि हरियाणा में है, और शादी के बाद से ही मैं लुधियाना में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, और उनका ध्यान रखती हूँ मैं सारा दिन।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो।
2: मैं,
0: हाँ
2: हाँ
0: जी,
2: जी,
0: हाँ जी बताइए।
2: मैं गृहिणी हूँ,
0: जी
2: यही
0: जी जी
2: मेरा संसार है, बच्चे और
0: जी
2: पति।
0: दीपिका जी, गृहिणी होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बाहर का काम तो बखूबी खैर संभालती ही हैं, लेकिन घर में आकर अपने परिवार की देखरेख करना, उनको अच्छा खाना बनाकर देना, उनकी कहानियां सुनना, सारे घर का ख्याल रखना, ये
2: जी
0: सबके बस की बात नहीं होती अगर मैं कहूँ तो।
2: जी बिल्कुल
0: तो दीपिका जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही बना हुआ है, और आप
2: जी
0: दोनों जगह रह चुकी हैं, पानीपत और लुधियाना, है ना? तो
2: जी
0: दोनों शहरों के अगर हम कंपेयर करें तो किसके प्रति आपका ज्यादा झुकाव है और क्यों?
2: सपना, ज्यादा झुकाव तो मेरा लुधियाना में ही है, क्योंकि शादी को काफी साल हो गए हैं
0: जी
2: हमको,
0: जी
2: और लुधियाना अपने होजरी इंडस्ट्री, साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री और खान पान के लिए बहुत मशहूर है।
0: बिल्कुल
2: यहाँ के लोग जिंदगी को बड़ी अच्छी तरह से जीते हैं,
0: जी।
2: खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और मस्ती करते हैं,
0: और स्टेज
2: और
0: परफॉर्मेंसेस देते हैं
2: और म्यूजिक के तरफ भी सबका बहुत झुकाव रहता है।
0: जी
2: और लुधियाना में जैसे और पंजाब का कमर्शियल कैपिटल भी है,
0: जी
2: यहाँ
0: जी
2: पर बहुत पुराने किले भी बने हुए हैं ना, और किलों के खंडहर अभी भी हैं। वहाँ पर शूटिंग के लिए कई डायरेक्टर भी आते हैं, और जैसे रंग दे बसंती मूवी में आमिर खान अपनी टीम के साथ आए थे, तो
0: जी। ये तो दीपिका आपने
2: लुधियाना।
0: बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर जब हम अपने शहरों की बात करते हैं तो लुधियाना सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के लिए ही जाना जाता है, बल्कि मजाक बना हुआ है कि कोई सफेद रंग की कार में अगर बैठकर लुधियाना आएगा तो शाम तक उसकी कार काली होकर ही पहुंचेगी। तो बड़ा अच्छा लगा आपने यहाँ का ये बताया कि यहाँ के जो खंडहर हैं किलों के पुराने, वहां पर बॉलीवुड टीम से शूटिंग भी होती है।
2: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो फटाफट हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड आप हैं, तो क्या कभी किसी बॉलीवुड टीम से आपको कोई चांस नहीं मिला?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सपना ऐसे कोई बात
0: जी,
2: नहीं
0: मुझे लगता है वो लक्स सोप की जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें तो पक्का ही आप कर सकती थी, गा भी खुद सकती थी। चलिए,
2: ऐसे कोई
0: खैर,
2: बात नहीं
0: ये
2: है।
0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर
2: हाँ
0: हम
2: जी,
0: आपका पहला गीत लेते
2: हाँ
0: हैं।
2: जी, ओके।

0: वाह दीपिका, कितना खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपकी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीत से हमारे स्टूडियो का सारा माहौल महक उठा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत में आपकी रुचि क्या शुरू से ही रही है या फिर इसके साथ आपके और भी कोई शौक रहे हैं?
1: हाँ सपना, वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं होता ज्यादा, पर संगीत के लिए मैं जरूर वक्त निकालती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि संगीत ही मेरे रोग की खुराक है और संगीत ही मेरा प्यार है।
0: वाह वाह,
1: जब मैं छोटी थी तब से ही संगीत की शिक्षा ले रही हूँ।
0: अच्छा।
1: और कॉलेज में भी म्यूजिक वोकल लिया, फिर शादी के बाद जैसे घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, संगीत में नहीं मिल पाया
0: जी।
1: तो फिर बच्चे अब अपने सब लाइफ में सेटल हो गए तो हस्बैंड ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं अब संगीत में होना चाहिए।
0: बहुत खूब,
1: आगे जाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। तो हालांकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता,
0: अच्छा,
1: तो फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं।
0: जी जी, बहुत खूब,
1: मेरे शौक पूरा करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा, और तो इसके अलावा भी आपके शौक हैं?
1: हाँ जी, शौक कह सकते हैं, शौक है डांसिंग का, कुकिंग का।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: मेरी छोटी बेटी वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है।
0: अच्छा,
1: जिन मान्या के नाम से।
0: जी जी, लुधियाना में उनका काफी नाम है। जी जी,
1: उसके साथ उसका कभी कभी डांस करती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अपना शौक पूरा करती हूँ वो भी डांसिंग का भी।
0: क्या बात है दीपिका, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। बल्कि हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह के आपको जीवन साथी मिले हैं, हरीश जी जो आपका हर कदम के साथ देते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: इस तरह का

0: साथी हर किसी को मिले, इस तरह का
1: जी, मैं
0: परिवार
1: बहुत
0: प्यारा सा।
1: शुक्रगुजार हूँ हरीश जी की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
0: जी हरीश जी, फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका जी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और इस जोड़ी को कभी नजर ना लगे। तो चलिए दीपिका, आपका हम अगला गाना लेते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी।

0: दीपिका, जैसे आपने शुरू में हमें बताया कि आप एक गृहिणी हैं, और ये तो खैर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो गृहिणी होती है जितने मेहनत और समर्पण और प्यार से वो अपने परिवार के लिए काम करती है वह अनमोल होता है। हर हर स्टेप पर, हर कदम पर उसकी ममता, उसकी सेवा और उसके प्रेम से जिंदगी चलती है। तो आपका आधे से ज्यादा वक्त तो अपने घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाता होगा, तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: हाँ सपना, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मेरा परिवार ही मेरा संसार है
0: जी,
1: और मैं और हरीश जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें दामाद के रूप में बेटा मिला है।
0: वाह क्या बात है।
1: उनको भी संगीत में बहुत ही रुचि है और वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जैसे आपने संगीत के बारे में पूछा कि तालमेल कैसे बना
0: जी,
1: तो वो भगवान की दया से खुद ही बन जाता है, क्योंकि जब हम लोग साथ इकट्ठे होते हैं तो संगीत की महफिल लगती है
0: जी,
1: और हम जी, लोग जी, बहुत खूब मजा करते हैं
0: जी जी तो जी। एक बहुत ही अच्छे गाने के बोल दिमाग में आ रहे हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत खूब नजर ना लगे जी आपके परिवार को, बहुत ही हंसता गाता खिलखिलाता और म्यूजिकल सा परिवार है आपका। और हमने तो ये भी सुना है कि आप जैसे ही वीकेंड आते हैं आप फटाफट हिल स्टेशन की तरफ रुक कर लेते हैं ताकि और स्टेज परफॉर्मेंसेस आप कर सके। तो यही हमारी तो इच्छा रहेगी कि कभी ना कभी हमारे श्रोताओं को आपकी लाइव परफॉर्मेंस भी सुनने को मिले। इसी के साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं
1: जी।

0: दीपिका, ये बातों के सिलसिले तो खैर कभी खत्म नहीं हो सकते। आप जो इतने प्यारे प्यारे गीत लेकर आई हैं और इतने सारे किस्सों की जो पिटारी लेकर आई हैं, मन कर रहा है कि हम ये बातचीत करते ही रहें, पर वक्त हमें कह रहा है कि आगे की गुफ्तगू किसी और एपिसोड में। तो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
1: सपना, मैं आपकी और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत मजा आया आपसे सबसे बात करके।
0: जी,
1: और
0: हमें भी
1: आपकी
0: बहुत
1: अगर
0: मजा आया।
1: इजाज़ हाँ जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी।
0: अरे वाह, इरशाद।
1: मेरे बच्चों, तुम ही मेरी धड़कन, तुम ही तुमसे ही है ये जीवन मेरा चंदन। तुम्हारे बिना मैं अधूरी कहानी, तुमसे ही सजी है मेरी ये जिंदगानी।
0: वाह वाह,
1: तुमसे है घर, तुमसे है संसार, तुमसे ही है मेरे जीवन का सार। तुम ही मेरी दुनिया, मेरी सबसे बड़ी सौगात।
0: अरे वाह दीपिका जी, ये तो आज आपकी एक और खूबी हमें पता चल गई कि आप तो बहुत अच्छी शायरा भी हैं।
1: अरे
0: तो
1: बच्चों,
0: जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी दो शब्द कहिए।
1: हाँ जी सपना, अंत में मैं जाते जाते श्रोताओं को अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहूंगी
0: जी
1: कि आप कोई भी रिश्ता किसी से भी बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का, बहन का हो या भाई का,
0: जी
1: उस रिश्ते के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, पर निभाना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और
0: जी
1: सबसे प्यार से रहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत खूब दीपिका,
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब।

तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात लुधियाना की दीपिका चावला जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ। यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले धिदिन तिनक धिन धिदिन तिनक धिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नरगिसे साहिर हो तुम, नूर नजर हो, जिसे देखकर ही खो जाए ऐसा असर हो। पुर नूर हो गया जो भी मिला एक बार तुमसे, मैं तुम्हारा काफिया और तुम मेरी बहर हो। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस, जिन्हें सिनेमा की क्वीन भी माना जाता है, अपनी सौम्यता, आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी।

लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी। नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। मैं तनुजा मुंद्रा, आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस, नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं।

फिर चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी, और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया एमडी त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों, जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा, आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेनतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत, दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो। फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनुजी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा भी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी न छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का जिक्र हुआ है तो चलिए सुनते हैं ये शाम की तन्हाई।

वाह सज्जाद जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थी और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गईं। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओं, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से, आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

में धरती हुई बावरिया, दादुर पपिहा शोर मचाए।

0: सावन आया तुम ना आए,
1: सावन आया तुम ना आए। डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
3: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और